जितनी देर यह जीवन चल रहा है, बंधनों से छुटकारा पालो, और वो संभव होगा तब जब ब्रह्म मिटेंगे। ब्रह्म तब तक नहीं मिट सकते जब तक कि ज्ञान के उजाले के कारण अज्ञानता का अंधकार नहीं मिट जाता।

0: रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: चकारा।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

पेश है कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 7। आज के मेहमान स्टूडियो में आमंत्रित हैं श्रीमती रेनू मेहता जी। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी।

0: नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। 16 कलाओं में निपुण भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर भी कहते हैं। उन्होंने जन्म ही लीलाओं के साथ लिया था। भगवान कृष्ण का बचपन विभिन्न कथाओं से भरा है। सभी के घरों से माखन चुराते थे, गोपियों के स्नान करते समय कपड़े चुरा लेते थे।
1: उन्होंने मामा कंस के भेजे सभी राक्षसों को मार डाला।
0: भगवान कृष्ण को उनकी पालक माँ यशोदा ने बहुत प्यार और देखभाल के साथ पाला था। जय श्री कृष्ण। आज मैं भगवान श्री कृष्ण मय हुआ हूँ क्योंकि आज के कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 7 में आज के आमंत्रित मेहमान हर सांस के साथ राधे राधे बोलते बोलते भगवान श्री कृष्ण के साथ मगन रहती हैं। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी करता हूं रूबरू आज के ऐसे व्यक्तित्व से जो भगवान श्री कृष्ण को अपने भजनों में याद करती हैं और सभी को कृष्णमय करती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं दिल्ली से आए श्रीमती रेणु मेहता जी का। रेणु जी, आपका स्वागत अभिनंदन FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता के इस स्टूडियो में।
2: राधे राधे जी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में आने का आज मौका दिया।
0: रेणु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ इस साक्षात्कार में हैं। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त सा इंट्रोडक्शन दे और जय श्री कृष्णा आपके जीवन के लिए क्या आधार है?
2: मेरे जीवन का आधार राधे राधे जय श्री कृष्णा ही है, क्योंकि बचपन से ही हमें इन्हीं संस्कारों में ही हम पले हैं और उसी में बड़े हुए हैं और वही संस्कार हमारे अंदर हैं। कृष्ण के बिना, राधा के बिना मेरा जीवन जीवन नहीं है। इन्हीं के साथ ही मेरी सुबह होती है, इन्हीं के साथ ही मेरी रात होती है। तो ये जीवन में नहीं है तो मुझे लगता है कि एक दिन भी मैं अगर बीमार पड़ जाती हूँ, मैं पूजा नहीं कर पाती, तो मुझे लगता है आज कुछ मिस हो गया है, कुछ कमी महसूस होती है। ऐसे ही मैं हर मंथ मेरे को राधा रानी वृंदावन बुलाती है, तो अगर मैं कई बार स्किप हो जाता है, बीच में गृहस्थ में हैं हम, गृहस्थ में रह के बहुत सारे काम होते हैं, कई बार नहीं जा पाते, तो अगर एक महीने में मैं एक बार नहीं जाती तो मुझे खाना खाना है ना, जो पछता नहीं है कि मैं गई नहीं हूँ। तो मेरे साथ ये पिछले 26-27 सालों से है ऐसा। हम बचपन से ही इस पूजा में रहे हैं, राधा रानी के भगत रहे हैं। मेरे मदर, मेरे फादर, मेरी दादी माँ, ये सारे शुरू से ठाकुर जी को भोग लगाते थे, तब जाके अपने अंदर कुछ अन्न ग्रहण करते थे। तो वही संस्कार हमारे अंदर भी हैं। उसी ही संस्कारों को लेके मैं आज तक यहाँ पहुँची हूँ और आगे भी मैं चाहती हूँ मेरा जीवन इसी लम्हों में ही गुजरे और ऐसे ही भक्ति भावना में मैं अपने साथ सबको जोड़ूं और सबको राधे राधे बोलने का संदेश दूं कि राधे राधे बोलो और सदा कृष्णमय के हो जाओ और कृष्ण के चरणों में रहो। कहते हैं कि अगर राधे राधे बोलेंगे तो कृष्ण मिलेंगे, अगर हम कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे।
0: अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और जितना हम रेणु जी आपको जानते हैं, आप जहां भी जाते हैं आपकी एक पूरी मंडली होती है
2: जी,
0: तो आज भी आपके साथ पूरी मंडली है हमारे श्रोताओं को लेके। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कौन सा आप कृष्ण भजन हमें सुनाना चाहेंगे सबसे पहले, फिर हम इस बातचीत को जारी रखेंगे।
2: जी जरूर, मेरे दिल के बहुत एक प्यारा सा भजन, मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ, मतलब सुबह भी ये गुनगुनाती हूँ, अगर मुझे कहीं मौका मिलता है तो तब भी मैं ये गाती हूँ। ये भजन सभी को आता है, सभी गाते हैं और मुझे बहुत प्रिय है ये भजन।

0: किया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरी आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरी आओ मोरे अंगना।
1: जय श्री कृष्ण,
0: राधे राधे,
1: राधे राधे, जय श्री कृष्ण,
0: जय श्री राधे।
1: आपने कहा कि राधे राधे बोलेंगे तो
0: कृष्ण चले आएंगे, कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो कृष्ण कभी नहीं आएंगे।
1: तो आज के बाद हम बोलेंगे राधे राधे, जय श्री कृष्ण
0: जी,
1: आओ हरि हमारी अंगना। हम चाहते हैं कि जो हमारा ये स्टूडियो है, ये हमारे लिए एक मंदिर है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे इस अंगने में आए और हमें आशीर्वाद दे, जैसे आपने हमारे श्रोताओं को आज अपने मंत्रमुग्ध आवाज के साथ जोड़ा है। हम इस बातचीत को आगे लेके चल रहे हैं। जैसे आपने अभी घर की बात की, तो क्या बचपन से ही घर में ऐसा माहौल था? किस तरीके का माहौल था, कृपया विस्तार में बताएं।
0: हाँ जी, मेरे घर का माहौल दादी के टाइम से ही इतना अच्छा और भक्ति भावना वाला था कि मेरी दादी सुबह, वो सरदारनी थी, मगर वो गुरुद्वारे सवेरे 4:30-5 बजे जरूर जाया करती थी। तो मैं 5वीं कक्षा में थी, तो धीरे धीरे मेरा भी मन करा कि मैं दादी के साथ जाया करूं। हालांकि मुझे मम्मी मेरे गुस्सा करते थे, तू पढ़ाई करनी है, अभी से तेरे को ये लगन लग रही है, मैंने बड़ी मार खाई है मंदिर जाने में। और मेरी मदर बहुत मारती थी कि तूने पढ़ना है, फिर भी मैंने बहुत टॉप करा पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैं पॉलिटिकल साइंस में एमए करी मैंने, पढ़ाई में बहुत अच्छी रही। बट मेरा जो 5वीं कक्षा से ही जो मन था ना अंदर का, दिमाग या मन कुछ भी कह लो, मेरा तन मन धन जो कहते हैं, बंदा कहता है हमने अर्पण कर दिया, मैंने शायद 5वीं कक्षा में ही अपने आप को इस लाइन में जोड़ लिया था। हमारे घर के पीछे एक मंदिर हुआ करता था, वहाँ चंचल जी की भेंटें सुबह सुबह लगती थी 5 बजे, तब हमारे टाइम पे चंचल जी ही थे
1: जी,
0: हम बचपन में थे तो उस टाइम जो चंचल जी की भेंटें लग जाती थी मंदिर में 4-4:30 बजे के आसपास, तो उसके बाद मैं सो नहीं पाती थी, मैं उठ जाती थी, मैं मंदिर जाया करती थी, 5 बजे निकल जाना, मंदिर की सफाई करनी, वहाँ भेंटें गानी और सुनना भी, सुबह सुबह माता जी भी आरती वहाँ मंदिर में करती थी। तो फिर मेरी मदर भी अपना ठाकुर जी को मानती थी, मेरे फादर बहुत भक्ति भावना वाले हैं, वो भी जब तक अपना दिनचर्या शुरू नहीं करते भक्ति से, तो उनको भी लगता है मैंने कुछ मिस कर रहा है। हाँ, तो ये सब संस्कार बोलने से या कहने से या करवाने से कभी नहीं आएंगे जब तक आपके घर से नहीं मिलेंगे आपको।
1: रेणु जी, मैं यहाँ पर एक बात ये आपसे पूछना चाहूंगा, और ये चाहूंगा भी आप हमारे श्रोताओं को भी बताएं, वो किस तरीके से अपनी श्रद्धा, वो किस तरीके से अपने मन को उस भक्ति में लगाएं।
0: मन को समझाना अपने बस में है, अगर मैं आपको कहूं कि ऐसे करो या आप ऐसे करो, तो आप शायद एक मिनट के लिए सुन लोगे, मगर आपका मन कहेगा नहीं मैं बाद में कर लूंगा। मन को समझाना अपने हाथ में है, और जब तक हम अपने मन को अपने आप नहीं समझाते, सही दिशा और गलत दिशा का
1: अंतर
0: नहीं पता लगता, तब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो। सही डायरेक्शन देने वाले मेरे माँ बाप थे, मेरी दादी थी, तो उन्होंने बचपन में ही कहा था कि जितने मर्जी रिश्ते हों, जितने मर्जी तुम कहीं भी चले जाओ, भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें ये जो जीवन मिला है सिर्फ तुम्हारी जो जीवन आपको भगवान ने दिया है, ये कर्म के लिए दिया है, कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए, वही हमारे आगे आएंगे, और कर्म ही प्रधान है, और कर्म करने ही हम यहाँ आए हैं, और कुछ ना साथ लेके जाएंगे ना लेके आए थे, तो कर्म ही हमने बहुत अच्छा करना है, जिसकी वजह से हमें दुनिया भी जाने, हमारे अपने बच्चों का भी आने वाला टाइम सवरे, और हमारा अपना भी जो मरने के बाद टाइम है वो भी सवरे, ताकि हम भगवान से चरणों में, भगवान के चरणों में लग के हम मुक्ति प्राप्त करें, हमें कोई ऐसा वैसा जीवन नहीं मिले जिसमें हम भटके, भगवान में शरण में जाएं, उनके चरणों में जाएं। तो ये चीज़ें बचपन में ही थी मन में, तो इसी को मैंने अपनी लाइन बनाया, ऐसा नहीं मैंने नौकरी भी करी, मैंने स्ट्रगल देखा, मैंने अपने बच्चों को कैसे पाला, कैसे बड़ा किया, सब होता है लाइफ में
1: जी,
0: बट मैंने इसको अपनी लाइन बनाया।

0: वैनु जी, हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, क्या आप किसी संस्था के साथ भी जुड़े हैं? अगर हाँ तो किस तरीके का कार्य आप लोग मिलके करते हैं?
1: हाँ जी, मैं जरूर जुड़ी हुई हूँ। एक संस्था के साथ नहीं, मैं 3-4 संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिसमें कि जो भी मैं कीर्तन करके अर्न करती हूँ उस पैसे को मैं उन संस्थाओं में लगाती हूँ। और ये नहीं कि मैं कभी भी आज तक कहीं भी कोई दान करा है तो मैंने कभी फेसबुक पे शो नहीं करा है
0: जी।
1: ना ही किसी को आगे लाके उसके लिए शो करा है ताकि किसी को बुरा नहीं लगे।
0: एक तरीके का
1: गुप्त दान है और वो हमारे पास सारा मेंशन है।
0: ठीक है।
1: तो मैं 3-4 संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। एक तो अंध विद्यालय है,
0: ठीक,
1: वहां हमें सेवा करते हैं हम लोग इसी धन से जो हम धन एकत्रित करते हैं सत्संग करके। और दूसरा है, एक बेटियों की शादी होती है वहां पे, जो सामूहिक शादी होती है, वहां पे मैं अभी तक 5 कन्याओं का कन्यादान कर चुकी हूँ। मेरी अपनी बेटी नहीं है, बट 5 कन्याओं का मैंने कन्यादान करा है, वो अपने पास से करा है मैंने। और उसके बाद एक हमारा NGO है ग्रेटर क्लास में, तो उसके साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ। और एक वृंदावन में है, वृंदावन में हम अपना ठाकुर जी का जो मंदिर है, मेन मंदिर जहाँ पूरी विश्व जाता है, उसके ही पीछे एक संस्था है जहाँ पे विधवाओं का आश्रम है, वहाँ पे भी हम करते हैं।
0: उस बात पर भी हम आएंगे। जैसे आपने कहा कि आप जिन संस्थाओं के साथ जुड़े हैं
1: जी,
0: आप उनके साथ कन्याओं की शादी करते हैं
1: जी।
0: एक समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमें हमारी हेल्प, हमारी साथ की जरूरत होती है
1: जी।
0: तो जब आप ये सारे कार्य करते हैं
1: जी,
0: तो कितनी संतुष्टि आपको मिलती है और किस तरीके से लोग प्रेरित होते
1: हैं? इससे बड़ी संतुष्टि नहीं है
0: जी।
1: ना खाने में है, ना कपड़ा पहनने में है
0: जी।
1: और ना ही लग्जरी लाइफ जीने में है
0: जी।
1: ये जो संतुष्टि है, ये आत्मिक संतुष्टि है जो हमें और प्रभु के निकट ले जाती है।
0: एक तरीके का प्रार्थना ही है ये,
1: प्रार्थना है, शुद्ध मन से प्रार्थना है, क्योंकि ये ही हमें प्रभु के निकट और लेके जाती है। और इस धन को पहले दिन से ही जब मैंने कीर्तन करने स्टार्ट करे थे तो मेरे फादर ने बोला था कि हम इस पैसे को नहीं खा सकते हैं और तुमने भी पूरी जिंदगी में ये पैसे को अपने घर में यूज नहीं करना।
0: अच्छा।
1: उन्होंने मेरे सीधे हाथ में गंगा जल दे के मुझे शपथ ली थी मेरे से कि इस पैसे को तुमने नहीं खाना, तुम जितना बांटोगी, जितना सेवा करोगी, तुम्हारे पे और आएगा। तो वो बात सच है, मेरे पास कभी कुछ भी नहीं था, बट जैसे जैसे मैं मेहनत करती गई, जैसे जैसे मैं जुड़ती रही, मेरी ठाकुर जी ने कोई कमी ऐसी नहीं छोड़ी कि जो ना पूरी करी हो। मेरी राधा रानी का हाथ मेरे सिर पे है, मैंने बोला ना, साक्षात होता है मुझे कभी कभी। और मैं यही लोगों को भी कहती हूँ कि अपने मन को शुद्ध रखो, दिखावा नहीं करो, बस दिखावे में कुछ नहीं है। मन को शुद्ध रखना, प्रभु के साथ जुड़ना, अधीनों की सेवा करना, भले ही अधीन हम सेवा कर दिए, वो क्या करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।
0: हमने
1: अपनी तरफ से उसकी सेवा करी है। अब देखो, आप कभी वृंदावन के आश्रम में जाओ, जिन बच्चों ने अपनी माओं को निकाल दिया है, जिन्होंने अपने घर के बूढ़े लोगों को निकाल दिया है, और अभी तो कोविड निकला है, कोविड के टाइम पे इतना बुरा हाल हुआ है, हमने आंखों से देखा है। उस टाइम भी हमने NGO में कराई है। मेरी एक फ्रेंड है सरिता भाटिया जी,

0: मैं भी कभी कभी उनके साथ साथ देती हूँ, वो बहुत अच्छा कार्य करती हैं, मैं उनका नाम ले रही हूँ, मेरी फ्रेंड है, हम मिलकर कोरोना में भी हमने करा, उनके साथ और लोग भी बहुत अच्छे अच्छे जुड़े हुए हैं, मैं मेरे से भी जितना हो पाता है मैं जाकर करती हूँ।
1: मेरे मन में एक प्रश्न ये आ
0: जी,
1: रहा है।
0: जी
1: जब आप लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं,
0: हाँ जी,
1: आज के माहौल में जो सकारात्मक
0: पॉजिटिविटी
1: सोच
0: से,
1: है,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: वो बहुत कम है। जब आप इस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, साथ में प्रभु का नाम भी
0: जी
1: जुड़ा है, तो कितनी संतुष्टि आपको और आपकी टीम को या आपके लोगों को मिलती है?
0: मेरी टीम को मेरे साथ रहने में बड़ी संतुष्टि मिलती है, वो किसी और मंडली में जाना भी नहीं चाहती हैं, बल्कि मेरी मंडली में ऐसी ऐसी लेडी थी जो बुजुर्ग हो गई हैं अब, जिनके आने का भी नहीं मुझे रहता कि वो आएंगी कीर्तन में या नहीं आएंगी, बट फिर भी वो कैसे तैसे करके मेरे साथ रहती हैं, और जो मेरे साथ जुड़ता है उसको खुशी मिलती है, और जो मुझे समझ नहीं पाया उसके लिए मेरे पास नहीं है वर्ड, जो मुझे जो समझ नहीं पाया उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, बट फिर भी मैंने उनको छोड़ा नहीं है, मैं अपना कर रखती हूँ सबको, जो आए वेलकम है उसका, और जो मेरे साथ नहीं जुड़ना चाहे वो अपनी खुशी में खुश रहे।
1: श्रोताओं को मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो प्रभु के नाम के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी होती है। और आज हम जो बात कर रहे हैं रेनू मेहता जी के साथ, उसमें भी हमें सार अभी तक यही मिला है कि प्रभु ने जब हमें ये जिंदगी दी है, हम जितना भी इसका सदउपयोग कर सकें उतना हमें करना चाहिए। रेनू जी, आपने वृंदावन का नाम लिया। वृंदावन हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में एक बहुत बड़ा स्थान है।
0: जी जी जी,
1: मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें वृंदावन के बारे में आप कृपया विस्तार में बताएं, और कौन सा भक्ति गीत उसके बाद आप हमें सुनाएं।
0: ठीक है, वृंदावन से पावन धाम शायद कोई हो, क्योंकि वृंदावन में ठाकुर जी साक्षात विराजमान है, और उनका साक्षात करते ही लगता है कि उन्होंने हमें निहारा है, हम उनको निहार रहे हैं, उनके पैरों से लेके धीरे धीरे धीरे धीरे हम जब दर्शन करते हैं तो लगता है कि वाकई में ही हम बात कर रहे हैं आपस में दर्शन करते हुए, ये उसी को ही होता है भाई जो मन से करता है, मन के बिना या लगन के बिना बोलना अलग है और समझना अलग है, अपने मन को जो शांति मिलती है दर्शन करके वो अलग है। अब मैं बोल के जाऊं, बोलना बोलने से कोई मेरी बात को नहीं समझ पाएगा, मगर मुझे जो एहसास होता है मैं अपना एहसास ऐसे बयान नहीं कर सकती वर्ड्स में। तो वृंदावन ऐसा धाम है जो हमने बचपन से ही वृंदावन आना सीखा है
1: जी।
0: मैं आज तक एक बार अपनी लाइफ में वैष्णो माता गई हूं, शादी के बाद 30-32-33 साल हो गए, वैष्णो माता मैं नहीं जा पाई दोबारा, ठाकुर जी से ही मुझे लगाव है, मेरी राधा रानी से मुझे प्यार है, राधा रानी के महल में जाते ही ऐसे लगता अपने घर में आ गए हैं, हम यहीं से गए हैं और यहीं अपने घर में आ गए हैं,
1: और शायद
0: राधा रानी के महल में ऐसे महसूस होता है कि वहां हम वहीं से गए हैं और वहीं आकर बैठे हैं, उस आंगन में बैठे हैं, प्रांगण में बैठे हैं, वहां कूदने को गाने को मन करता है, नाचने को मन करता है, मैं सब करके आती हूँ, कुछ मिस नहीं करती हूँ, फिर जो खुशी मुझे मिलती है वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो वृंदावन ऐसे ऐसे लोगों ने आके रहना शुरू कर दिया है, हमारे आउट ऑफ इंडिया से भी लोग देखो रहते हैं, तो उन्होंने कुछ पाया है ना, एरी मैंने प्रेम रतन धन पायो, रतन ही है ये हीरे ज्वारा सो भी बहुत बढ़िया रतन है, प्रभु का नाम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो वृंदावन के लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने को, मगर वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, राधे राधे जपना जीवन में उसको उतारना, कहते पहले राधा रानी के दर्शन करके आओ बरसाने से, फिर आकर साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करो, आपको इतने प्यारे दर्शन होंगे, आपके मन की आंखें खुलेंगी कि हाँ वाकई में इस धरती पे भगवान है जो इस सृष्टि को चला रहा है। कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग में भी साक्षात भगवान है इस सृष्टि में, उनका वास है, आते तो वो इंसानों के रूप में ही है, तो इंसानों को पहचानना आना चाहिए, भगवान उसी में ही है, उसी में ही है।
1: तो एक भजन हो जाए,
0: बिल्कुल जरूर भजन हो जाए।

अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो अपने शब्दों में और अपने स्वरों में हमें वृंदावन के दर्शन करवाए। एक विराम हम लेते हैं और ये बातचीत हम जारी रखते हैं।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आप इस समय मेरे साथ बने हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 7 में, और हमारे साथ हैं श्रीमती रेणु मेहता जी। रेणु जी, कार्तिक मास इस समय चल रहा है, इस पावन मास में प्रभु भजन सभी लोग करते हैं
1: जी,
0: इसके बारे में आप जरा हमें और हमारी श्रोताओं को विस्तार में बताएं।
1: कार्तिक मास भी अपने आप में एक मास है, बहुत पावन मास है। ये कहते ठाकुर जी खुद यहाँ धरती पे भ्रमण करते हैं, हमारे जो देवी देवता हैं वो भी भ्रमण करते हैं कार्तिक मास में, और जो घर घर में जाकर प्रभात फेरी होती है, मंदिरों में जाया जाता है, पूजन किया जाता है। हम बड़े बूढ़ियों और हमारी जो दादियाँ नानियाँ हैं सब करती थी, और अब आज भी हम अपने मंदिर में जाते हैं तो हमारे बुजुर्ग जो लेडीज हैं हम उनसे सीखते हैं बहुत कुछ, वो कैसे कैसे पूजा करती हैं, आंवले की करती हैं, तुलसी माँ की करती हैं, सब सीखते हैं। हम भी सीख रहे हैं अभी, इतना हमें कुछ नहीं आता मगर सीख रहे हैं हम आगे। और बहुत ही ये पावनमय और शुद्धता से भरा हुआ ये मास है, जिसमें सुबह उठ के हम अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं और मंदिर की ओर जाते हैं, वहाँ भजन कीर्तन में जुड़ जाते हैं। फिर किसी को घर पे भी करवानी होती है प्रभात फेरी, हम जाते हैं और प्रभु का गुणगान करते हुए ही गलियों से निकलते हैं, और प्रभु का गुणगान करते हुए गलियों में से घर वापस आते हैं। और इसमें मेरे साथ बहुत संगत जुड़ जाती है, सुबह संगत जुड़ते जुड़ते पता ही नहीं लगता कब 50 लेडीज हो गई, कब 100 हो गई। पूरा आनंदमय वातावरण होता है सुबह 4:30-5 बजे से लेके 7:30 तक। ऐसे लगता है हम जैसे देव भूमि में घूम रहे हैं और देव नगरी में घूम रहे हैं, किसी देवताओं की शरण में रह रहे हैं। वो समय इतना शुद्धता से भरपूर होता है, पॉजिटिविटी वाला होता है, कि उसमें हम अपना कुछ भी गम कुछ दुख प्रभु की शरण में कहे तो वो शायद खत्म हो जाता है,
0: खत्म हो जाता है। रेणु जी, हमने भी बचपन से प्रभात फेरी के बारे में सुना भी है, देखा भी है
1: जी,
0: और जब सवेरे सवेरे हम प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, आपके साथ जितने भी लोग जुड़ जाते हैं तो कितनी खुशी महसूस होती है जब आप प्रभु के लाई में उन सब लोगों को जोड़ते हैं।
1: हाँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्यों, मुझे सबका संग मिलता है तो मैं सबको देख के खुश होती हूँ। मेन खुशी ये होती है कि जो नहीं भी उठता पूरे साल, मेरे कहने से वो उठकर घर से बाहर आ जाता है और मेरे साथ चल पड़ता है, वो जो खुशी होती है ना मेरे मन में, वो मैं बयान नहीं कर सकती। क्योंकि सारा साल सब अपने घर में सोते हैं, सर्दी का टाइम है, सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, अपना बिस्तर छोड़ना, पर मेरे कहने पे, क्योंकि मुझे नाम दिया गया हिटलर दीदी का
0: आपने तो मेरे अगले सवाल का जवाब
1: वो प्यार से मुझे सभी हिटलर दीदी ऐसे कहती हैं, सभी मेरी मंडली वाले, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरे साथ जुड़े हुए कुलीग्स जितने भी हैं कीर्तन में जाने वाले, वो सबको मैं दिल से तो बहुत प्यारी हूँ बट थोड़ी जुबान की मैं सख्त हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे नाम दिया हिटलर दीदी।
0: तो मैं तो चाहूंगा रेणु जी, आप हिटलर दीदी किस तरीके से लोगों को जोड़ती है ये भी आप बता दीजिए।
1: प्यार से जोड़ती हूँ, प्यार ही है, मगर मैं जब किसी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करती या किसी गलत वातावरण को बर्दाश्त नहीं करती तो वो थोड़ा सा मेरा गुस्सा एग्रेसिव होती हूँ, तो फिर वो कहती है नहीं, उनको भी लगता है ये सही कह रही है
0: जी।
1: तो उन्होंने प्यार से ही मुझे नाम दिया है हिटलर दीदी का।
0: अच्छा, अच्छा।
1: गुस्से से नहीं,
0: अच्छा, अच्छा।
1: प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत प्यार करती है सभी मुझसे, और मेरे कहने पे सुबह उठ जाती है, मेरे साथ चलती है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए नहीं है।
0: दिल से कहता हूँ, आज पहली बार मैंने सुना है कि हिटलर दीदी प्यार से भी कहा जा सकता है।
1: कहा जा सकता है, कहती हैं वो, कहती भी हैं। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग होना स्वाभाविक है, जहाँ चार लेडीज होती हैं वहाँ गॉसिप होता है, बट फिर भी मैं उन सबसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मैंने कभी उनको कभी गलत नहीं कहा।
0: एक कुछ तरीके से आप उन सबको लीड भी करती हैं।
1: लीड करती हूँ जी जी, लीड करना आसान नहीं है
0: जी।
1: बहुत मुश्किल कार्य है ये भी, सबको ले जाना, घुमाना, सत्संग में ले जाना, फिर एक सत्संग में कार्यक्रम को पूरा 3 घंटे चलाना है तो मुश्किल है, पर मेरी राधा रानी मेरे साथ है तो मुझे मुश्किल नहीं लगता है।
0: तो कौन सा भजन आप इस दौरान गाती हैं, तो कृपया हमारी श्रोताओं तक
1: भजन तो बहुत है, अनगिनत भजन है, कोई मैंने भी नहीं लिखे, मैं भी गाए हुए भजनों में से ही गाती हूँ, बट मुझे रस आता है तो मैं सुना देती हूँ।
0: प्लीज।
1: शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी

तोरे रंग रजवा मोहे सुहागन कीनी रे मोसे नैना मिलाई के। सुहागन करना, खाली सिंदूर डाल के सुहागन नहीं, सुहागने तो सब हैं, अपने पतियों की सुहागने सब हैं, मगर ये ऐसा सिंदूर है नाम का जो प्रभु हमारी मांग में डालता है, हमारे मन में डालता है।

बहुत खूब आज तो हम कृष्णमयी और हरिमयी हो गए हैं सब। इस कार्यक्रम का अब समय समाप्ति की ओर है।

0: आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा। वृंदावन में जो लोग रहते हैं भगवान के चरणों में, उनकी खुशी ज्यादातर किस में होती है? कैसा उनका समय वहां पर व्यतीत होता है?
1: वृंदावन में जो लोग रहते हैं, जो घर बार नहीं है जिनका,
0: जी,
1: जो सड़क पर ही रहते हैं या किसी आश्रम में रहते हैं या कहीं आश्रय लेके रहते हैं, उनका जीवन तो बड़ा दुखमय है, सुखमय नहीं है। बट वो लोग इस आश्रय से वहाँ वृंदावन में बस गए हैं या चले गए हैं कि वो मुक्ति का धाम है, शायद हमारी मुक्ति यहाँ हो जाए। कुछ लोग बुजुर्ग हैं, कुछ जवान भी हैं, कई लोग घर छोड़कर चले गए हैं कि शायद हमें ठाकुर जी की दर्शन हो
0: जी।
1: कभी तो कभी दर्शन होंगे
0: जी।
1: माला जपने से होंगे या उनकी सेवा करने से होंगे। तो अंदर से तो वो टूट कर गए हैं, कहीं से भी गए हैं वृंदावन में, बट वहां जाके उनको जो आंतरिक शांति मिली है या वो वहीं रहना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारी मुक्ति यहीं हो, ठाकुर जी के चरणों में, वृंदावन धाम में, यमुना मैया के किनारे हम यहीं रमे रहें, भक्ति भावना में रमे रहें, हरे कृष्णा का जाप करते रहें और हमारी मुक्ति यहाँ हो।
0: आपने जिस संस्था की बात की, क्या आप वहां जाके उन लोगों की भी कुछ मदद करते हैं या उनके साथ रहते हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं साथ रहती तो नहीं हूँ, मैं कुछ टाइम के लिए जैसे जाती हूँ तो मैं अपने मन से जो भी करना चाहती हूँ मैं करके आती हूँ। उनसे कई बार मैं फोटोएं भी खींच के आते हैं, हम लोग बड़ी 4-5 लेडीज 10 हैं ऐसी जिनको मैं हमेशा वृंदावन जाती हूँ तो
0: उनसे मिल के आती हूँ
1: या गोस्वामी जी हैं हमारे, उनके थ्रू उनको भिजवाया जाता है, जो भी भिजवाना होता है। ये सब गुप्त होता है, मैंने कभी आज तक अपनी लाइफ में दिखावा नहीं करा।
0: बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर आज अगर हम किसी की मदद करते हैं तो जितनी हम मदद नहीं करते हैं उतनी हम उसकी बखान करते हैं,
1: वो फिर हर्ट करता है किसी को, मन दुखाता है। अगर हमने सेवा करके दिखा दिया, हर्ट कर दिया, तो वो सेवा काहे की रही फिर। तो इसमें एक संस्था है जहाँ पे बुजुर्ग लोग वहाँ रहती हैं, जो विधवाएं रहती हैं ज्यादा, मैंने अपने उसमें शेयर भी करी है फेसबुक पे वो वीडियो। वहाँ की एक बुजुर्ग औरत ने मुझे 2-4 लाइनें गा के सुनाई थी एक दिन। मैंने बोला माता जी भजन सुनाओ
0: जी।
1: तो उन्हीं का ही सुनाया हुआ मैं सुनाती हूँ, है तो फिल्मी सॉन्ग है ये, बट उन्होंने माता जी ने गाया, मैं उनके मुंह से सुना तो मैं आपको सुना रही हूँ। 80 साल की वो बुजुर्ग औरत है, कॉटन की साड़ी पहनती हैं, वाइट, जब भी कहती हैं कि वाइट साड़ी पहनना पसंद करती हैं वो, मैं वाइट ही उनको लेके जाती हूँ। वो कहती थी, मेरे रोते नैना पूछे बोलो जग तिखवैया, छोड़ दिया जिसको माँ जी ने।

0: उसने, मैया जी ने मुझे ये लाइनें क्यों सुनाई, उनका बेटा उनको वृंदावन छोड़ गया कि हम आपकी देखरेख नहीं कर सकते, फादर के गुजरने के बाद वो उनको वृंदावन छोड़ गया। तो वो रोई भी, बिलकाई भी, मगर उसने अपने मन से कहा कि एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था, जब बच्चों के घर बसते हैं तो हमें थोड़ा अलग होना ही है। तो मैंने बहुत अच्छा करा, मैं वृंदावन आ गई, यहाँ बस गई, ठाकुर जी के चरणों में रहती हूँ, दिन रात माला जाप करती हूँ, शायद मुझे मुक्ति मिले और मैं उनके गोकुल धाम में वास करूँ।
1: रेणु जी, ये बहुत ही भावुक पल है, क्षण है हम सबके लिए, और मैं आशा करता हूँ कि श्रोताओं के लिए भी है। माँ ही एक ऐसी व्यक्ति है इस दुनिया में जो सबको पालती है,
0: मगर माँ को कोई नहीं पाल सकता।
1: है जिसको बच्चे बड़े होने के बाद छोड़ देते हैं, नहीं पालते हैं।
0: माँ को नहीं पाल सकता कोई, माँ बहुत भारी पड़ती है, चाहे वो चार भाई हो चाहे एक ही लड़का हो।
1: रेणु जी, आप आज हमारे इस स्टूडियो में आए कि आप ये बताएं कि आपको यहाँ आके कैसा लगा?
0: मुझे यहाँ आके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है मेरा इंटरव्यू देने का आपके साथ बैठ के। मैं गाया तो बहुत है, मैंने आस्था में गाया, संस्कार में गाया, बड़े बड़े स्टूडियो में गई, मैं दिव्या चैनल में गाया, बट यहाँ आके मुझे जो वातावरण मिला, जो मैंने ऑब्जर्व करा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने अपने मन की बातें करी हैं यहाँ बैठ के, वहाँ तो सिर्फ गाया जाता था, यहाँ बातें करी हैं मैंने अपने, मेरे जो दिल में था वो मैंने बयां करा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे आज बुलाया और आने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया।
1: रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए। मैं चाहता हूँ कि अंत में कुछ आप अपनी ओर से कुछ कहना चाहें।
0: हाँ जी, मैं जरूर कहूंगी, जैसे कि हमारे मन के अंदर ही हमारा आत्मा राम है
1: जी।
0: अगर हमारा, कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो मन के अंदर शुद्धता है तो भगवान कहीं दूर नहीं है, हमारे अंदर ही है
1: जी।
0: हम ढूंढते तो बाहर हैं, वो हमारे अंदर ही बैठा है
1: जी।
0: वो अभी भी मुझे सुन रहा है बोलते हुए
1: जी।
0: तो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े पहुंचे हुए शंकराचार्य सब यही कहते हैं कि मन में अंदर ही भगवान है, भगवान कहीं बाहर नहीं है। फिर भी मैं दो चार लाइनें पंजाबी में बोलना चाहूंगी,
1: प्लीज,
0: अगर इजाजत हो तो।
1: प्लीज।
0: पत्थर दी मारते हो जिथे

आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 7। आज के मेहमान थे श्रीमती रेनू मेहता जी। रिकॉर्डिंग दीपक कश्यप, एडिटर प्रस्तुतकर्ता व निर्देशक भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।
1: FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो दस्ता हम सफर जिंदगी का और मैं हूं आपका अपना रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। हर बार गुदगुदाता हूं, हंसाता हूं, रुलाता हूं अपनी बातों से, अपनी कहानियों से। आज कुछ ऐसी बात कहने आया हूं जिसको आप सुनेंगे तो शायद अफसोस करेंगे कि हमने इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लिया। आप इसको अपने पास किसी भी तरह से रिकॉर्ड कर लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज है। मैं आपको भक्ति के दोहे बता रहा हूँ और उन दोहों में स्वास्थ्य के राज छुपे हुए हैं, तो आप सिर्फ सुनिए और इस पर समझिए, अगली बार उसको स्टोर कीजिए। तो दोहों के बीच में कहा यह गया है कि पानी में गुड़ डालिए बीत जाए जब रात, पानी में गुड़ डालिए बीत जाए जब रात, सुबह छान कर पीजिए अच्छे हों हालात। ऊर्जा मिलती है बहुत पिए गुनगुना नीर, कबज खत्म हो पेट की मिट जाए हर पीर। प्रातःकाल पानी पिए घूट घूट कर आप, बस दो तीन गिलास है और औषधि का बाप। ठंडा पानी पियो मत करता क्रूर प्रहार, करे हाजमे का सदा ये तो बंटा थार। भोजन करें धरती पर अल्थी पल्थी मार, चबा चबा कर खाइए वैद न झांके द्वार। प्रातःकाल फल रस लो दोपहर लस्सी छांस, सदा रात में दूध पी सभी रोग का नाश। एल्युमिनियम के पात्र का करता जो उपयोग, आमंत्रित करता वो सदा 48 रोग। फल मीठा खाए के तुरंत न पीजे नीर, फल मीठा खाए के तुरंत न पीजे नीर, ये सब छोटी आंत में बनते विषधर तीर। चोकर खाने से सदा बढ़ती तन की शक्ति, गेहूं मोटा पीसिए दिल में बड़े व्यक्ति। आप सोचते होंगे ना कि बीच में रुका क्यों, बताता हूँ आपको। मैं भी मोटा नहीं खा पाया, कहने के टाइम फिर याद आया कि हाँ मुझे घर पर जाकर बताना है कि जो गेहूं है वो मोटा पिसवाना है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ लोगों को बताते रह जाऊं और मेरे अपने दिल में विरक्ति हो जाए। तो चाहिए अगले दोहे के ऊपर आते हैं कि रोज मुलठी चूसिए कफ बाहर आ जाए। क्या कहा, रोज, एक दिन की बात नहीं है, रोज मुलठी चूसिए कफ बाहर आ जाए, बने सुरीला कंठ भी सबको लगत सुहाए। भोजन करके खाइए सौंफ गुड़ अजवाइन, पत्थर भी बच जाएगा जाने सकल जहां। प्रातः दोपहर लीजिए जब नियमित आहार, 30 मिनट की नींद ले रोग न आवे द्वार। भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद का लुट जाए व्यापार। घूंट घूंट पानी पियो रह तनाव से दूर, एसिडिटी और मोटापा होवे चकनाचूर। अर्थराइटिस या हर्निया अपेंडिक्स का त्रासा, पानी पीजे बैठकर कभी न आवे पासा। रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाप, सौगंध राम की खाए के तुरंत छोड़ दो चाय। हैं तो दोस्तों बहुत कुछ जो मैं आपको सुनाता रहूं और आप सुनते रहें, लेकिन बात तो तब है ना कि हम अमल कितनों पर करते हैं। इसलिए आज इतने ही तो है। जब आप बताएंगे ना कि आपको इनसे कुछ लाभ हुआ और आप और सुनना चाहेंगे, फिर मैं आपके लिए और भी दोहे तैयार करूंगा और आपको उन दोहों से भी मुखातिब करूंगा। फिलहाल अपने इस रेडियो दोस्त को इजाजत दीजिए। अगली बार तक के लिए एक और नई रचना लेकर आपके बीच में हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए सुनते रहिए हमारे रेडियो वितस्ता को, और आपका जो भी प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया हमारे को हमारे दूरभाष नंबर 7056413010 पर सूचित करना मत भूलिए। और साथ ही हमें बताइए आपकी पसंद क्या है, आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

ये दुनिया है एक ख्वाब की तरह, जहां कुछ भी हमारा नहीं, बस एक समझौता है जिसे हम निभाते हैं अपनी खुशियों को बरकरार रखने के लिए। उम्मीदों के फासले कहीं करवट न ले, कहीं हमारे ख्वाब न बिखर जाएं पहले ही की तरह। इसलिए रहते हैं हमेशा इबादत में मसरूफ, गरजे तुम नहीं हो, पर दिल कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

इन बरसातों में दिल ने फिर याद किया उन्हें जो कभी दिल के करीब थे, वो जिसने फिजाओं के साथ गुनगुनाना सिखाया, वो जो कभी खत लिखा करते थे और मोहब्बत का इजहार करते थे। आज तू कहीं भी हो, मेरे साथ हो, मेरे पास हो, मेरे रूबरू तेरी जात है, तेरा वसल ओ मेरी दिल रुबा, तेरी हसरतों का जो साथ है।

कभी देखा था यरकानी पत्तों के मौसम में, आंखों में बहते थे दर्द के आंसू, धड़कते दिल की सदा यहां सुने कौन, कोहरे की चादर में लिपटी रूह की खामोशी कोई तो महसूस करे, काश कोई फिर से लौट आए इन दर्दीली पथरीली रातों को हरा करे, चांद का अक्स दिखाए इन सुनसान रातों में, रोते बिलखते बच्चों को चुप कराए। एक ख्वाब देखा था मैंने पीले पत्तों के मौसम में।

रुक जाती हैं ये पागल हवाएं, ये फिजाएं तुम्हारे कदमों की आहटों से, पर क्यों बेवजह तुम्हारी परेशानी सिसकियों में बदल जाती है इन घने काले बादलों की तरह। तुम्हारे चेहरे पर मायूसी छा जाती है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास अमानत की तरह।

गमजदा दिलों को कौन समझाए कि यहां सरेआम मोहब्बत होती है नीलाम, और बेवजह यूं ही मन रहता है उदास।

कौन यहां किसका है कोई नहीं जान पाया। सबकी आंखों में फरेब के आंसू बह रहे हैं, हर कोई सिमटे हुए पलों की रहनुमाई करता है और नीलामी के बावजूद अपने प्यार पे एतबार करता है। यूं ही बेवजह आंखों में आंसू लिए महबूब का इंतजार करता है।

कभी यूं भी तो हो, परियों की महफिल हो, मौसम हो बरसात का और तुम आओ। कभी यूं भी तो हो, ये नर्म मुलायम हवाएं तुम्हें छू कर गुजरे और तुम आओ। मेरी भूली बिसरी यादों में तुम शामिल हो। कभी यूं भी तो हो, मेरे जज्बात एहसासात का उन्वान बन पाते। कभी यूं भी तो हो, तुम शामिल रहते मेरी रूह में, इन घटाओं में, मेरे हर मौसम में पिछले मौसम की तरह। कभी यूं भी तो हो, तुम जो आते मेरा मकान घर बन जाता और दीवारें बोलने लगती। कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, तुम शामिल होते मेरे ख्वाबों में मेरी करवटों की तरह। कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे,

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहां तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहां खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती हैं।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत कसोटी जे कसे सोई सांचे मीत। सुविख्यात कवि रहीम दास द्वारा रचित ये दोहा हम सब ने आज तक सुना भी है और पढ़ा भी है। इस दोहे के माध्यम से कवि हमसे कहता है, जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तब उसके अनेक सगे संबंधी तथा मित्र बनते हैं, उसके समीप आते हैं, पर विपत्ति के समय में जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सुखोरी। आज एक नया कार्यक्रम लेके आया हूं और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दोस्ती की, दोस्तों की, और जिंदगी में हमारे दोस्तों का क्या महत्व है। आज का ये कार्यक्रम मैं अपने सभी दोस्तों को समर्पित कर रहा हूं, जो दोस्त हमारे साथ हैं और जो दोस्त हमारे साथ अब नहीं है। मैं ये कहूंगा कि दोस्ती और दोस्त ये भगवान ने पहले ही निर्धारित किए होते हैं। बिना दोस्तों के और बिना दोस्ती के जिंदगी अधूरी है। दोस्तों पर इतना निर्भर इंसान होता है शायद अपने सगे संबंधियों पर भी नहीं। कुछ दोस्त जिंदगी में छूट जाते हैं, कुछ दोस्त जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जिंदगी पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। दोस्ती एक पूजा है और पूजा ही दोस्ती है। दोस्ती एक प्रार्थना है, दोस्त एक साथी है और उसका साथ रहना ही दोस्ती कहा जाता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं, ए फ्रेंड इन ए नीड इज फ्रेंड इन डीड।

रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।

व्यक्ति को प्रत्येक रिश्ता अपने जन्म से ही प्राप्त होता है। अन्य शब्दों में कहें तो ईश्वर पहले से ही बना के देता है, पर दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जिसका चुनाव व्यक्ति स्वयं करता है। सच्ची मित्रता रंग रूप नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी तथा इसी प्रकार के किसी भी भेदभाव का खंडन करती है। आमतौर पर यह समझा जाता है मित्रता हम उम्र के मध्य होती है, पर यह गलत है। मित्रता किसी भी उम्र और किसी के साथ भी हो सकती है। व्यक्ति के जन्म के बाद से ही वो अपनों के मध्य रहता है, खेलता है, उनसे सीखता है, पर हर बार व्यक्ति हर किसी से साझा नहीं कर सकता। व्यक्ति का सच्चा मित्र ही उसके प्रत्येक राज को जानता है। पुस्तक ज्ञान की कुंजी है, तो एक सच्चा मित्र पूरी पुस्तकालय जैसा है, जो हमें समय समय पर जीवन के कठिनाइयों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्णय में दोस्तों की मुख्य भूमिका होती है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति स्वयं जैसा होता है, वो अपने जीवन में दोस्त भी वैसा ही चुनता है, और व्यक्ति से कुछ गलत होता है तो समाज उसके दोस्तों को भी सम्मान रूप से उस गलती का भागीदार समझता है।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर। जहां लोग आपसे बात भी अपने स्वार्थ सिद्ध के मनोकामना से करते हैं, ऐसे में सच्ची मित्रता भी बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। प्राचीन समय से ही लोग अपनी इच्छाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दोस्ती करते थे तथा अपना कार्य हो जाने पर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को दोस्ती का हाथ हमेशा सोच समझकर अन्य की ओर बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति अपना सुख दुख तथा हर तरह की बात जिसे बांट सके, वो व्यक्ति का मित्र होता है। मित्रता जीवन के किसी भी पड़ाव में आकर तथा किसी से भी हो सकता है। एक पिता अपने पुत्र का मित्र हो सकता है, इसी तरह माँ बेटे में मित्रता हो सकती है, पति पत्नी में भी मित्रता हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि हम उम्र के लोगों के मध्य ही मित्रता हो। सच्ची दोस्ती व्यक्ति को सदैव सही मार्ग दिखाती है। नुक्ताचीनी को मित्रता कहना अनुचित होगा। परिवार के बाद दोस्त व्यक्ति की दूसरी प्राथमिकता होती है, जिसके साथ वो हर अच्छे बुरे पलों को व्यतीत करता है। सुविख्यात कवि रहीमदास द्वारा एक चर्चित दोहा में कहा गया, टूटे सुजन मनाए जो टूटे सो बार, रहमन फिर पाए टूटे मुक्तहा। मतलब, सच्चे मित्र जितनी बार आपसे रूठे उन्हें मना लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे मोतियों की माला के टूट के बिखर जाने पर हम उन्हें बार बार पिरोते हैं क्योंकि वो मूल्यवान है, ठीक उसी प्रकार सच्चे मित्र भी मूल्यवान होते हैं और उन्हें नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मित्रता का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन में भी है। मेरे मित्रों का समूह मेरे लिए दूसरे परिवार जैसा है। जीवन में व्यक्ति जिन आदतों को वाहन करता है वो मित्रता की ही देन होती है। व्यक्ति के घर से निकलने पर पहली आवश्यकता मित्र होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति मित्र बनाने की होड़ में लग जाता है, क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है तथा वो अकेले नहीं रह सकता। पर यह कितनी गंभीर बात है, हम अपने लिए कोई जानवर भी लाते हैं तो उनके तहकीकात करके लाते हैं, पर हम मित्र बनाने में इतना समय नहीं लगाते, जबकि मित्रता व्यक्ति का पतन भी कर सकता है और व्यक्ति को कामयाबी के उच्च शिखर तक भी पहुंचा सकता है। ज्यादातर हम व्यक्ति को अपना मित्र बनाने से पहले उसके हाव भाव तथा उसका हंसमुख चेहरा ही देखते हैं, जो संकट में हमारे काम नहीं आता। यहां पर मेरा एक व्यक्तिगत कहना है कि अगर आपसे दोस्त रूठ जाए या आप उनसे रूठ जाए तो जितना जल्दी हो सके आप उनको मना लें, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, वो इतना दूर चला जाए कि आप उनसे कोई संवाद ही ना कर सके। इसलिए कहा गया है, तेरे जैसा यार कहां।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर। जीवन में लोगों के अनेक दोस्त बनते हैं, बचपन के दोस्त, स्कूल कॉलेज के दोस्त, व्यावसायिक दोस्त, मतलब टाइम पास के दोस्त आदि। इनमें से कुछ वक्त गुजारने के साथ पीछे छूट जाते हैं और कुछ जीवन भर आपके हर अच्छे बुरे परिस्थितियों में आपके साथ रहते हैं। अपनी परेशानी की बात अपने दोस्तों को बताने से निश्चय ही मन का भार कम होता है तथा मित्रता व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। मित्रता जीवन को रोमांच से भर देता है। मित्र के होने पर व्यक्ति खुद को अकेला महसूस नहीं करता तथा सच्चा मित्र बिना विचार किए ही आपके संकट में देख मदद के लिए आगे आता है। वरन लोग तो बहुत हैं जो कहते नहीं थकते हम आपके मित्र हैं। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कृष्ण द्वारकाधीश बने तथा सुदामा एक गरीब ब्राह्मण ही रहे, फिर भी विपत्ति पड़ने पर कृष्ण ने दोस्ती का फर्ज निभाया और सुदामा के सारे दुख दूर कर दिए। कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं, शायद वो लोग दोस्त कहलाते हैं। दोस्ती प्यार का दूसरा रूप है। दोस्ती एक भाव है। हम सभी के जीवन में एक, दो या इससे भी अधिक दोस्त होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई दोस्त ना हो। आपस में व्यवहार मिलने पर बहुत कम समय में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर यह भी महत्व नहीं रखता कि हम उस व्यक्ति से कभी मिले हैं या नहीं। व्यक्ति समस्या अपने परिवार के साथ भी बांट नहीं पाता है। वो मित्रता में दोस्तों को बड़े आराम से बता देता है, जिसके साथ हम जीवन के उत्साह, हर्ष, उल्लास, खुशी तथा शोक के बिना किसी तोड़ मरोड़ के साथ बांट सकते हैं। वही व्यक्ति का सच्चा मित्र है। मित्र हमें हर बुरे कार्यों से बचाता है तथा जीवन के हर कठिनाई में हमारे साथ रहता है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ चाहता है। मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416013010 पर दे सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। आप सब अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

पेश है कार्यक्रम नारी एक दर्पण एपिसोड 3। आज के मेहमान हैं ऐश्वर्या धीमान और ज्योति बगन। प्रस्तुतकर्ता आरजे सेजल। निर्देशन भारत सोपुरी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सेजल, आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नारी एक दर्पण के तीसरे अंक में। पिछले दो अंकों में हमने बात की उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने समाज की बेड़ियां तोड़ आसमान की ऊंचाई को छुआ, महिला और बाल विकास की ओर काम किया, साथ ही साथ देश को उन्नति के मार्ग पर लेकर गई और आज की पीढ़ी के लिए एक मिसाल के रूप में या कह लीजिए कि एक प्रेरणा के रूप में रूबरू हुई। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम आज की पीढ़ी को ही लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे समाज के महिलाओं की तरफ बदले रुख की, महिलाओं को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आज के युवा किस प्रकार सफलता को पा सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दो युवतियां जो अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं और अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल कर रही हैं। एक जो बिजनेस वूमन है और गृहिणी भी, और एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आज की आत्मनिर्भर युवती भी। तो ज्योति और ऐश्वर्या, मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सेजल हमें इनवाइट करने के लिए।
2: थैंक यू सेजल, एक्साइटेड।
0: हम आप दोनों से बात करेंगे ताकि हमारे श्रोता आप दोनों को सुन पाए और जान पाए। तो शुरुआत करते हैं ज्योति आपसे। मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में कुछ जानकारी दें।
1: हेलो, मैं ज्योति बग्गर हूँ। मैं अम्बाला की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग अम्बाला कैंट से की थी। देन मैंने अपना कोर्स किया चंडीगढ़ से वेब डिज़ाइनिंग का, प्रो डेवलपमेंट का। तो फिर उसके बाद मैंने मेकअप का भी कोर्स किया है और बाद में फिर मैंने मेकअप में फ्रीलांसिंग की है। एंड देन फिर मैं फिर से अम्बाला आ गई, फिर अम्बाला में आकर फिर उसके बाद शादी होगी, शादी के बाद फिर बेबी, फिर उसके बेबी के बाद मैंने अपना एक न्यू बिजनेस खोला है, उसका नाम है द वेब आर्ट। और मैं रेजन आर्टिस्ट हूँ और मैं हैंड कास्टिंग भी करती हूँ, हैंड इम्प्रेशन।
0: तो ज्योति, आपने बोला रेजन आर्टिस्ट और हैंड कास्टिंग, तो आप ये बता सकती हैं, क्योंकि बहुत यूनिक वर्ड है मेरे लिए भी और शायद श्रोताओं के लिए भी, तो ये चीज है क्या?
1: रेजन आर्ट में ये होता है कि आप अपनी कुछ भी चीज, मतलब जो क्योशस चीज है, वो आप प्रिजर्व करवा सकते हो लाइफ टाइम के लिए। ये आपके लिए एक मेमोरी हो जाती है, ये केमिकल होता है, उसमें सब हमेशा के लिए प्रिजर्व हो सकती है अगर हम उसको इतनी ऊपर से फेंके तब भी नहीं टूटता वो। और हैंड कास्टिंग वो होता है जैसे बेबी हमारा 2 मंथ्स का है, 1 ईयर का है, तो हम उसके हैंड कास्ट करवा सकते हैं। वो एक तरह से कास्टिंग होती है, वो जैसे बेबी बड़ा होता रहता है तो बड़े होकर देखेगा कि हाँ भाई ये हमारे मम्मी पापा ने करवाया था, हमारा हैंड का कितने छोटे छोटे हाथ थे हमारे और हम बड़े हो गए हैं, तो उनके लिए एक मेमोरी रह जाती है लाइफ टाइम के लिए कि हाँ हम इतने छोटे छोटे थे।
0: तो ये सारा काम आप खुद ही मैनेज कर रही हैं इस वक्त या आपकी टीम है?
1: नहीं, ये मैं और मेरे हस्बैंड करते हैं। अभी हमारा स्टार्टअप है तो हमने कोई अभी कोई हेल्पर यहाँ से, जो हम दोनों ही करते हैं
0: जी। तो ज्योति, जैसे अभी आपने बताया कि आपने वेब डिजाइनिंग की, तो वेब डिजाइनिंग से आपका इंटरेस्ट इस तरफ कैसे शिफ्ट हुआ और ये कब आपने चीज डिसाइड की कि मुझे ये करना चाहिए?
1: जैसे वेब डिजाइनिंग से मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें एडिटिंग वगैरह सिखाते हैं वेब डिजाइनिंग में, तो जैसे फोटोग्राफी आफ्टर बेबी, मैंने ना अपने बेबी का फोटो शूट किया, उसको एडिट किया, जैसे उसका नाम कीशु है तो मैंने कीशु के अंदर लेटर्स में फोटोज लगा दी, तो फिर मैंने ऐसे ही उसको फ्रेम करवा लिया, ऐसे ही मैंने डाला अपने इंस्टाग्राम पर। तो उन्होंने कहा कहाँ से बनवाया, किसी ने पूछा मेरे से कहाँ से बनवाया, तो मैंने कहा ये मैंने खुद बनाया है। तो कहते अच्छा कितने का बन जाएगा ये वो, मैंने कहा कि ये तो अभी मैंने कुछ भी नहीं, ये तो मैंने खुद ही बनाया है। तो मेरी एक फ्रेंड ने सजेशन दिया मुझे कि आपको ना ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो उससे मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। पहले तो मैं सिर्फ फोटो फ्रेम्स वगैरह बनाती थी, बट उसके बाद मैंने जैसे थोड़ा सर्च किया तो मेरे एक्सप्लोर पेज पे वो आता था, जैसे रेजन आर्टिस्ट आर्ट का, तो मैंने इतना इंटरेस्ट हो गया उसमें, तो मैंने उसमें एक साल किया पहले, तो फिर उसके बाद मैंने खुद ही ट्राई किया कि हाँ ये कहाँ से सीख सकते हैं हम, तो मैंने यूट्यूब से ना इसको थोड़ा लर्न किया काफी शुरू में, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आई कि हाँ ये कैसे कहाँ से सामान लाना है, कहाँ से वेंडोर वगैरह सब कुछ कैसे होता है, मोल्ड्स वगैरह, तो काफी दिक्कत आई, बट बहुत सही चल रहा है अब तो।
0: तो आप जैसे ये चीजें प्रिजर्व करती हैं, इन्हें एक तो प्रिजर्व करना भी मुश्किल है, और ये चीजें हम अपनी लाइफ में किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, और क्या क्या टाइप्स के आप प्रोडक्ट प्रिजर्व करते हैं?
1: जैसे मुश्किल जो काम करता है उसके लिए तो मुश्किल नहीं है, बट जो देखता है उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब जैसे हैंड कास्टिंग है, अब बेबी जब जैसे ग्रो होता है वो वापिस तो नहीं छोटा हो सकता ना, तो वैसे ही हम उनके हैंड कास्ट करते हैं, तो ताकि मेमोरी रह जाए हमेशा के लिए, तो फिर वैसे ही हैंड कास्टिंग और वैसे ही रेजन होता है कि जैसे एक बार बेबी होता है तो उसकी कॉर्ड वगैरह होती है, प्रेगनेंसी किट होती है, बेबीज के हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, तो वो प्रिजर्व होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क प्रिजर्व होता है, और एक जैसे शादी होती है, शादी एक ही बार होती है, तो उसकी जो वरमाला होती है ना वो हम लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व कर देते हैं। जैसे अभी तेलंगाना में मेरे पास मैरिज थ्रेड रोप आती है, तो वो प्रिजर्व करवाते हैं, और फ्लावर्स आते हैं काफी सारे, तो वो हमेशा के लिए हमारे पास रह जाते हैं।
0: जी ज्योति, आपसे बातें यूं ही जारी रहेंगी, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस बारे में और जानने के लिए, और हमारे श्रोता भी जरूर होंगे। उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता रूबरू हों ऐश्वर्या से भी, तो ऐश्वर्या मैं चाहूंगी आप अपने बारे में छोटी सी इंट्रो दें।
2: जरूर, तो मेरा नाम ऐश्वर्या धीमान है एंड मैं अम्बाला से बिलोंग करती हूँ। मैंने स्कूलिंग अपनी अम्बाला DC मॉडल स्कूल से की है, जहाँ पे मैंने सब एक्टिविटीज़ की है, पढ़ाई से लेके को करिकुलर। स्कूलिंग के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है पंजाब से, LPU जलंधर। मेरी ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग मैंने बहुत सोशल वर्क में आई वॉज एक्टिव, और मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन सोशल अपने समाज की तरफ भी दे सकूं, और रेदर देन कि मैं सिर्फ पढ़ाई में रहूं, मैंने कोशिश किया कि वहां पे भी मेरा कंट्रीब्यूशन जाए। और उसके बाद कॉलेज से प्लेसमेंट का ऑफर मिला, और मैं अपनी फैमिली से फर्स्ट कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो वेरी हैप्पी कि अभी मुझे अपनी लाइफ एक अननोन सिटी जहाँ पे मैंने एज अ स्ट्रेंजर अपना ज्वाइन किया और वहाँ पे अभी मैं सस्टेन कर रही हूँ, तो अभी यहाँ तक का सफर यही सब है।
0: तो ऐश्वर्या, मैं एक कॉमन सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अभी कहा कि आप फर्स्ट इंजीनियर हैं अपनी फैमिली में से, तो ये इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ कैसे गया?
2: हाँ, तो हुआ क्या कि 5th क्लास में मेरे पापा घर पे कंप्यूटर लेके आए, तो जैसे एक छोटे से बच्चे को क्यूरियोसिटी होता है कि हमें एक्सप्लोर करना है कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने शुरू तो पेंट से किया या फिर गेम से किया, लेकिन वो चीज़ मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि हम इस कंप्यूटर एक छोटी सी चीज़ है उससे हम कुछ कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा स्टेज पे अपने उसको काम को लेके जा सकते हैं, तो आई थिंक वहाँ से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट बना। और जब मेरे से कोई स्कूल में पूछता था कि आपका क्या गोल है, बड़े होके क्या बनना है, तो

0: करी बाहर जाकर?
1: अगर मैं बताऊं तो पहली हर्डल तो घर पे थी, ऑल्दो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हाँ तू जा सकती है, सिटी दूसरी है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बट मम्मी की तरफ से थोड़ा सा झिझक था कि अभी बेटी छोटी है, अभी बाहर जाएगी तो वो कैसे सस्टेन करेगी, खाना नहीं आता बनाना, तो वो सब घर में ज़रूर था, लेकिन मुझे लगता है कि पापा की वजह से मैं बाहर गई और वहाँ पे जाके भी बहुत हर्डल्स थे, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ वहाँ पे लैंग्वेज हर्डल था, मुझे नहीं आती थी उनकी लैंग्वेज और वो मेरे को नहीं समझ सकते थे, तो और खाना बहुत डिफरेंट है वहाँ पे, तो आई थिंक ये दो प्रॉब्लम थी, और वहाँ पे जाके फिर धीरे धीरे मैंने एडजस्ट किया कि लैंग्वेज बैरियर हटाया धीरे धीरे, वहाँ के लोगों से भी घुले मिले, ऑल्दो इंग्लिश में वहाँ पे कन्वर्स करना पड़ता है, बट वहाँ के लोगों से भी कनेक्शन बनाना शुरू किया, धीरे धीरे वो कनेक्शन बन गया और आई थिंक अभी अच्छा चल रहा है, वहाँ पे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे अपना घर हो बैंगलोर, तो अभी वो स्टेज पे मैं आ चुकी हूँ।
0: जी, जैसे आपने कहा कि फैमिली बहुत सपोर्टिव रही इस चीज़ में बाहर, और फैमिलीज को होना भी चाहिए, और इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आपने पहली बार आफ्टर योर 12th और आफ्टर 10th आपने जब कहा कि आप परस्यू करना चाहती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो फैमिली का उस टाइम पर क्या रिस्पॉन्स रहा इस चीज़ को लेकर?
1: जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरी फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट था, और मैं चाहती हूँ कि हर किसी की फैमिली ऐसे ही अपने बच्चे को सपोर्ट करे, वो जो भी करना चाहता है उसके साथ खड़ी रहे, और अगर बच्चा गिरे भी तो उसको हौसला दे कि हाँ तुम खड़े होके अभी फिर से ट्राई कर सकते हो। मुझे लगता है मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और उनकी वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया।
0: तो ज्योति, मैं यही चीज़ आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा जब आपने पहली बार उन्हें बिजनेस शुरू करने के बारे में बताया?
2: मेरी फैमिली, इन लॉस भी बहुत अच्छे हैं, मेरी मम्मी और वाले भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे बेबी को संभाला और मेरी इन लॉस ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ तुम्हें करना चाहिए, आजकल तो सब कर रहे हैं, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, तुम घर बैठ के क्या करोगे, तो उन्होंने इतनी हेल्प की है ना मेरी, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉस है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, और मेरी सिस्टर है जो मुझे सामान चाहिए वो ला कर देते हैं, कई बार मैं नहीं जा सकती तो वो जाते हैं, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अगर वो सपोर्ट ना करते ना तो आज मैं यहाँ तक ना आती, और हम दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है ना कि अगर ना होती तो मैं ये बिज़नेस स्टार्ट ही ना कर पाती, क्योंकि कई लोग बोल देते हैं कि तू क्या करेगी, तू घर बैठ, हम घर बैठने के लिए तो नहीं है ना, मतलब कि हमें घर के साथ साथ कुछ करना भी चाहिए।
0: तो बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा नारी एक दर्पण में। फिलहाल जो दो युवतियां हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि उनको कौन सा गाना पसंद है, और वो गाना हम अपने श्रोताओं को भी सुनाएंगे। तो ज्योति, आप अपना कोई मन पसंदीदा गाना बताएं।
2: बम बम भोले, मेरी बेटी को ना सॉन्ग पसंद है।
3: చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడిగిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికి చకచో గిలిగిలి మల్ సులు సులు మల్ మకరక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం చగడదుం చికి చకచో।

0: गाना तो बहुत ही मधुर था और बहुत ही खूबसूरत भी और शरारत से भरा भी। और अब आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं हमारे दो खूबसूरत मेहमानों के साथ। ऐश्वर्या, आपने कहा कि आप सोशल वर्क से जुड़ी हैं, तो ये नेशनल सर्विस स्कीम सोशल वर्क से रिलेटेड रहा, तो आप इससे कैसे जुड़ी और कैसे इतनी कम उम्र में सोशल वर्क की तरफ आपका रुझान गया?
1: तो इसकी शुरुआत मुझे लगता है मेरे दादाजी से हुई। तो वो हमेशा से एक देश हित भावना हमारे अंदर डालते आए हैं। तो जैसे ही मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, उधर हमें बहुत सारे क्लब थे जो हम ज्वाइन कर सकते थे, जैसे NCC, NSS थी। तो मुझे हमेशा से रहता था कि मैं किसी ना किसी माध्यम से अपने देश के काम आ सकूं या कुछ भी छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन कर सकूं। तो मैंने सोचा कि हम NSS ज्वाइन करते हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में ही NSS ज्वाइन किया था। धीरे धीरे हमें वहाँ पे जैसे ही जुड़े, उसके अंदर हम स्लम एरियाज में बच्चे होते हैं, उनको खाना खिलाते हैं या फिर उनको कपड़े बांटते हैं। जैसे हॉस्टल में हम लोग काफ़ी जे क्या करते हैं, कपड़े ऐसे ही रखे होते हैं जो वो यूज़ नहीं करते हैं, तो हम हॉस्टल से कलेक्ट करके जो भी सामान किसी के काम आ सके वो सब कलेक्ट करके हम स्लम एरियाज में बांटने जाते थे। हमने कैंप्स लगाए हैं गांव के अंदर जाके, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को हमने कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश की है, या फिर कह सकते हैं कि वोटिंग के लिए वहाँ पे अवेयरनेस की है कि आप चाहिए, या फिर हम स्कूल में जाके कभी पेंटिंग कॉम्पिटिशन जो कि बच्चों को नेशन से जोड़ सके। तो ये सब टाइप के काम हमने NSS में किए हैं। और मुझे लगता है एक अलग तरह का डेवलपमेंट होता है जब आप ऐसी चीज़ों से जुड़ते हैं। वहाँ पे इतने तरह तरह के लोगों से आप जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है एक अलग तरह का डेवलपमेंट होता है आपके पर्सनैलिटी में, एंड आप अलग तरह से निखर के आ सकते हैं उसके माध्यम से।
0: जी बिल्कुल सही कहा कि जीवन में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे आपने कहा कि बच्चों को आपने कंप्यूटर से जोड़ा, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से आपने बच्चों को इस टेक्नोलॉजी से जोड़ा?
1: तो हम लोग कॉलेज से, हमारे पास लैपटॉप होता था, तो हम लोग उसे गांव में लेके जाते थे। सब बच्चों को वहाँ पे जो भी कॉमन प्लेस होती है, तो हम वहाँ पे उन लोगों को इनवाइट करते थे कि अपने बच्चों को भेजो, हम उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो वो सब गांव से बच्चे इकट्ठा होते थे, तो उनको एक तरह से हम टीचर बन के कभी चुप कराते थे, कभी दिखाते थे कि आप पेंट कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेक्टिव वे में हम जोड़ने की कोशिश करते थे बच्चों को, कि वो सिर्फ एक गाँव में ही सिमट के ना रह जाएं, उनको पता लगे कि बाहर भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनसे वो जुड़ सकते हैं। तो बच्चों के साथ हमने भी उनके दोस्त जैसा बन के उनको सिखाने की कोशिश की है।
0: जी बिल्कुल, बच्चों के साथ एक बार खुद का भी बचपना याद आ जाता है और इस खूबसूरत दुनिया को उन्हें भी जरूर देखना चाहिए। तो ज्योति, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप भी इस तरीके के सोशल वर्क से जुड़ी हैं?
2: अभी तो नहीं, बट ना थोड़े टाइम बाद हम भी स्टार्ट कर रहे हैं कि जो बेरोजगार महिलाएं होती हैं, जो घर में होती हैं, बैठी होती हैं, उनको भी काम दें। जैसे ज्वेलरी मेकिंग का काम होता है, तो हम उनको देंगे ताकि वो भी अपना स्टार्टअप करें, और फिर हम उनको आगे उनके प्रोडक्ट्स बनेंगे तो हम सेल करेंगे, हमारे पास भी एक न्यू प्रोडक्ट हो जाएगा।
0: तो अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो इसमें आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स अभी प्रोवाइड करने वाली हैं?
2: अभी आपने कभी सुना है मिठाई कैंडल?
0: नहीं, हमने तो दूसरी कैंडल ही लिया, ये मिठाई कैंडल क्या चीज है?
2: अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो हमने एक न्यू लॉन्च किया है, लड्डू कैंडल, मोदक कैंडल, घेवर कैंडल, गुजिया कैंडल, उसमें काफी सारी वैरायटीज हैं, तो अभी हम लॉन्च करने वाले हैं वो।
0: तो ये कैंडल खाने वाली कैंडल है या जलाने वाली?
2: को देख के खाने का मन करेगा, बट वो वैक्स है, वो सोय वैक्स की होगी प्योर।
0: तो ये बहुत ही क्रिएटिव चीज है और नई चीज भी है, मैंने पहली बार ये चीज सुनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो ज्योति, जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया, तो आपको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
2: जब कोई कुछ भी न्यू स्टार्टअप करते हैं, ऑफकोर्स काफी दिक्कतें आती हैं, और फिर कई बार तो कस्टमर भी हमें ट्रस्ट नहीं कर पाता है, हमें कस्टमर का भी ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है। बट कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर हमसे कनेक्ट करे तो हम उनसे कई बार हाफ पेमेंट करवा लेते हैं, क्योंकि फुल पेमेंट चाहिए होती है एडवांस में, क्योंकि कस्टमर अपना सामान बनवा कर भाग जाते हैं कई बार, तो ऐसे ही होता है। और भी हमारे साथ हुआ था एक बार, ऐसे कस्टमर ने हाफ पेमेंट की, आई डोंट नो कि उनके साथ हुआ क्या था, उन्होंने अपना प्रोडक्ट नहीं मंगवाया हमसे। अभी तो फिलहाल हमारे पास उनका प्रोडक्ट पड़ा है अभी भी, तो वो हमने एज अ प्रमोशन यूज कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ वेस्ट नहीं है। अब मेरे पास कोई न्यू कस्टमर आएगा, वो देखेगा कि कैसा है आपका ये रेजन, होता क्या है।
0: तो आपने जैसे बताया कि इस तरीके के अपने शुरू में फेस किए, तो जो अभी नए बिजनेस में आ रहे हैं इस वक्त युवा या जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें आप क्या राय देना चाहेंगे, इससे कैसे वो बच सके?
2: बस यही बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा एडवांस पेमेंट करवाएं और अपने कस्टमर को अपने ऊपर ट्रस्ट करवाएं कि हाँ हम सब प्रोवाइड करते हैं, कि हम फेक नहीं हैं, हम फ्रॉड नहीं हैं, हम अपनी सर्विस टाइम पे देते हैं। अगर थोड़ा लेट हो गया तो कुछ रीज़न होगा इसलिए लेट हो गया, बट कस्टमर को भी ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सपोर्ट करनी चाहिए कि हाँ स्मॉल बिजनेस है, होता रहता है, थोड़ा लेट हो ही जाता है। कई बार कस्टमर बोलते हैं कि आपने लेट कर दिया, थोड़ा टाइम लगता ही है हर चीज़ में, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं ना।
0: जी ज़रूर, दिक्कतें तो हर एक काम में आती हैं, बस हमें कभी हौसला नहीं हारना चाहिए। और ज्योति, आपका काम बहुत ही यूनिक है, तो क्या कभी आपके किसी कस्टमर से ऐसी कोई यूनिक डिमांड आई है जिसे आप देखकर या सोचकर ऐसा लगा हो कि अभी इसको कैसे करें हम?
2: हाँ, आई थी ऑफ कोर्स, ब्रेस्ट मिल्क आया था, सोच रही थी कैसे करूँ, फिर उसको थोड़ा सर्च किया कैसे करना है, फिर ब्रेस्ट मिल्क का पाउडर बनाया, तो फिर उसके बाद चीज बनाया, स्टार बनाया उससे, तो वो एक फ्रेम में प्रिजर्व किया।
0: अच्छा ऐश्वर्या, तो जैसे ज्योति के साथ एक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ, आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट शहर में गई रहने, यहाँ के मुकाबले आपको वहाँ क्या ऐसा कोई डिफरेंस दिखा हो या कोई एक्सपीरियंस हुआ हो?
1: यहाँ पे दो बड़े रोचक इंसिडेंट हैं जो मैं बताना चाहूँगी। जैसे खाने को लेकर, तो हमारे यहाँ पे रोटी बनाई जाती है, मुझे वैसे कभी खाना बनाना मैंने सीखा नहीं इधर, लेकिन मैं बैंगलोर चली गई जॉब के लिए और वहाँ का खाना बहुत ही अलग है हमारे इधर से, तो मुझे खाने में बड़ी दिक्कत आई। तो कभी मार्केट में निकल गए सब्जी लेने, सब्जी वाले को बोला कि हमें भिंडी चाहिए, तो उनको नहीं पता है भिंडी क्या होती है, तो उन्होंने मुझे कुछ और दे दिया। कह सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे रह के मुझे खाना बनाना आ गया है, तो अभी वो चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं। और दूसरा एक्सपीरियंस मैं ऐड करना चाहूँगी वहाँ की शादियों का, जो कि हमारे यहाँ की शादियों से बहुत अलग होती हैं। जैसे हमारे इधर शादियों में इतने गाने, बॉलीवुड, डीजे एंड बहुत लंबा सेलिब्रेशन चलता है, ऐसा साउथ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वहाँ बड़े ही सिंपल तरीके से लोग शादी रखते हैं और वहाँ पे ऐसे डीजे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उनका खाना भी बहुत सिंपल, केले के पत्ते के ऊपर आपको सब 10 तरह की चीज़ें सर्व करते हैं, और आप वहाँ पे जाके बड़ी सादगी से बैठ के वहाँ पे खाना खाइए और शादी वाली फ़ोटो खिंचवा के, और सुबह ही आपका 11-12 बजे तक सब ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आप घर आ जाओ। तो मुझे लगा कि ये बहुत प्रिंस था एक।
0: जी, नए अनुभव भी होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो ज्योति, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में अभी हमने सुना, क्या आपका बिजनेस रहा वो भी हमने जाना, काफी क्रिएटिव प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे या कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहे तो हम किस तरीके से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं?
2: मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है @thewebart_, तो आप वहां पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, देन आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्योति, आपका काम बहुत ही क्रिएटिव है और जानकर अच्छा लगा, एक नई जानकारी मिली है आज आपसे हमें। तो ऐश्वर्या, अब हम आपकी तरफ आते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना सुनना चाहेंगे और हमारे श्रोताओं को भी सुनाना चाहेंगे।
1: ये सॉन्ग मैं अपने नेशन के लिए टू बिल्ड इट उसको डिवोट करना चाहूंगी। मैं दो लाइनें गुनगुनाना भी चाहूंगी और चाहती हूँ ज्योति भी मुझे ज्वाइन करे इसके लिए।
2: अब तो हमें आगे बढ़ते हैं, रहना

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर नारी एक दर्पण। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दो युवतियां जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, और अब हम हमारी बातचीत को युवाओं की तरफ लेकर जाएंगे और आजकल के ट्रेंड के बारे में भी बात करेंगे। ऐश्वर्या, आप इस वक्त आईटी सेक्टर में काम कर रही हैं और अभी हाल ही में आईटी में एक डेवलपमेंट हुई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, जिसकी वजह से युवाओं के बीच इस बात की काफी चर्चा है कि AI कहीं ना कहीं हमारी जॉब को खत्म कर सकता है, मैन पावर को खत्म कर सकता है। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है?
1: मुझे लगता है AI को अभी काफी टाइम हो चुका है हमारे लाइफ में आए हुए, लेकिन रिसेंटली अभी ChatGPT आया है। यूथ में बहुत ही डर है कि हमारी जॉब्स ये लेके चला जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि AI और ह्यूमन दो अलग अलग चीजें हैं। कभी AI टोटली रिप्लेस तो नहीं कर सकता है, बिकॉज ह्यूमन के पास ऑब्वियसली इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी अलग होती है। तो जरूर कोई रिपीटेटिव टास्क होता है जो वो AI हैंडल कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे यूथ को कोई डिस्करेज होने की जरूरत है। तो जो भी AI बनाने की स्किल है वो हम लर्न कर सकते हैं, या जो भी टेक्नोलॉजी अभी ट्रेंड में आएगी वो हम यूज और लर्न कर सकते हैं, और इससे कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि इतनी जल्दी ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम नहीं होने वाला है। मुझे लगता है हाँ, जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अपस्किल कर सकते हैं एंड कोई दिक्कत ऐसी खास आने वाली नहीं है।
0: जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि समय के साथ साथ खुद को डेवलप करना भी जरूरी है। और एक चीज मैं अब करियर से रिलेटेड पूछना चाहूंगी कि आज के समय में जो बच्चे हैं या किशोर हैं, वो पढ़ाई को लेकर और अपने करियर को लेकर बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, या कह लीजिए स्ट्रेस ले लेते हैं उस चीज का। तो अभी आप दोनों इस स्टेज से निकली हैं, तो आपने इस चीज को कैसे टैकल किया और आज के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे टैकल कर सकते हैं इसे?
1: मुझे लगता है हम लोग स्कूल में बहुत ही ज्यादा टेंशन लेते थे, इस टेस्ट में हम फेल हो गए, JEE एग्जाम नहीं हुआ हमसे, और ये छोटी छोटी चीजें तब हमें बहुत बड़ी लगती थी। लेकिन अगर इस स्टेज पे आके कहें तो वो सब चीजें उस टाइम पे बड़ी होती हैं, लेकिन उससे कभी डीमोटिवेट होके वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। बच्चों को स्पेशली स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और जो भी हो जितना हो बच्चों को एल्डर से सीनियर से कनेक्ट रहना चाहिए, और सोशलाइज कीजिए बाहर और चीजों को एक्सप्लोर कीजिए।
0: जी बिल्कुल। ज्योति, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: हाँ, जैसे पहले मेरे को वेब डिजाइनिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था, और फिर मेरी फैमिली भी चाहती थी कि मैं IT फील्ड में जाऊँ। बचपन से वैसे मुझे इंटरेस्ट था आर्ट एंड क्राफ्ट में, क्योंकि थोड़ा हमारा माइंड चेंज होता रहता है जब हम छोटे होते हैं, तो फिर हम जैसे बढ़ते रहते तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमें इसमें चीज़ में इंटरेस्ट है। तो जैसे हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, हम उसको दिल से करेंगे, पूरी लाइफ करेंगे, तो कोई स्ट्रेस भी नहीं होता उसमें, सो एंजॉय से मजे से काम करते रहते हैं सब।
0: जी बिल्कुल, अपनी पसंद का काम हो तो कभी बोरियत भी फील नहीं होती। ज्योति, आप एक बिजनेस वूमेन हैं, साथ में मदर भी हैं, तो आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं?
2: जो मेरा बेटा है ना, वो मेरे मम्मी पापा के पास रहता है एक्चुअली, तो मैं सारा काम मैनेज कर लेती हूँ। तो मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, और वो भी मेरी हेल्प करवाता है, कई बार पैकिंग करता है वो, बल्कि 2.5 ईयर्स का है फिर भी पैकिंग में हेल्प करवाता है। तो मैं उसके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज करती हूँ, हमारा दोनों का एक पेज भी है कि इशू एंड मम्स क्राफ्ट हाउस, तो हम दोनों वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं अलग अलग, तो वो भी मैनेज हो जाता है, और जितना टाइम मिलता है मुझे मैं अपना काम कर लेती हूँ, घर भी संभालती हूँ, सब कुछ करती हूँ।
0: जी, इससे बच्चों का क्रिएटिविटी लेवल भी इंक्रीज होता है जब मदर उनके साथ कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज करें। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे अब भारत बदल रहा है, एक न्यू इंडिया बन रहा है, नया भारत बन रहा है, तो आपको क्या लगता है दोनों को कि इसमें महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है?
1: मुझे लगता है एज अ सोसाइटी हमें एक साथ विमेन को आगे भेजना चाहिए और पीछे से सपोर्ट पूरा देना चाहिए, ताकि वो भी इंडिपेंडेंट हो सकें और उनको ऐसा ना कभी लाइफ में फील हो कि दे आर डिपेंडेंट ऑन समवन और वो बहुत किसी के ऊपर भार हैं। तो मैं चाहती हूँ कि विमेन भी अपना इंडिपेंडेंट होके घर भी संभाल सकें और अपना अपने आप पैरों पे खड़े हो सकें और अपने एक्सपेंसेस खुद हैंडल कर सकें।
2: जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं अपना एक वर्क शुरू करना चाहती हूँ, जो बेरोजगार महिलाएं अपने घर बैठी हैं, उनको घर बैठे बैठे उनको कुछ काम देना है मुझे, तो ऐसे ही वो खुद भी कुछ, जैसे कोई अपना टिफिन बॉक्स वाला स्टार्ट कर सकता है काम, कोई अपना जो सिलाई होती है टेलर वगैरह वो कर सकते हैं, आजकल ऊन के स्वेटर बुनते हैं वो कर सकते हैं लोग, तो आगे जा मतलब ऐसे ही थोड़ा आपको खुद भी कदम बढ़ाने चाहिए। और ना मैं कहना चाहूंगी कि हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके बिना अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते।
0: जी बिल्कुल, सपोर्ट चाहे फैमिली का हो, हस्बैंड का हो, दोस्तों का हो, हर एक पड़ाव पर बहुत जरूरी होता है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये अम्बाला कैंट का पहला रेडियो स्टेशन है, तो आप दोनों को यहाँ पर, आप पहली बार आई हैं, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा?
2: यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन अगर मेरे पापा होते, मतलब माय ग्रैंडफादर, वो ना रेडियो सुनते थे डेली, तो होते तो वो मेरा भी ये प्रोग्राम सुनते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, उनको इतनी खुशी होती है कि हाँ मैं ये सुनता हूँ, तो मेरी इसमें पोती मेरी यहाँ पर आई है, उसकी आवाज़ आई है, वो बहुत इंटरेस्ट लेते, इतने खुश होते।
1: और मेरे पापा रोज ऑफिस जाते हुए अम्बाला रेडियो ज़रूर सुनते हैं, तो वो मुझे बताते थे कि ऐसे अम्बाला का रेडियो अभी मैं सुनता हूँ और बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी उनको इस रेडियो के थ्रू आवाज़ पहुँचा सकती हूँ, और मेरे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को बताकर।
0: जी, बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है हमारे जीवन में, और मैं यही कहूँगी कि चाहे वो आपके साथ नहीं है लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। बातें हमारे पास करने को बहुत है लेकिन समय की हमारे पास बहुत कमी है इस वक्त, तो इस कार्यक्रम को अंत की ओर लेकर जाऊँगी और चाहूँगी कि आप दोनों जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनको एक संदेश दें, एक मैसेज दें, जो भी आप देना चाहती हैं।
2: जैसे मैं अभी एक वर्किंग वूमेन भी हूँ और होम मेकर भी हूँ, तो काफ़ी परेशानियाँ होती हैं लाइफ में भी, तो हमें उसमें से निकल करना, हमें आगे कदम बढ़ाना है, और जब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब हमें खुद अपने लिए स्टैंड होना है तभी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए कोई बैठा नहीं है कि हम ये आकर हमारे लिए करेगा, तो हमें खुद अपने लिए स्टैंड लेना है।
1: और मैं यूथ को ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा अपने एल्डर से एंड अपने जो भी डिवोशनल बिलीव्स हैं उनसे कनेक्टेड रहें, और आपके पैर हमेशा ग्राउंड पे होने चाहिए और आंखें हमेशा ऊपर आसमान की तरफ देखते रहिए, और हमेशा सपने लेते रहिए और उनके लिए काम करते रहिए।
0: जी, सपने देखना भी बहुत ज़रूरी है और उनके लिए काम करना भी बहुत ज़रूरी है। ज्योति और ऐश्वर्या, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों यहाँ आए, हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए, अपने बारे में आपने हमें बताया, हमारे श्रोताओं को बताया। मैं और रेडियो वितस्ता आप दोनों के कुशल भविष्य की कामना करता है। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे कुछ और नई कहानियाँ लेकर। अभी आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे मेहमानों के पसंदीदा गीत के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहे और सुनते रहे रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: जय हिंद, जय भारत।
2: जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी एक दर्पण एपिसोड 3। आज के मेहमान थे ऐश्वर्या धीमान और ज्योति बगन। प्रस्तुतकर्ता आरजे सेजल। रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार। निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए लाया हूं सूत्र जीवन के, और हम आशा करते हैं कि आपके जीवन को हम सुगम बना सकें। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त विशाल शर्मा। आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, यानी खुद पर विश्वास करना। दोस्तों, खुद पर विश्वास करके ही एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी की फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया था। खुद पर अटूट विश्वास के चलते ही साउथ के छोटे से गांव का एक लड़का मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम हो जाता है। खुद पर विश्वास करके ही एक टिकट कलेक्टर भारतीय क्रिकेट का महान खिलाड़ी और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हो जाता है। खुद पर विश्वास करके ही एक कॉलेज का ड्रॉप आउट विश्व का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स हो जाता है। ऐसे बहुत से लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी परिस्थितियों की परवाह ना करते हुए खुद पर अपना विश्वास कायम रखा और कड़ी मेहनत के साथ सफलता के मुकाम हासिल किए। उन सभी सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत रही उनका खुद पर अटूट विश्वास। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर भी इतनी ताकत छुपी हुई है, आप सब में इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है, बस आपको उसे पहचानना है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने विश्वास को टूटने मत देना। परिस्थितियां कैसी भी हों, कैसी भी मुश्किलें हों, कैसी भी परेशानियां आएं, कभी टूटना मत, ना ही खुद पर अपने विश्वास को टूटने देना। दुनिया आप पर विश्वास करे या ना करे, चाहे लोगों को आपके अंदर संभावनाएं दिखती हों या ना दिखती हों, लेकिन आप खुद पर अपनी काबिलियत पर अटूट भरोसा रखना। आप अपने अंदर उस विश्वास को कायम रखना कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और मैं अपने गोल को अचीव करके रहूंगा, और आप देखेंगे एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही, मिलता रहूंगा आपसे FM 90.0 पर, ताकि आपके दिल को छू सकूं। हमेशा खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।

सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुनिए मोहम्मद अजीज के दिल छूने वाले गाने हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत सफर का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो दस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

पेश है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान हैं डॉक्टर जगदीप सिंह। इनसे बात करेंगे भारत सोपोरी।

0: आप सभी का स्वागत कार्यक्रम इनसे मिलिए में। आप जान ही गए होंगे कि कार्यक्रम में आज आमंत्रित मेहमान को हम आप सभी श्रोताओं से रूबरू कराएंगे। आज के मेहमान एक शिक्षा विद्वान के साथ साथ एक कॉलमनिस्ट है जो विभिन्न समाचार पत्रों में अपनी एक राय रखते हैं, समाजसेवी हैं और सशक्त लेखक भी हैं, जिनकी 24 से ज्यादा पुस्तकें अलग अलग विषयों पर प्रकाशित हुई हैं, 100 से ज्यादा आर्टिकल्स प्रकाशित हुए हैं और उच्चतम शिक्षा के रूप में ये PhD है पॉलिटिकल साइंस में। आइए स्वागत करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान डॉक्टर जगदीप सिंह जी का। आपका रेडियो वितस्ता स्टूडियो FM 90.0 MHz में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
1: थैंक यू सर, आपने मुझे FM रेडियो में आमंत्रित किया उसके लिए आपका धन्यवाद, और साथ साथ अंबाला के लोगों से मुझे रूबरू होने का मौका दिया उसके लिए भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी बात मेरे अंबाला के लोगों तक पहुँचेगी और इसके माध्यम से हम एक समाज सेवा का कार्य जो हमारे द्वारा किया जाता है तो वो बात भी पूरे समाज के लोगों तक पहुँचेगी।
0: आप अंबाला कैंट के पहले FM स्टेशन स्टूडियो में पहली बार आए हैं और पहली नजर में आपको कैसा अनुभव हो रहा है?
1: हाँ जी सर, मेरा ये प्रथम अनुभव है अंबाला के प्रथम रेडियो स्टेशन में। ये एक ऐसा अवसर है जिसका लाभ उठाकर हम अंबाला के लोगों को जागृत भी करते हैं और ये एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम पूरे अंबाला की बात को एक प्रसारित करते हैं और एक ऐसा मंच है जितने भी बुद्धिजीवी लोग अंबाला में हैं, जितने विद्वान लोग अंबाला में हैं, ताकि अपनी बात समय समय पर यहाँ रखें और समाज में एक चेतना बढ़ाने का प्रयास करें।
0: यही डॉक्टर साहब हमारी भी कोशिश है और जो ये FM स्टेशन है ये पूरे अंबाला के लोगों के लिए ही है। हम अपने प्रसारण में भी कहते हैं कि अगर आप किसी अन्य व्यक्ति की आवाज या उनकी बात सुनना चाहते हैं आप हमें जरूर बताएं, तो उनको भी हम यहाँ आमंत्रित करके उनकी बात रिकॉर्ड करके आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बारे में जानकारी दें, कहां आपका जन्म हुआ, कहां आपकी प्राथमिक शिक्षा हुई, ताकि चर्चा शुरू करने से पहले आप हमारे श्रोताओं से परिचित हों।
1: हाँ जी, मैं अंबाला के नियर गांव लंढा जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट में ही है वहां पे जन्म हुआ और मेरी स्कूलिंग मेरे गांव में ही 10th का स्कूल है वहां से हुई है। उसके बाद मेरी प्लस टू शाहबाद DAV स्कूल से हुई है, BA मैंने SD कॉलेज, MA GMN कॉलेज और PhD कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से किया है और लगभग मुझे टीचिंग करते हुए 2005 में मैं टीचिंग में आया और डॉक्टर VK मल्होत्रा जो मेरे टीचर रहे हैं उन्होंने मुझे 2005 में मौका दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और 2005 से लेकर लगातार 17 वर्ष मुझे हो चुके हैं, मैं विभिन्न कॉलेजों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं और मुझे एक अच्छा महसूस होता है कि एक टीचिंग एक ऐसा मंच है जो हजारों लाखों बच्चों से और लोगों से रूबरू होता है और एक मार्गदर्शक के रूप में मैं बच्चों के सामने हूं।
0: आपकी बात को याद करते हुए मैं अपने टीचर्स को भी याद करता हूं और मैं मानता हूं कि जो टीचर है वो देश का निर्माण करता है, क्योंकि जैसे हमारे देश के बच्चे होंगे वैसा ही हमारा देश आगे की ओर चलता है। और साथ में इसके साथ जुड़ता हुआ एक प्रश्न और करूंगा, हमारे आपने डॉक्टर VK मल्होत्रा जी का नाम लिया, वो भी PhD है पॉलिटिकल साइंस में और आप भी PhD है पॉलिटिकल साइंस में, तो जब आप दोनों उस लेवल तक पहुंच गए तो मिलना जुलना है वो कैसा रहता है?
1: हाँ जी, मैं अपने एक मार्गदर्शक के रूप में सर को याद रखूंगा, मेरे टीचर तो रहे हैं, मैं उनकी एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करूंगा। जब मैं उनका स्टूडेंट था MA में तो मैं एक खिड़की की तरफ बैठता था और सर मुझे पढ़ाते थे और खिड़की थोड़ी सी खुलती थी और मैं खिड़की से नीचे देखता रहता था और सर मुझे पढ़ाते थे और मुझे सर बीच बीच में पूछ लेते थे, जगदीप मुझे ये बताइए कि कॉलेज की सारी लड़कियां आ गई हैं या नहीं आ गई हैं। तो मुझे सर की घटना हमेशा याद रहती है, लेकिन मेरा पूरा ध्यान सर की जो लेक्चर दिया है उसकी तरफ होता था, और आज मैं यहां तक पहुंचा हूं वो एक सर का आशीर्वाद ही है कि मैं यहां तक पहुंचा हूं। और जब भी मैं कुछ लिखता हूं, आज मेरी 24 किताबें हैं मार्केट में, जब भी मैं कुछ लिखना स्टार्ट करता हूं, मुझे न्यूज़पेपर के लिए लिखना है, मैं सर से पहले डिस्कस करता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं, उसके बाद ही हम डिस्कस करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
0: आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम गुरुजन का नाम पहले लेते हैं और गुरुजन के आशीर्वाद से हम आगे चलते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे आप यहां तक आए हैं तो आपकी जिंदगी आगे भी ऐसे ही सक्सेसफुल रहेगी। आपकी कई विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, एकेडमिक बुक्स, सोशल कॉज के लिए जो बुक्स आपने लिखी हैं, कृपया आप बताएं किन किन विषय पे आपने काम किया है, और जैसे आपने कहा 24 पुस्तकें आपकी अभी तक प्रकाशित हुई हैं, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा विवरण हमें दें, ताकि उसके बाद हम फिर उन पर बात करें।
1: हाँ जी, मैं अपनी बुक्स को एक्सप्लेन करने से पहले दो लाइनें और आपसे कहना चाहूँगा। मैंने जितना भी काम किया है वो काम मेरे पेरेंट्स का, उन्होंने आशीर्वाद दिया, और मेरी वाइफ पूजा और बेटा है अरविंद, हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, और उनके सहयोग से ही मैं ये काम कर पाता हूँ। जब भी मैं कोई रिसर्च के लिए कहीं हिमाचल में, कहीं जम्मू एंड कश्मीर में, कहीं साउथ में, या किसी भी स्टेट में जाता हूँ, तो उनका मुझे पूरा सपोर्ट रहता है। तो उन्होंने मुझे हर काम के लिए मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। तो अब आपने मेरे से बात की है कि हमारा जो काम रहा है, मैंने 2010 में पहली पुस्तक मिथ एंड ह्यूमन राइट्स स्टार्ट की थी, और उसको मैंने लिखा, और वहाँ से मैंने लिखने का सफ़र शुरू किया था। आज मुझे 13 साल हो चुके हैं, इन 13 साल में 24 पुस्तकें जो आई हैं, उनमें सबसे पहले थी मिथ एंड रियलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स। मैं अपने आप को इस प्रकार से महसूस करता हूँ कि मैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं मैं सबके सामने ला सकूँ, और मैंने वो ऐसे ऐसे विषय लिए हैं जिसके माध्यम से जो समाज की वाकई समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को समाज या सरकार के सामने भी हमने लाने का प्रयास किया। जितनी भी हमने किताबें लिखी हैं उसकी रिपोर्ट हम भारत सरकार को, विभिन्न मंत्रालयों को, सेमिनार्स के माध्यम से और विभिन्न मेल्स के माध्यम से हम लगातार उनको भेजते रहते हैं, और उनसे इस बात में अपील भी करते हैं कि आप इस विषय के लिए कुछ कार्य करें। सरकारें भी कार्य करती हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनको सरकारें बहुत कम टच करती हैं,
0: उनका ध्यान उस तरफ नहीं होता है, तो आप
1: उनका ध्यान उसके माध्यम से हम सरकार का ध्यान उस तरफ लाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ जैसे सोशल इशू के साथ साथ हम एकेडमिक रूप से भी हम जो काम करते हैं, आज लगभग हरियाणा के सभी यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में मेरे द्वारा जो सिलेबस की किताबें लिखी गई हैं वो बच्चे पढ़ते हैं। अभी लेटेस्ट हमारी एक बुक आई है जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी भारत में लागू हुई है, हरियाणा में भी उसको लागू किया है, उसके अकॉर्डिंग एक हमारी फर्स्ट बुक आई है जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत हैं, आज हरियाणा के सभी कॉलेजों में पढ़ी जा रही है, और मुझे खुशी है मेरी पहली बुक थी ये इस NEP के अकॉर्डिंग जो हरियाणा के सभी कॉलेजों में पढ़ी जा रही है। और वो बच्चे जो हमारी बुक पढ़ रहे हैं, मुझे सौभाग्यशाली मैं समझता हूँ कि मेरी बुक बच्चे पढ़ रहे हैं।
0: उसके बाद और जैसे आपने भी मानव अधिकार की बात की, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं, तो ऐसी क्या चीज थी जो आपको मानव अधिकार की तरफ ले गई और आपने उस पर लिखना शुरू कर दिया?
1: जैसे मैं स्टार्टिंग में जो मैंने राइट्स को स्टार्ट किया, मैं ब्लाइंड हॉस्टल है अम्बाला कैंट में और ब्लाइंड कॉलेज भी है यहाँ पे, कई बार ये लोग मेरे पास आते थे जब मैं GMN कॉलेज में पढ़ाता था, ये राइटर्स चाहिए होते हैं इनको, तो मैं राइटर्स प्रोवाइड कराता था इनको कि ये ताकि अपना एग्जाम दे पाएं। उसके बाद जब इनके पास गया, मैंने इनकी समस्याएं जानी, तो समस्याएं जानने के बाद मुझे लगा कि एक ऐसा टॉपिक है जो सरकार तक जो बात पहुँचानी चाहिए। मैं वहाँ गया, मैंने उनको विस्तृत रूप से जाना, फिर मैंने सबसे पहले ब्लाइंड पे एक बुक लिखी थी, ह्यूमन राइट्स एंड ब्लाइंड स्टूडेंट्स, और मैंने चंडीगढ़ के विजिट किया, दिल्ली मैंने विजिट किया, ब्लाइंड्स की क्या क्या प्रॉब्लम है मैंने विस्तार पूर्वक जाना, और फिर मैंने उसको बुक में रूप में मैंने शामिल किया। और मैं मेरा उद्देश्य ये था कि समाज के सामने कि लोग जीवन कैसे जी रहे हैं, किस प्रकार से संघर्ष करते हैं, किस प्रकार से आगे आने के लिए कितना इनको मेहनत करना पड़ता है, जबकि भगवान ने हमें स्वस्थ बनाया है, सब कुछ शारीरिक रूप से स्वस्थ हमें किया है, लेकिन इनके साथ जो भगवान ने थोड़ी नाइंसाफी की है,
0: दृष्टि
1: की नाइंसाफी की है, उसके बाद भी इतना संघर्ष करते हैं और आज बड़े बड़े मंचों पर ये हैं, तो मुझे ये लगा कि ये बात समाज तक लेके आनी चाहिए। तो पहले मैंने वो बुक लिखी थी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। उसके बाद मैं लगातार ह्यूमन राइट्स के जितने भी विषय मुझे लगे कि इन पे काम किया जाना चाहिए, मैंने उन सभी विषयों पर काम करना आरंभ किया।
0: आपने जो पहली किताब की आपने बात की, मिथ एंड रियलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये जो आपने इसका नामकरण किया मिथ एंड रियलिटी, क्या आपने पाया कि मिथ अलग है और रियलिटी, इन दोनों में कुछ अंतर है?
1: यस, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। देखिए, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं
0: जी,
1: पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, हम थ्योरी पढ़ाते हैं, जबकि रियलिटी बिल्कुल राजनीति की अलग है। ऐसे ही जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों में बिल्कुल अंतर है। हम समाज में जो देखते हैं, जब हम उसकी तह तक, हकीकत तक जाते हैं, उसकी रियलिटी कुछ और ही होती है। बहुत डिफरेंस है दोनों में।
0: यही आपने उस किताब में, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपने विवरण दिया है कि अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो हमें उसके बेस तक जाना जरूरी है। जरूरी नहीं है जो हमें दिखता है वही सही हो।
1: जी,
0: इस विषय में भी हम और बात करेंगे। आपने एक पुस्तक लिखी है, भारतीय संविधान, थोड़े से शब्दों में बताएं कि इसका जो सब्जेक्ट आपने लिया तो क्या सोच के लिया?
1: देखिए, भारतीय संविधान एक एकेडमिक पुस्तक है और विद्यार्थियों के द्वारा इसको पढ़ा जाता है। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है
0: जी।
1: और हम सब भारतीयों को उसका सम्मान करना चाहिए। भारतीय राजनेताओं को भी संविधान का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, जिस पवित्र संविधान को हमारी संविधान सभा ने बनाया था और जो आज लगभग इतने वर्ष हो चुके हैं सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, दुनिया में सबसे बड़ी लोकतंत्र भारत है
0: जी।
1: और इतने अधिक वर्षों से हमारा संविधान केवल एक ऐसा संविधान है जो आज टिका हुआ है, नहीं तो अधिकतर देशों ने जो 1947 के बाद आजाद हुए हैं उनके संविधान नहीं रहे, वहां पे डेमोक्रेसी खत्म हुई और वहां पे तानाशाही सरकारें आई। भारत ऐसा राष्ट्र है जिसने अपने संविधान को कायम रखा हुआ है, लेकिन हमें और अधिक अभी इसको सशक्त बनाने की आवश्यकता है और समय अनुसार इसमें परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है, ताकि जो आज हमारे सामने समस्याएं आती हैं, जैसे कोई कोरोना की समस्या आ जाती है या दूसरी कोई और समाज को बदलने की समस्या आ जाती है, समाज की सोच को बदलने की समस्या आ जाती है, तो हमें इस प्रकार के अमेंडमेंट करने चाहिए संविधान में, ताकि हम अपने राष्ट्र को 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले आएं। और सभी, यदि सभी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो हम 2047 तक भारत को संविधान के माध्यम से हम विकसित राष्ट्र बना सकते हैं।
0: एक सरल सा प्रश्न करना चाहूंगा मैं, एक आम जन जैसे मैं हूं, मुझे संविधान के बारे में केवल उतना ही पता है जो मेरे राइट्स हैं। मेरी ड्यूटीज क्या है उसके बारे में सही निर्णय कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, ये तो मेरे जीवन के साथ जुड़ा है। पर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई सरल तरीका है कि हमारे देश का हर कोई व्यक्ति संविधान को पढ़ पाए या उसको जान पाए?
1: हाँ जी, भारतीय जो संस्कृति है वो इतनी महान है, संविधान के समान ही हमारे पास इतने सारे ग्रंथ थे, संविधान के समान ही हमारे पास इतनी धार्मिक पुस्तकें हैं। देखिए, हम जब संविधान को पढ़ते हैं, जब एक साधारण व्यक्ति की नज़र से हम उसको देखते हैं, तो हम सबको ये मानना चाहिए कि हम संविधान में अपनी जो ड्यूटी है उसको वास्तविक रूप से निभाएं। यदि हम अपनी ड्यूटी को निभाते हैं तो हम भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयत्न करते हैं। संविधान एक ऐसा माध्यम है जो इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया के राष्ट्रों को एक सूत्र में परो देता है, एकता कायम करता है। अखंडता और एकता आज संविधान की वजह से है। आज इतने अधिक धर्म, भाषाएं, विभिन्नताओं का देश भारत जो है, यदि हम एकजुट हैं तो उसका श्रेय पूरा संविधान को जाता है। यदि संविधान जैसी हमारे दस्तावेज ना हो तो आज कंट्री को एकता और अखंडता के रूप में पिरोया नहीं जा सकता।
0: भारतीय संविधान इस समय बच्चे कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ते हैं, जो आपकी लिखी किताब है, तो आने वाले दिनों में क्या वो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या उनका दृष्टिकोण हमारे संविधान के प्रति पूरा हो पाएगा जो ये पढ़ाई करते हैं?
1: जब तक हम 2047 में, अभी मैंने थोड़ा जिक्र किया था कि पहुंचेंगे, भारत एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा होगा या हो चुका होगा, और हमारे जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन का विश्वास बढ़ेगा, आने वाले समय में ऐसा समय आएगा जब हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं लोग उन पर विश्वास अधिक करेंगे, और अधिक विश्वास करने का मतलब ये कि उनके बारे में जैसे ज़्यादा वोट के लिए लोग जाएंगे। आज जो इंडिया में वोट परसेंटेज है 65

0: संस्थाओं के प्रति, संविधान के प्रति बच्चों का और नागरिकों का एक रुझान पैदा किया जाए।
1: आपने इस विषय को बहुत ही अच्छे ढंग से रखा है, ताकि जो हमारे श्रोता सुनने वाले हैं उनको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमारा देश आगे तरक्की पर चलता रहे तो हमें अपने भारतीय संविधान को समझना होगा, और जिसमें हमारे हक यानी जो हमारी राइट्स है वो भी चलें, और साथ में हम अपनी ड्यूटी जो हमारी अपनी जिम्मेदारी है वो भी हम साथ साथ निभाएं। इंग्लिश में कहते हैं कि द ड्यूटीज एंड राइट्स शुड गो टुगेदर, तो इसकी बात आपने डिटेल में की। आपने एक पुस्तक लिखी है न्यू होराइजंस इन बिजनेस वर्ल्ड, जो इन दोनों विषयों से अलग है। आपने संविधान की बात की, आपने मानव अधिकार की बात की, और इस पुस्तक के बारे में आप कृपया बताएं।
0: देखिए, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए राजनीति और व्यापार दोनों जरूरी है। यदि हम मॉडर्न तरीके नहीं अपनाएंगे तब तक हम अपने राष्ट्र को विकसित नहीं कर पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, हमारी हरियाणा सरकारों के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा स्टार्टअप प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वर्ल्ड को ट्रेड फ्री किया जा रहा है, अभी G20 समिट हुई है, इंडिया ने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्रयास किया है, हम यूरोप और दूसरे कंट्रियों के साथ एक ऐसा मंच, आर्थिक मंच बनाना चाहते हैं ताकि हमारे फ्यूचर में जो हमारे बच्चों का आज पलायन हो रहा है, अधिकतर बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, ताकि वो पलायन हमारा रुके और हमारे बच्चे इंडिया में रहें, अपने स्किल को इंडिया के लिए यूज़ करें। आप अपने स्किल को फॉरेन के लिए यूज़ ना करें, हमारा स्किल हमारे राष्ट्र के लिए, हम उसके लिए यूज़ करें, अपने राष्ट्र के लिए, जिस राष्ट्र ने हमें पैदा किया है, जिस राष्ट्र ने हमें इतनी आर्थिक, हमें आज तक की ज़रूरतें पूरी की हैं, तो हमारा भी राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है। तो अपनी बुक्स के माध्यम से हमने इस प्रकार की चीज़ें समाज को बताने का प्रयत्न किया।
1: तो आप देखते हैं कि आने वाला समय ऐसा है कि जब हमारे युवा अपने ही देश में काम करेंगे, उनको वो सुविधाएं मिल जाएंगी जो शायद जिसके लिए वो दूसरे देशों में जाते हैं।
0: जब हम किसी चीज को सोचते हैं तो वो पूरी होती है। हमारी सरकार ने सोचा है, हमने सोचा है, और मेरे कारण, मेरी बात सुनकर हमारा समाज भी सोचेगा तो ये अवश्य ही पूरा होगा कि हमारे बच्चे हमारे राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे, विदेशों के लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि आप विदेश ना जाएं, मेरे कहने का उद्देश्य है कि अपने राष्ट्र को सर्वोच्च माने, बाकी उसके बाद प्रयास करें आप।
1: हमें बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर जगदीप सिंह जी हमारे पास इस कार्यक्रम में है, और बहुत सी सार्थक बातें हो रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो समाज है वो इन की बातों से जागरूक होगा। और आगे हम बढ़ते हैं, आपने एक किताब लिखी है ह्यूमन राइट्स एंड विडोज, तो ये ख्याल कैसे आया और इसका जो बेस है वो कहाँ से बन पाया?
0: हाँ जी, जैसे सभी लोग जाते हैं श्री कृष्ण नगरी, वृंदावन और मथुरा जाते हैं घूमने के लिए, तो ऐसे ही जब मैं वहाँ गया एक बार तो उनसे मालूम हुआ मुझे कि यहाँ पे विडोज बड़ी संख्या में हैं। अच्छा। तो मैंने ये जानना चाहा कि यहाँ पे इतनी संख्या में विडो क्यों हैं। मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, तो जब मैं वापिस आया मैंने उसको नेट पर सर्च करना स्टार्ट किया कि ऐसा क्यों होता है। तो जब मैंने नेट से काफी सारा सर्च किया,
1: यहाँ मैं आपको रोकता हूँ, जो वहां पर ज्यादा विडोज आप कह रहे हैं, क्या वो वहीं के हैं या बाकी देश के हिस्सों से वहां आते हैं?
0: यस, जब मैंने नेट पे सर्च किया, नेट पे सर्च करने के बाद मैं दोबारा वहां पे विजिट करने के लिए गया। मैं लगभग 3 से 4 बार वहां गया और मैं 2 महीने तक लगभग वृंदावन में रहा। और अधिकतर लोग जाते हैं वो मॉडर्न जो न्यू वृंदावन है उसको देखकर आते हैं, जो ओल्ड वृंदावन है उस पे बहुत लोग नहीं जाते। जब मैंने नेट से सर्च किया, मैं आपको बताऊं, मुझे ये मालूम हुआ कि वृंदावन में 20,000 विडोज हैं, 20,000। और जब मैं वहां पे म्यूनिसिपलिटी में गया, मैंने वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट किया और गया, तो मुझे 3200 विडोज का रिकॉर्ड मिला, बाकी विडोज का रिकॉर्ड ही नहीं है। 20,000 विडो वहां पे रहती हैं। जब मैं ओल्ड वृंदावन गया, मैंने स्टडी किया, मैंने जाकर देखा कि एक एक रूम में, हॉल टाइप रूम में 80-80 विडोज रहती हैं, और उनके लिए सिर्फ एक टॉयलेट। और मैंने जब अपनी स्टडी आगे बढ़ाई तो मैंने देखा कि साल में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े उनको मिलते हैं और एक बिस्तर मिलता है साल में सिर्फ, उस पर वो गुजारा करती हैं। 80 लेडीज

0: के लिए एक टॉयलेट और बेसिक फैसिलिटी तो है ही नहीं, रिकॉर्ड में कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके लिए। हर प्रकार से उसको विस्तार पूर्वक स्टडी किया और ये बात मैंने भारत सरकार विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफिस में उनके सेक्रेटरी साहब उन तक भी मैं लेकर गया। तो जो वास्तविकता है, जो हम बात करते हैं मानवाधिकार, हकीकत और जो मिथ है वो क्या है? हकीकत कुछ और है, मिथ कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। जब हम मौके पर जाकर स्टडी करते हैं हम देखते हैं, तो जो समस्याएं थी मैंने अपनी किताब के माध्यम से वो समाज को या सरकारों को बताने का प्रयत्न किया है।
1: यानी कि आपने उस समस्या को देखा, उसके बारे में जानकारी हासिल की और उसके बाद आपने उसका समाधान देने की कोशिश की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने, जिसके ऊपर आपने लिखा, फिर आपने उसके ऊपर रिसर्च किया, आप खुद गए वहां पर, खुद आपने देखा। क्योंकि जब हम आंखों से कोई चीज देखते हैं तो देन उसके बाद अगर हम सही सोच रखते हैं तो उसके बारे में हम बात जरूर करते हैं, जो आपने किताब के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से किया और सरकार तक भी बात पहुंचाई, वही प्रयत्न हम भी करते हैं। मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक अगर ये बात पहुंचती है तो कम से कम उन माताओं के लिए अब वो कुछ अवश्य जरूर अच्छा करें ताकि उनके जो दिन है वो अच्छे से गुजरें।
0: इसमें एक और बात आपको कहना चाहूंगा, स्टार्टिंग में आपने मुझे पूछा था कि कहां से हैं वहां पे इतने सारे वीडियोस, वो हमारा थोड़ा रह गया था। जब मैंने स्टडी किया तो स्टडी में मैंने पाया 85% वीडियोस वेस्ट बंगाल से हैं, बाकी पूरे इंडिया से सिर्फ 15% वहां पे वीडियोस हैं।
1: अच्छा।
0: क्योंकि वेस्ट बंगाल में कई सारी जगह ऐसी हैं जिसमें आज भी वीडियोस को अभिशाप माना जाता है। जैसे उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनको घर से निकाल दिया जाता है, रीजन कुछ भी हो, प्रॉपर्टी है, कुछ भी हो। बाकी हरियाणा पंजाब से दो चार ऐसा केसेस हैं, लेकिन ज्यादातर वेस्ट बंगाल से हैं। पूरे इंडिया से बस 15% के आसपास वहाँ पे लेडीज हैं।
1: मतलब सिर्फ जीवन अपना व्यापन करने के लिए फिर वो वृंदावन चली जाती हैं और वहां पर अपना रहन सहन करती हैं। आपने PhD किया है पॉलिटिकल साइंस में, यानी कि राजनीति ज्ञान में। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं और आप राजनीति ज्ञान के माहिर हैं, आपने अपनी एक थीसिस करी होती है तब जाके आप PhD हो जाते हैं, तो वास्तविक राजनीति और जो किताबों में राजनीति है, क्या उनमें कुछ, आप सरल शब्दों में कुछ अंतर बता सकते हैं?
0: हाँ जी, जब हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो हमने एक बात डिस्कस की थी, मिथ एंड रियलिटी।
1: जी,
0: हम सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं और राजनीति थ्योरी से बिल्कुल अलग है, दोनों में कोई समानता बिल्कुल नहीं है। जो हम पढ़ाते हैं, कई बार हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि आपको राइट्स हैं, राइट टू वर्क है, राइट टू, आज सरकार ने राइट टू सोशल वर्क है, राइट टू लाइसेंस है, तो 7 दिन का टाइम आपको सरकार ने दिया हुआ है। लेकिन जब आप 7 दिन के अंदर अंदर किसी चीज को लेने के लिए आप ऑफिस में जाते हो, बोल देते हैं छुट्टी में साहब कल आ जाना, ऐसा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में कई बार होता है। लेकिन फिर भी सरकारें इस पे लगातार प्रयास कर रही हैं। लेकिन राजनीति विषय थ्योरी अलग है और प्रैक्टिकल से उसका कोई संबंध नहीं है बिल्कुल।
1: आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी लिखा है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें।
0: इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आज वर्ल्ड में पीस है, शांति है, ठीक है, रशिया और यूक्रेन वार चल रहा है, लेकिन फिर भी 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद से लेकर आज तक वर्ल्ड में पीस है, तो उसका, उसकी जिम्मेवार सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर UN, जिसने आज तक वर्ल्ड में शांति की स्थापना की हुई है। और दूसरी संस्थाएं हैं, G20 है, G77 है, हमारे आसपास एशिया के संगठन है, दक्सेस है, यूनेस्को एक एजेंसी है, UN की एजेंसी है, SAARC है, और भी कई सारे संगठन हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, जो आर्थिक सुविधाएं देता है। तो ये, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं तभी विश्व में शांति है और तभी विश्व में विकास है। यदि ये संस्थाएं नहीं होंगी तो विश्व में शांति भी शायद संभावित हो और विकास के रास्ते भी शायद नहीं मिल पाएंगे।
1: आपकी लेटेस्ट जो पुस्तक है वो है ट्रांसजेंडर एंड ह्यूमन राइट्स, फिर हम मानवाधिकार पे आए। तो आप जो भी कोई विषय देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस पर रिसर्च करना चाहिए और इस पर लिखना चाहिए, तो आपके लिए जो ये सब्जेक्ट ट्रांसजेंडर्स एंड ह्यूमन राइट्स था, ये कितना आसान या मुश्किल था?
0: देखिए, विषय जब हम कोई भी चुनते हैं वो आसान नहीं होता
1: जी।
0: और जब हम उस पर काम करना आरंभ कर देते हैं तो विषय आसान होते चले जाते हैं
1: जी।
0: ट्रांसजेंडर को हम सब देखते हैं, हम भी अपने जीवन यापन के दौरान उनको लगातार देखते रहे हैं, तो मेरे मन में था जैसा मैं हर उस टॉपिक को चूज करने की कोशिश करता हूँ जो समाज से अछूता है, तो मैंने ट्रांसजेंडर का टॉपिक लिया और मैंने इसको इसलिए स्टडी किया कि एक ऐसा समाज जिसको हम अच्छा नहीं मानते, ताकि उस समाज की हकीकत भी सामने लाई जा सके और वो समाज किस प्रकार से जीता है, क्या उसकी समस्याएं हैं, क्या सरकारें उनको उनके लिए करती हैं, समाज उनके प्रति क्या सोच रखता है। और इस उद्देश्य को लेकर मैंने ये टॉपिक लिया और जब मैंने इस टॉपिक पर काम करना स्टार्ट किया तो ऐसे अनुभव मेरे सामने आए जो मैं आपके सामने जरूर बयान करूंगा। वैसे तो किताब में सारी डिटेल से लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा। जब हम चंडीगढ़ हेडक्वार्टर में जाते हैं और या दिल्ली के हेडक्वार्टर में इनसे मिलने के लिए कहीं भी बना हुआ है वहां पे जाते हैं, तो हम कई चीजें बड़ी अजीब देखते हैं। मैंने देखा जब मैं गया चंडीगढ़ के इनके हेडक्वार्टर में, वहां पे छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे बच्चे, उन्होंने एक एक बच्चे को रूम दिया हुआ है और पूरी फैसिलिटीज और टॉयज वगैरह दिया हुआ है। तो मैंने पूछा उनसे कि आप बच्चे ले आते हैं तो आप इनका अपने रखा हुआ है यहाँ पे तो आप क्या करते हैं इनका, तो उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बताई। वो कहते हैं कि जो बच्चे आपके हम ले आए, आपकी जिम्मेवारी थी स्कूल भेजने की, आप नहीं भेजते, हम इन सबको स्कूल भेजते हैं, जितने भी बच्चे वो लेके आते हैं उन सबको वो स्कूल भेजते हैं और उनकी स्टडी प्लस टू तक कंप्लीट कराते हैं, अगर आगे पढ़ना चाहे तो आगे भी पढ़ने का मौका वो उसको देते हैं। मुझे ये देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि हमारे समाज किस प्रकार से इनको समझता है और ये कितना हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। और एक और अनुभव मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी बातचीत में उनसे बात की, मैंने कहा कि आप आजकल जैसे ये भ्रम है, आप जाते हो बच्चे ले आते हो और जबरदस्ती छीन के बच्चे ले आते हो, तो ऐसा क्यों करते हैं आप? तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि क्या कोई किसी के बच्चे को ले जा सकता है? बिल्कुल नहीं ले जा सकता। जिसके घर में ट्रांसजेंडर पैदा होता है वो हमें शाम को फ़ोन करता है कि हमारे घर में ट्रांसजेंडर पैदा हुआ है, आप आएं और उसको ले जाएं। वो हमें फ़ोन करते हैं, हम किसी के बच्चे को लेने नहीं जाते, इसलिए उनके बारे में जो भ्रम है वो नहीं होना चाहिए। और एक और बात जो हम अपने रिसर्च के में हमें सामने आई कि हम सब क्या करते हैं, अपने घर में कोई अनुष्ठान किया, अपने बच्चों के ऊपर से कुछ भी वार कर हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि जाइए ट्रांसजेंडर के घर दे आइए। हम क्या करते हैं, अपनी सारी बददुआएं उनको देते हैं और सामान के बदले में वो हमें अपनी दुआएं देते हैं। एक इंसान जो हमें दुआएं दे रहा है वो समाज का एक उपेक्षित वर्ग कैसे हो सकता है? वो हमने उसको समाज से अलग किया, वो अलग नहीं हुए, हमने उनको अलग किया है। कई सारे मिथ हैं उनके बारे में कि जब उनके यहाँ डेथ हो जाती है कि वो अपनी डेड बॉडी को पीटते हुए ले जाते हैं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ये सब भ्रम है। जिस प्रकार से हिंदू रीति रिवाज में संस्कार किया जाता है इसी प्रकार से वैसे ही वो संस्कार करते हैं। जितने भी मिथ हमारे समाज में उनके बारे में हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी अनुचित कार्य को करते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो तो हमारे समाज में भी हैं, उनके समाज में भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो रवैया है समाज के प्रति वो एक सकारात्मक रवैया है।
1: आपने बच्चों की बात करी, जो जिन बच्चों को वो पढ़ाते हैं, जिनको वो अपनी ओर से सुविधाएं देते हैं, क्या वो बच्चे ट्रांसजेंडर होते हैं या वो साधारण बच्चे होते हैं जो या तो उनके पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेजते हैं?
0: नहीं, जो बच्चे उनके पास गए हैं वो ट्रांसजेंडर ही होते हैं। ट्रांसजेंडर मेल फीमेल हो सकता है, जो बच्चे वहाँ उनके पास जाते हैं वो सभी ट्रांसजेंडर होते हैं। और 12वीं तक जब उनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो बच्चों को बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देते कि ये बच्चे ट्रांसजेंडर हैं। उसके बाद बच्चे खुद समझते हैं कि वो क्या है, वो बिल्कुल भी उसको महसूस नहीं होने देते। ये मुझे बड़ी अच्छी बात उनकी लगी है जो हमारे बच्चों के प्रति वो ऐसा रवैया रखते हैं।
1: यानी कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सभी सुनने वालों को ये कहना चाहते हैं कि कोई भी समाज हमारे आसपास है, कोई भी ग्रुप हमारे आसपास है, तो हमें उनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। केवल धारणाओं पर ही नहीं चलना चाहिए, हमें उनके बारे में जानना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी जो बुक है ट्रांसजेंडर एंड ह्यूमन राइट्स, अगर उसको पढ़ा जाए तो बहुत सी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, एक पर्सनल सवाल मैं करना चाहूंगा। हमने अभी कुछ किताबों की, कुछ पुस्तकों की बात की, आप अपने लिए कब टाइम देते हैं? क्या आप अपने लिए कुछ सोचते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ म्यूजिक या कुछ ऐसा सुनते हैं कि आप 24 घंटे लिखते ही रहते हैं?
0: नहीं सर, देखिए फैमिली को टाइम और अपने लिए टाइम बिल्कुल जरूर निकालते हैं, बल्कि फ्रेंड्स के लिए भी निकालता हूँ। मेरी एक हैबिट है, जितने मेरे कॉन्टेक्ट्स में मेरे फ्रेंड्स हैं, टीचर हैं अधिकतर, और मैं समय समय पर फोन करके जरूर याद करता हूँ। मुझे याद ना करें लेकिन मैं सबको याद करता हूँ। अपने समय लिखने के लिए भी निकालता हूँ और अपने फ्रेंड्स को याद करने के लिए भी निकालता हूँ, और परिवार के लिए भी शाम को जो समय मेरा होता है तो अपने परिवार के लिए भी जरूर निकालते हैं।
1: यानी आपने काम और परिवार और अपनी जिंदगी को अलग अलग समय दे रखा है जिससे आप आगे चलते हैं। तो संगीत सुनते हैं आप?
0: जी।
1: तो मैं चाहूंगा कि आपका कोई मनपसंद गीत हो जो हम आपको भी सुनाएं और हम अपने श्रोताओं को भी सुना सके।
0: हाँ जी, ये एक सॉन्ग है, देशभक्ति का है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।

0: हमारी बात इस समय चल रही है डॉक्टर जगदीप सिंह जी के साथ। अगला विषय लेते हैं। सर, आपने मानव अधिकार के बारे में अभी बताया, सरल शब्दों में इसके मायने हम अपने श्रोताओं को कैसे समझा सकें, और क्या हमारे देश में सबको मानव अधिकार मिलता है?
1: देखिए सर, जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं, हम प्राकृतिक अवस्था जब मनुष्य जंगलों में था, राज्य नहीं बना था, सरकारों का निर्माण नहीं हुआ था, हमारे कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं लॉक, जॉन लॉक, उन्होंने कहा था कि जब मनुष्य जंगली अवस्था में था तब भी उसको राइट थे, जीवन का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, और एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार था
0: जी।
1: उस समय भी हमें अधिकार थे। जब हम आज एक मॉडर्न स्टेट में पहुंच चुके हैं, वहां से लेकर आज तक, तो जब हम मानव अधिकारों के विषय में जिक्र करते हैं, ठीक है, बहुत जगह एक्सप्लोइटेशन होता है, लेकिन जब हमारा समाज सभ्य होगा, हमारे समाज में जागृति आएगी, हमारा राष्ट्र विकसित होगा, तो अधिकार लोगों को स्वयं प्राप्त होंगे। जैसे आप पश्चिमी राष्ट्रों को देखते हैं, हम कहते हैं कि हमसे ज़्यादा अधिकार हैं, वो जिम्मेवार ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन की थोड़ा दिक्कत है। जब तक हम पूरे समाज में एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, वास्तविक रूप से एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, तब तक ये समस्या रहेगी। जब हमारा समाज शिक्षित होगा तो ये मानव अधिकारों की जो मिथ की समस्या है हमारे यहाँ से समाप्त होगी। क्योंकि आज बहुत सारी धारणाएँ हैं समाज में, और कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ तक आज इंटरनेट की पहुँच नहीं है, रेडियो नहीं है, टीवी नहीं पहुँच पाता, सरकारें सड़कें नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ हम जागृति नहीं ला पाते। जब भारत विकसित होगा, सभी सुविधाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेंगी, तो मानव अधिकार स्वयं प्राप्त होंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत जैसा जो राष्ट्र है, वो कल्पना की जा रही है कि भारत में विश्व गुरु भी हो सकता है। ऐसी कल्पना हमारे राजनेताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और स्वामी विवेकानंद जी ने की है कि भारत एक विश्व गुरु होगा, युवा शक्ति एक ऐसा माध्यम बनेगा जिससे हम, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारे वेद कितने महान हैं, तो ये पूरी दुनिया को मालूम होगा। आज आप देखते हो हमारी सरकारों ने हमारे वेदों में से योग जैसे कॉन्सेप्ट को लिया है, और योग का पूरी दुनिया आज उसका सम्मान करती है, उसको लोगों उस योग के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को एक अच्छा स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार अधिकार भी हमें जरूर एक दिन प्राप्त होंगे सबको।
0: यानी कि आपका कहना है कि अगर हमें अधिकार लेने हो तो हमें उसके बारे में शिक्षित होना पड़ेगा। जब हम सब लोग शिक्षित होंगे तो हम अधिकार भी प्राप्त कर पाएंगे।
1: जी, जो मानव अधिकार शब्द है वो पूरी मानवता के लिए है, किसी आतंकवादी के लिए जो पीड़ित है उसके लिए ये मायने नहीं रखता। हम तो पूरी मानवता की बात करते हैं, जो हमारे संविधान ने राइट दिए हैं, जो हमारे प्रकृति ने हमें अधिकार दिए हैं, पूरी मानवता के लिए है। जन्म से कोई भी व्यक्ति ना तो आतंकी है ना क्रिमिनल है। समाज ने जैसी शिक्षा उसको दी उसका व्यवहार उस प्रकार से हुआ
0: जी।
1: या हम और अपराधी तत्वों का जिक्र भी करते हैं, अगर वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो शायद उनमें भी सुधार हो सकता है। हम उसको मानव अधिकारों से या वंचित नहीं किया जा सकते। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करें, जनेवा जो कन्वेंशन थी
0: जी,
1: उसके अनुसार चाहे कोई प्रिजनर है, युद्धबंदी है, या कोई भी किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल व्यक्ति है, हमें सबको मानव अधिकार राष्ट्र के माध्यम से, समाज के माध्यम से देने चाहिए। मैं लॉकडाउन के दौरान थोड़ा सा जिक्र करूंगा, और दो विषयों का मैं जिक्र करूंगा। जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ, पूरा भारत बंद था, उस समय हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या आ रही थी पलायन की
0: जी।
1: करोड़ों लोग हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और दूसरे स्टेट से पलायन करके अपने स्टेट्स में गए, और कई सारे लोग 1800 किलोमीटर
0: पैदल चलकर
1: अपने घर तक गए। रास्ते में कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। हमने पिक्चर्स भी देखी, कोई सूटकेस पे जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, बिना चप्पलों के वो लोग जा रहे हैं। देखिए, जब कई बार ऐसी भयानक स्थिति आ जाती है जो पीड़ित लोग हैं उनके राइट्स नहीं हैं, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि, अब मैं एक और जिक्र करूं, जैसे कश्मीरी पंडित हैं, इतने सालों से विस्थापित हैं, सरकार लगातार प्रयासरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो सभी लोग अपने घरों को जरूर पहुंचेंगे, और सरकार, चाहे ठीक है कुछ राजनीतिक समस्याएं हैं, लेकिन सरकारों का प्रयास है कि वो लोग अपने घर कभी ना कभी जाएंगे और ये सपना उन सबका जरूर पूरा होगा।
0: आपने कश्मीरी पंडित की बात की, 34 वर्षों से वो अपने ही देश में विस्थापित है। जो कश्मीरी पंडितों के पेरेंट्स है वो इसी सोच से, या तो हालातों के हिसाब से या इस सोच से, वो इस दुनिया को छोड़ गए ये सोचते हुए कि हम घर कब जाएंगे। अगर कोई चीज आज मिलने वाली है और वही 50 साल बाद मिले, तो क्या इन दोनों में आप कोई समानता देखते हैं?
1: देखिए, राष्ट्र की बात हम करते हैं और ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है जिसको इतनी आसानी से और कुछ साल में हल किया जा सके। इतना बड़ा मुद्दा है हमारे, आज राष्ट्रीय स्तर पर ये इशू है, हमारी सरकारें लगातार सोच रही हैं, सरकार ने कई बार प्रयास किया है, अलग से एक बिल्डिंग कॉलोनी भी बनाने का प्रयास किया है, अभी पीछे किया गया था सरकार के द्वारा, और सरकार ने इसी प्रयास को लेकर 370 वहाँ से हटाई, 35A को ख़त्म किया, केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने वहाँ बनाया। ठीक है, गमों को भुलाया नहीं जा सकता।
0: आपने एक पुस्तक लिखी है, ह्यूमन राइट्स एंड वर्किंग एंड नॉन वर्किंग वुमन। आपने महिलाओं के लिए इतने सारे किताबें लिखी हैं और आपने रिसर्च भी किया है, तो ये इसका विषय क्या रहा है?
1: हाँ जी सर, ये हमारी पुस्तक की, इंडिया में जो वर्किंग वीमेन है और जो नॉन वर्किंग वीमेन है, उनका किस प्रकार का दिनचर्या है, किस प्रकार का जीवन जीती हैं, किस प्रकार उनके सामने समस्याएं हैं, वो हमने सारा अपनी पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। पहले मैं बात करूंगा वर्किंग वीमेन। हमने बहुत सारे वर्किंग वीमेन जो हाईएस्ट पोस्ट पर थी, चाहे आईएएस है या उससे आईपीएस है, सबके इंटरव्यू लिए और हमने इंटरव्यू के माध्यम से उनको शामिल किया। जो वर्किंग वीमेन हैं उनकी लाइफ लगभग स्टेबल है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हैं, अपने डिसीजन ले सकती हैं। कुछ वीमेन हैं जो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकती, बाकी सभी ले सकते हैं अपने। लेकिन जब हमने नॉन वर्किंग वीमेन्स को स्टडी किया तो हमारे सामने कुछ अजीब और रोचक तथ्य सामने आए। जब हम एक घरेलू महिला के घर जाकर हमने उसको स्टडी किया, उसके काम को स्टडी किया, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठना, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, दोपहर, उसके बाद बर्तन साफ करना, उसके बाद झाड़ू पोछा करना, फिर दोपहर का खाना बनाना, उसके बाद फिर बर्तन साफ करना, शाम की चाय बनाना, और उसके बाद रात का डिनर बनाना, और उसके बाद सबको खाना खिलाना, और एंड में 10-11 बजे सबसे बाद खाना खा के फिर आप खुद सोना। जब हमने उसके काम की इसकी वैल्यू निकाली, और जो गांव में काम करती है सुबह और शाम, गांव में शायद कुछ महिलाएं भैंसों के लिए भी काम करती हैं, उनके उनके खेत में भी काम करती हैं, उस पूरे काम की कॉस्ट हमने जब निकाली, एक नॉन वर्किंग वुमेन के काम की कॉस्ट एक महीने की 40,000 रुपए थी। ये हमने एक प्रोजेक्ट के माध्यम से सबमिट किया और अपने किताब में भी इसको मेंशन किया, यानी कि 40,000 रुपए का काम करते हैं वो वुमेन और क्रेडिट बिल्कुल हमारे परिवारों में नहीं मिलता।
0: कहा जाता कि वो कुछ नहीं करती,
1: बिल्कुल उस काम की कोई उनको प्रेज प्रशंसा उनको नहीं दी जाती, लेकिन इतना कॉस्टली काम, इतना आप कह सकते हो कि ऐसा कार्य है जो सारा दिन बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, और उसकी 40,000 रुपए कॉस्ट, जबकि हम मान लीजिए नमक कभी ज्यादा हो गया या मिर्च ज्यादा होगी, हम कह देते हैं आज तो बहुत ज्यादा नमक है, मिर्च ज्यादा है, लेकिन सुबह से शाम तक जो उसके द्वारा काम किया गया है उसकी वैल्यू और उसकी प्रशंसा हम नहीं करते, जो हमें करनी चाहिए। हमने अपनी पुस्तक के माध्यम से उन सभी नॉन वर्किंग वुमेन, हमारी बहनों को, माताओं को, वो एक उनके समाज के सामने उनकी पिक्चर रखने की का प्रयास किया है कि किस प्रकार से वो अपनी मेहनत सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक, और कोई संडे नहीं है, वर्किंग वुमेन के लिए संडे है लेकिन नॉन वर्किंग वुमेन के लिए कोई संडे नहीं है, 7 के 7 दिन लगातार अपने काम में सुबह से शाम तक वो लगी रहती हैं। हमारी उन माताओं बहनों को सलाम, हमने अपनी किताब के माध्यम से उनको एक सम्मान देने का प्रयास किया है।
0: डॉक्टर साहब, हम भी कई कार्यक्रम इस रेडियो विदस्ता के माध्यम से करते हैं जो महिलाओं के ऊपर आधारित है। एक कार्यक्रम हमारा है नारी एक दर्पण, हमने यही कोशिश उस कार्यक्रम में भी की है कि हर कोई व्यक्ति बराबर है, पर कई बार हम शायद महिलाओं को इग्नोर करते हैं। तो हमने उसमें ये कोशिश की है कि उन्होंने भी कंधे से कंधा मिला के इस देश को, अपने परिवारों को आगे लेके गए हैं। ऐसा ही हमारा कार्यक्रम है नारी और सम्मान, हमारी भी कोशिश है, जो आप कोशिश करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात से, क्योंकि हमारा परिवार, हमारा देश महिलाओं के बगैर पूरा नहीं होता। तो उनको वो अवसर मिलने चाहिए और वो उनका वो स्थान मिलना चाहिए जो उनका जीवन में होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सर बधाई भी और साधुवाद भी देता हूं कि आप ऐसे विषयों पर काम करते हैं शायद जिन विषयों पर बहुत सारे लोग काम नहीं करते हैं। यहां पर हमारे पास गुंजाइश एक और गाने की है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप थोड़ा सा आप अपने कॉलेज समय की तरफ चलें, और उस समय क्योंकि वातावरण ऐसा होता है, आजाद सोच होती है, आजाद ख्याल होते हैं, तो उस समय कैसा माहौल रहा होगा, कौन सा गाना आप उस समय सुनते होंगे, वो हम चाहेंगे कि आप बताएं और हम आपको भी और अपने श्रोताओं को भी सुनाएं।
1: हाँ जी, जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में था तो मेरा शुरू से ही सॉन्ग की तरफ कम रुझान था। मैं अधिकतर न्यूज़ देखना, पढ़ना और अलग अलग इवेंट्स करना अच्छा था, लेकिन मैं एक सॉन्ग अपनी पत्नी पूजा को डेडिकेट करना चाहूँगा, हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते, तो प्लीज सुनवाया जाए।
0: आइए श्रोताओं, हम आपको डॉक्टर साहब का ये पसंदीदा गाना सुनाते हैं, हमें तुमसे प्यार कितना, और ये गाना डॉक्टर साहब ने अपनी पत्नी पूजा जी को डेडिकेट किया है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए, और आज हमारे साथ आमंत्रित हैं डॉक्टर जगदीप सिंह जी। ये कार्यक्रम का अंतिम भाग है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हम मानव अधिकार की बात कर रहे थे, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं या बच्चे हैं, उनके लिए हमें हर सुविधा देनी चाहिए, तो क्या उसके बारे में आप कहना चाहेंगे?
1: देखिए, बहुत सारे ऐसे विषय हैं हमारे समाज में, बहुत सारे जिन पर हमें दोबारा से सोचने की आवश्यकता है। जैसे डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, या विकलांग लोग हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट हैं, हमें और समाज और सरकार सबको एक बार सोचना चाहिए। स्वस्थ जीवन है सबके पास, और हर इंसान या मानवता स्वस्थ जीवन की कल्पना करता है। जो स्टूडेंट डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, मैं उन संस्थाओं को भी धन्यवाद करूंगा। मैं अंबाला कैंट की संस्थाएं हैं, जैसे इनर व्हील क्लब है, दूसरी अन्य संस्थाएं हैं, जो समय समय पर एल्डर फॉर्म है, ऐसे जो हमारे यहाँ स्कूल हैं, उनको समय समय पर आर्थिक मदद देते हैं, उनको टीचर प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो भी एक अपना सम्मानित जीवन जी सकें। सरकार भी कुछ ग्रांट देती हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन और उनके लिए प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए प्रयास ज़्यादा आवश्यक। एक स्वस्थ मनुष्य अपना कार्य स्वयं कर सकता है और स्वयं अपना जीवन जी सकता है, लेकिन वो व्यक्ति अपना काम स्वयं नहीं कर सकते, उनको हेल्प की आवश्यकता है। जब तक हम उनकी मदद नहीं करेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर थोड़ी सी भी मदद उनकी की जाएगी, तो वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा होंगे और अपने आप को ऐसा ही महसूस नहीं करेंगे, मेरा मानना है।
0: यानी कि आपका कहना ये है कि बाकी संस्थाएं और सरकार भी अपना काम कर रही है, जब तक एक आम साधारण व्यक्ति उनके प्रति हेल्पफुल ना हो, तब तक काम नहीं अच्छे से हो सकता है। अगर सारे इस दिशा में सोचेंगे, तो उनकी जिंदगी भी अच्छी हो सकती है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिखी बुक्स बच्चों को एकेडमिक कोर्स के दौरान पढ़ाई जा रही हैं, कितना गौरवान्वित आप महसूस करते हैं जब आपकी लिखी गई किताबें नई पीढ़ी को एकेडमिक रूप में पढ़ाई जा रही हैं, जो आपका मार्गदर्शन है वो उनको मिलता है, आपको कैसा महसूस होता है?
1: एक गौरव का अनुभव होता है। तो सबसे पहले मैं एकेडमिक बुक्स के लिए VK पब्लिकेशन है, और राहुल जी और रजत जी हैं, उनका धन्यवाद करूंगा कि मेरी सभी एकेडमिक बुक्स को उन्होंने पब्लिश किया है। तो मेरा हमेशा जवाब रहता है कि जो मुझे आप देंगे, वो अपने मेरी बुक्स में से कम कर दें, ताकि बच्चों को सस्ती से सस्ती बुक ले। मैं कभी भी उनसे कोई पैसा मैंने नहीं लिया, और बुक से ही। अभी मेरी एक लेटेस्ट बुक आई थी BA फर्स्ट ईयर की, जो मैंने डिस्कस किया था, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, 180 पेज की बुक्स है, और मैंने अपने जो मुझे उन्होंने देना था उसमें मैंने रॉयल्टी कम की, और आज बच्चों को 115 रुपये में 180 पेज की बुक मिल रही है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी बुक हर बच्चे तक पहुंचे, उसका लाभ बच्चे ले सके, तो मेरा ये प्रयास रहता है।
0: जो आप कॉलम्स लिखते हैं, क्या इसका असर आपके व्यक्तिगत जीवन पर होता है, या समाज की पीड़ा को आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं?
1: देखिए, कोई भी कॉलम जो वर्तमान में समस्या चल रही है, हमारा समाज इस समस्या को आज अनुभव करता है, तो मैं उन्हीं विषयों पर लिखने का प्रयास करता हूँ, कोई भी करंट विषय है। जैसे मैंने एक आर्टिकल कुछ दिन पहले लिखा था, और उसमें था कि बच्चों की दुनिया न उजाड़ें। आज हम अपने बच्चों पर इतना प्रेशर देते हैं कि आप 90% लेके आएं, 99% लेकर आएं, और कई सारे केस है तो ऐसे हैं जब इतना प्रेशर देने के बाद बच्चों ने सुसाइड किया है और बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम 99 लेकर ही सफल होंगे। मेरे जैसा स्टूडेंट जिसके 60% 55% नंबर आए हैं, वो भी भगवान की दया से एक अच्छे रास्ते पर चल रहा है। 50% लेने वाला बच्चा भी एक सफल हो सकता है, बिल्कुल एक मार्गदर्शक हो सकता है। तो हमें बच्चों को अधिक स्ट्रेस ना देकर उनके अनुसार हमें उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।
0: मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, आप उन पेरेंट्स को और उन बच्चों के लिए इसी विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं सभी पेरेंट्स को अपील करूंगा कि अपने बच्चों से बातचीत करें, उनकी कोई समस्या है, स्टडी की समस्या है, उससे बातचीत करें। उन पर अधिक नंबर लाने के लिए आप प्रेशर ना डालें। आप ये सोचिए कि आपका बच्चा किस विषय में ज़्यादा अच्छा है, हम उसकी प्रेज करें। आप अगर आप उस बच्चे की प्रेज करेंगे, तो बच्चा और भी अच्छा कर पाएगा। हम दबाव ना डालें, हम उसको प्रेज करें, हम उसके फ्रेंड बनकर उसको हेल्प करें, उसको मोटिवेट करने का प्रयत्न करें। जब हम उसको मोटिवेट करेंगे वो अच्छा कर पाएगा। लेकिन ये आप बिल्कुल ना सोचें कि 99% नंबर ही सक्सेस की गारंटी है, कम नंबर भी सक्सेस की गारंटी है। और आप अगर ऐसा करेंगे तो भगवान अच्छा करेगा और बच्चे भी सफल होंगे।
0: और बड़ी विनम्रता से आपने अपने आप को भी उन्हीं बच्चों में गिना जो 60% मार्क्स लेते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि आप इस समय हमारे युवाओं के मार्गदर्शक हैं अपने पुस्तकों के द्वारा। आप एक ही विषय पे नहीं लिखते हैं, एक आपका विषय आया, एक कॉलम आपका आया, वो है ब्रिटेन में क्राउन का शासन है ना कि सम्राट का। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें?
1: देखिए, जब हम, क्योंकि इंडिया में जब हम आजाद हुए, हमने भारत का संविधान बनाया, हमने अधिकतर ब्रिटेन के सिस्टम को ही फॉलो किया है, ब्रिटेन की डेमोक्रेसी को हमने इंडिया में फॉलो किया है। हमने उस क्राउन को राष्ट्रपति की जगह दी भारत में, और वहाँ की पार्लियामेंट को हमने प्रधानमंत्री की जगह दी। तो हम इस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ब्रिटेन का जो शासन है वो क्राउन का नहीं है, वो पार्लियामेंट का शासन है।
0: अच्छा,
1: आज जो ये कहा जाता है कि ब्रिटेन में क्राउन का शासन है, व्हाट इज ए, वो केवल एक नामात्र अध्यक्ष है, वास्तविक अध्यक्ष नहीं, वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री है वहां पर भी, तो वो सिर्फ एक नामात्र का शासन है। भारत आज राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका शासन भारत पर भी है। हम एक संवैधानिक रूप से भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, सिर्फ हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, हम किसी भी प्रकार से ब्रिटेन के अधीन नहीं है। भारत प्रभुता संपन्न राष्ट्र है, अपने निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मैंने अपने आर्टिकल के दौरान इस बात को क्लियर करने का प्रयत्न किया था।
0: ऐसे ही एक विभिन्न मसला है जिसके ऊपर आपने लिखा है, पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पर्यावरण सुरक्षा दिवस होना चाहिए।
1: देखिए, एक दिन 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने से भारत या दुनिया का पर्यावरण की समस्या दूर नहीं होगी। हर दिन पर्यावरण दिवस है, हम सबको छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए। हम सबको, हमें छोटे छोटे से रैपर हम कुछ खाते हैं नालियों में ना डालें, हम कॉलेजों में स्कूल्स में जा रहे हैं उसको रैपर्स को डस्टबिन में डालें। हम सबको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम अपना कूड़ा डस्टबिन में जाकर डालें। हम छोटे छोटे प्रयास करें, तब हमारा देश स्वस्थ और स्वतंत्र हो सकता है, पर्यावरण की जो समस्या हमारी दूर हो सकती है। यदि हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे तभी हम इस समस्या को दूर कर पाएंगे। तो मैंने अपने आर्टिकल के दौरान पर्यावरण को कैसे बचाएं, एक दिन पर्यावरण दिवस नहीं, हर रोज पर्यावरण दिवस है, इसको मानेंगे तभी पर्यावरण की समस्या हम प्रदूषण की दूर कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, जितनी भी बातचीत हमने आपसे की है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी काम में जब तक हम सारे देशवासी एक ना हो जाए, एक सोच के ना हो जाए, तो हमारे देश तभी आगे बढ़ा। जैसे आपने 2047 में आपने कहा कि ऐसा माना जाता है कि हमारा भारत देश विकसित होगा, तो अगर हम सब लोग मिलके इस देश के बारे में सोचें, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो सोच का दायरा हो या पढ़ाई लिखाई का दायरा हो, तो हम 2047 में विकसित होने के पूरी तरह से दावेदार हैं। एक मुद्दा और है सर, UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लंबे समय से बहस का केंद्र रहा है। आप क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के माहिर हैं, तो क्या कहते हैं आप, ये हमारे देश के लिए कितना जरूरी या गैर जरूरी है?
1: देखिए, हमारे कंट्री के लिए कई सारे मुद्दे बड़े आज जरूरी हैं। सबसे पहले यूसीसी की बात आपने की, और उसके साथ पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्र में एक और कानून की आवश्यकता है। हमारे जनसंख्या नियंत्रण पर भी भारत में कानून होना चाहिए, ताकि 142 करोड़ हमारी जनसंख्या हो चुकी है, विश्व में आज सबसे अधिक जनसंख्या वाला कंट्री भारत बन चुका है। तो सरकार को एक जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कोई ना कोई कानून लाना चाहिए। अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून होगा तो यूसीसी जैसे जो कानून हैं वो खुद भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। और यूसीसी, जब भारत एक सभी धर्मों के लिए समान कंट्री है, सभी धर्मों के लिए एक संविधान है, सभी लोगों के लिए, सभी जातियों के लिए एक संविधान है, तो मेरा मानना ऐसा है कि यूसीसी जैसा कानून भी होना चाहिए ताकि सभी लोगों को समान समझा जाए।
0: एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, युवाओं के लिए प्रेरणा है शहीद उद्धम सिंह की कुर्बानी, तो क्या हमारे देश में हमें बार बार बच्चों को या बाकी देशवासियों को यह समझाना पड़ेगा कि हम सब के लिए देश सर्वोपरि है?
1: देखिए, आज विश्व में जो भारत की स्थिति है
0: जी,
1: या भारत किस रास्ते पर कहां तक पहुंच चुका है, यदि हम उस पर नजर डालें तो शहीद भगत सिंह जी, उधम सिंह जी, इनकी कुर्बानियों से हमें प्रेरणा लेकर हमें स्वयं प्रयास करें। हम सरकार की तरफ हर विषय के लिए ना देखें, स्वयं प्रयास करें, अपने राइट्स के लिए प्रयास करें, अपने आर्थिक विकास के लिए प्रयास करें। संघर्ष केवल आज़ादी का है, उन्होंने हमें दिलवा दी, आज आज़ादी का संघर्ष नहीं है, आज संघर्ष है जीवन सफलतापूर्वक जीने का, राष्ट्र का मान बढ़ाने का। तो हमें उनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए।
0: अंत में मैं यही कहूंगा डॉक्टर साहब कि जो आज हमने ये चर्चा की, ये बहुत ही सार्थक रही, और इसका सार तो यही है कि हम सारे देशवासी जब हर विषय पर एक जैसी सोच रखेंगे तो हमारा देश सबसे सुदृढ़ और स्ट्रांग होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ ले आए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय रखी। निर्णय हम जनता पर छोड़ देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
1: धन्यवाद। जय हिंद।
0: आपको डॉक्टर साहब के एक बहुत ही अच्छे गीत के साथ छोड़ देते हैं, जो है मोहब्बत जिंदाबाद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान थे डॉक्टर जगदीप सिंह, रिकॉर्डिस्ट सेजल पुंज, एडिटिंग दीपक कश्यप, प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz की पेशकश।

प्रस्तुत है कार्यक्रम गुप्तगु एपिसोड 5। आज के आमंत्रित मेहमान हैं कश्मीरी फोक सूफी गजल एवं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर श्रीमती नीरजा पंडित जी। सहयोग दिया किरणी दास ने। रिकॉर्ड निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भारत सोपुरी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आया हूं आज कार्यक्रम गुफ्तगू का एक और अंक। गायन एक सामान्य शब्द है जो संगीत गाने की क्रिया को दर्शाता है, जबकि सूफी गायन एक विशेष प्रकार का भक्ति संगीत है जो सूफी संतों के आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है। सूफी गायन में सूफियों की रहस्यात्मक भावनाओं, प्रेम, विरह और भक्ति को व्यक्त किया जाता है। कवाली सूफी संगीत का एक रूप है, लेकिन इसमें गजल, तराना और धमार जैसे अन्य रूप भी शामिल होते हैं। आज का ये विशेष कार्यक्रम गुप्तगु एपिसोड 5 समर्पित है उन सुरों को जो दिल को छूते हैं, आत्मा को मंत्र मुग्ध करते हैं। हमारे साथ है राष्ट्रीय स्तर की गायिका, एक सूफी फनकार और खास तौर पर ये आवाज जो कश्मीर घाटी की सरजमी से उठकर देश और दुनिया के दिलों तक पहुंची है। स्वागत करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान का, स्वागत है श्रीमती नीरजा पंडित जी, आपका आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी, आपने वितस्ता रेडियो पे मुझे आमंत्रित किया है और बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सुरमई यात्रा की। सबसे पहले नीरजा जी, आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस स्टूडियो में आपके आने से, आज हमारा ये स्टूडियो पावन हो गया है।
1: नहीं, मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज मौका मिला है आपके इस पवित्र जगह पे, आपके स्टूडियो में आने का एक अवसर मिला है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दें ताकि हमारी श्रोता आपको और अच्छे से जान सके।
1: मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ, नीरजा पंडित के नाम से जानी जाती हूँ। पहले मैं नीरजा मुंशी थी शादी से पहले, और कश्मीर में थी। कश्मीर में एक छोटी सी जगह है श्रीनगर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पे, जहाँ की हमारी शिव योगिनी ललेश्वरी है, उसी जगह को मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ की हवा खातून भी है
0: जी।
1: और पामपुर उस जगह का नाम है, और पामपुर बहुत पॉपुलर है, फेमस है काफी चीजों के लिए, जिसमें केसर उगता है
0: जी।
1: तो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो सब जानते हैं, तो मैं उस जगह को बिलोंग करती हूँ।
0: सभी श्रोताओं को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि रेडियो वितस्ता हमेशा कश्मीर के साथ जुड़ा है, क्योंकि इसका जो वजूद है वो कश्मीर के साथ जुड़ा है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने श्रोताओं को कश्मीर की उन हसीन वादियों से और वहाँ की जो खास बातें हैं उनके साथ आपको जोड़ूं, और आप हमारे साथ जुड़े और हम रेडियो वितस्ता के माध्यम से आपकी जिंदगी के हम सफर बन पाए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे पहले मेहमान है वो गायक जिन्होंने मंचों, फिल्मों और एल्बम्स में अपनी आवाज से जादू बिखेरा है। सबसे पहले आप ये हमें बताएं कि संगीत में आपका सफर कैसे शुरू हुआ।
1: एक्चुअली मुझे संगीत का जो एक हेरिटेज होती है ना, वो मुझे मेरी माँ से मिली है
0: जी।
1: और उनको उनकी माँ से मिली थी
0: जी।
1: तो मेरी माँ जब कश्मीर में फंक्शंस में गाया करती थी, फैमिली फंक्शंस में, मैं बहुत छोटी थी तो मैं उनको देखती थी और मैं भी इंस्पायर होती थी। मुझे कुछ नहीं पता था, बहुत छोटी थी, और मुझे वो आकर्षण होता था उनके संगीत की तरफ, और मैं उनके साथ बैठ के उनको फॉलो करने की कोशिश करती थी, उन गानों को गाने की कोशिश करती थी। हमारी कश्मीरी फोक म्यूजिक में तुम्बक नर एक इंस्ट्रूमेंट है जो शादियों में बजता है, जैसे ढोलक है पंजाबी में, तो वैसे वो तुम्बक नर मैं कोशिश करती थी बजाने की। छोटी सी थी बट एक जिद मेरी थी, वो मुझे थोड़ा बहुत याद है, मैं मम्मी के बगल में बैठ के उन गानों को रिसाइट करने की कोशिश करती थी और गाती भी थी। फिर छोटे से ही शुरुआत हो गई थी मेरी, और

0: गाती है और बचपन में एक ग्रेस्पिंग पावर भी होता है जी। तो उन गानों को मैं एग्जैक्टली उसी ट्यून में उसी तर्ज में गाने की कोशिश करती थी और वो अच्छा लगता था सबको। और फिर एनकरेजमेंट मिलती रही टीचर्स से कि नहीं तुम सब्जेक्ट ले लो, बिकॉज कश्मीर में सब्जेक्ट नहीं था स्कूल लेवल पे। तो जब 10th पास किया फिर मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट लिया कॉलेज में और अपने गुरुजी से पंडित शंभुनाथ सोपरी जी जो कश्मीर के प्रख्यात म्यूजिशियंस में से रहे हैं, ही इज द मास्टर ऑफ क्लासिकल वर्ल्ड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर कॉलेजेस में, कॉलेज लेवल पे उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया था। तो मैंने सब्जेक्ट लिया और उनसे सीखना भी शुरू किया क्लासिकल म्यूजिक, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है ना संगीत की। बस वहाँ से एक सीखने का सफर शुरू हो गया, फिर साथ साथ रेडियो टीवी वो सब भी
1: मतलब साथ साथ चलता रहा। क्या मैं मानूं आपको ये विरासत में संगीत और जो संगीत के साथ आपकी जिंदगी चल रही है, जो आपकी संगीत की यात्रा है
0: जी,
1: तो क्या हम माने कि ये आपको विरासत में मिली है?
0: विरासत में तो मिली थी, हमारी फैमिली में सब गाते हैं, सबको भगवान ने वो वरदान दिया है गाने का,
1: सरस्वती माँ का आशीर्वाद है।
0: पर मुझे एक जब मैं आपको बोल रही थी कि मैं गाने जब गाती थी स्कूल में रेडियो के गाने जो बजते थे उसमें पंडित भजन सोपुरी जी की नई नई कंपोजिशंस और बहुत मुश्किल कंपोजिशंस, और उसको मैं गा देती थी इनोसेंस में ही गा देती थी। बेशक उस वक्त बोल भी आधे समझ में नहीं आते थे बिकॉज पोइट्री एक पोइट्री होती है, बट बचपन में वो मैं ट्यून को पकड़ती थी, उन कंपोजिशंस को मुझे कुछ अट्रैक्शन मिलती थी और मुझे लगता था मैं भी कभी गाऊं रेडियो पे, मैं भी कभी दूरदर्शन में गाना गाऊंगी। ये एक वहीं से मुझे एक स्पार्क जैसी भगवान की तरफ से था कि मुझे कुछ करना है म्यूजिक में। तो भगवान की कृपा रही और माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद रहा, और मैंने कॉलेज टाइम से ही फिर शुरू किया सीखना क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड सब्जेक्ट भी लिया, और प्लस रेडियो में ऑडिशन करके शुरू किया मैंने एक प्रोफेशनल सिंगिंग, प्रोफेशनल सिंगिंग जी। तो बहुत हार्ड वर्क होती है तभी जब हम इसमें पूरा डिवोट करेंगे अपने टाइम को। विरासत तो थी बट एट द सेम टाइम इंटरेस्ट और उसमें हार्ड वर्क।
1: आपने अपने इस सफर को खुद अपनी मेहनत से यहाँ तक बनाया है।
0: फिर मुझे ये भी नहीं पता कहाँ तक पहुँची हूँ मुझे तो ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं है, लिटरली लगता है जो मुझे पाना चाहिए था, बट ठीक है डेस्टिनी में जितना लिखा होता है वो मिलता है हमको
1: जी।
0: ये था कि रेडियो टीवी के करने से काफी भजन जी के अंडर हम काम करते थे, भजन सोपोरी जी जो मेरे गुरु जी भी है, मेरे गुरु भाई भी है, वो सब जानते हैं उनको, इंटरनेशनल वर्ल्ड फेम आर्टिस्ट रहे हैं वो संगीत के, संतूर माएस्ट्रो, एंड देन कश्मीरी फोक म्यूजिक को उन्होंने कैसे रेवोल्यूशन लाया और उन धुनों को लेके मैं इंस्पायर होती थी। उनका कनेक्शन मेरे साथ है, वाई बिकॉज मैं उन्हीं धुनों को सुन सुन के इंस्पायर होती रही और मैं अट्रैक्ट होती रही टुवर्ड्स दिस लाइट म्यूजिक, कश्मीरी म्यूजिक एंड सॉन्ग्स, जो मैं फिर शुरुआत भी हो गई रेडियो कश्मीर से और दूरदर्शन से।
1: हम आज गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में हैं और हमारे श्रोताओं से आज मुखातिब है, आपसे बहुत सारी बातें जानेंगे और श्रोताओं की जो जिज्ञासा है, उम्मीद है कि उन सारे सवालों के जवाब हम नीरजा जी से लेंगे। पर मैं चाहूंगा कि हमारी श्रोता इंतजार कर रहे होंगे आपके कंठ से सुनने के लिए।
0: जरूर जरूर
1: जी।
0: मैं एक गुरुस्तुति से ही शुरू करूंगी, शुरुआत उन्हीं से मैं करना चाहूंगी
1: जी, जी।
0: एक छोटी सी सूफी भजन से पॉपुलर भजन है ये, नुसरत फतेह अली जी ने गाया है, तो मेरा जबरदस्त फेवरेट भजन है ये सूफी भजन।

0: बहुत खूब निर्जा जी, आपने अभी कश्मीर की बात की, कश्मीर के बारे में आपने बोला, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, हम सब के लिए, चाहे हम किसी भी प्रांत में रह रहे हो, हम सब के लिए माँ बोली कितनी महत्वपूर्ण है? क्या हमारी पहचान माँ बोली से ही हो सकती है? हमारे लिए माँ बोली को बचा के रखना, उसका संरक्षण करना कितना जरूरी है, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो किसी प्रांत की बात हो।
1: भाषा एक ऐसी चीज है, आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, कहीं भी आपको अपने रीजन का कोई दिखता है, जब तक आप उसको अपनी भाषा में बात नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो मेरे प्रांत का है या कहाँ का है। जब अपनी भाषा में हम बात करते हैं, किसी भी जगह पे हो हम, तो एक अलग ही अपनापन लगता है
0: जी।
1: तो ये भाषा का एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है
0: जी।
1: भाषा नहीं तो अंग्रेजी सब बोलते हैं, तो फिर हमारे में और दूसरी जगह से होंगे या प्रांत से होंगे, जो अपनापन हमारी भाषा में बात करने से होता है, तो वो हमको किसी और अंग्रेजी में, नेशनल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज में नहीं आएगा
0: जी।
1: वो तो सबको करना ही पड़ता है, बिकॉज काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो इंटरनेशनल लेवल के लिए हमको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, वो सब तो करना ही पड़ेगा काम चलाने के लिए। बट जब हमको अपनेपन की बात आती है, तो वहाँ पे हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा से ही हमारी पहचान है। और कश्मीर से निकलने के बाद मैं मुंबई चली गई मेरी शादी के बाद
0: जी।
1: तो हमारे पास कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड मेरा, जो मैंने कश्मीर में रेडियो गाने गाए थे, टीवी पे गाने गाए थे,
0: सब कुछ छूट गया था,
1: कश्मीर में ही छूट गया था। और उसको रिवाइव करने के लिए, क्योंकि संगीत मैं कर ही रही थी, कश्मीरी म्यूजिक तो मेरा था ही वहाँ पे, तो उसको मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि छूट गया और आगे की जनरेशन तक कैसे हमारी ये मातृभाषा आगे जाएगी
0: जी।
1: तो मुझे म्यूजिक का एक बहुत बड़ा माध्यम लगा, म्यूजिक के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं भाषा को। तो मैंने एल्बम्स बनाने शुरू किए, उसको री रिकॉर्ड किए मैंने, जो कश्मीर के पॉपुलर गाने थे, जो मैंने भी गाए थे और जो वहाँ के बाकी सिंगर्स ने भी गाए थे, चूंकि रिकॉर्ड कुछ था नहीं अपने पास, तो उसको रिवाइव करने के लिए मैंने काफी मेहनत की, एफर्ट लगाया और उसको रिकॉर्ड किया। और तो रिकॉर्ड करने के बाद फिर सब जगह जगह मैंने भेजी वो सीडीज, जहाँ जहाँ हमारी कश्मीरी बरादरी थी उनको भेजा मैंने, उनको दिए मैंने सुनने के लिए। और जो बच्चे पैदा हुए थे, जो बड़े हो रहे थे, तो म्यूजिक एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर हम कश्मीरी गाने चलाते रहेंगे घरों में, हमारे जो रीजनल गाने हैं, तो हमारे बच्चों के कानों तक पहुंचती है चीजें सुनने को, फिर उनको फिर वो एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके थ्रू उनकी भाषा उनको समझ में आने लगेगी। मैं छोटी सी एग्जाम्पल अपनी ही दे दूंगी। जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने पहले कहा कि मेरे को भाषा का कुछ ज्ञान नहीं था, बहुत छोटी थी, मतलब थर्ड फोर्थ सेकंड से ही इनफैक्ट शुरू किया था। जो मैं गाने गाती थी, शमीमा आजाद जी के, कैलाश मेहरा साधु जी के, आरती टिक्कू जी के, मुझे सिर्फ ट्यून पकड़ती थी, भाषा मुझे उस वक्त कुछ नहीं समझ में आती थी। बट जब मैं प्रोफेशनली इसको करने लगी, धीरे धीरे धीरे धीरे, जब मैंने रेडियो पे गाना शुरू किया, मैं 11th में थी, छोटी थी, क्लासिकल तो सीख ही रही थी, मगर ये पोइट्री मुझे किसी ने सिखाई नहीं, ये मुझे अपने आप ही फिर इसकी समझ आ गई, करते करते करते करते, जब मैंने गाने गाने शुरू किए और मेरी मैच्योरिटी लेवल तो धीरे धीरे फिर इंसान की आई जाती है, और मैंने समझा कि नहीं, ये तो फिर करते रहने से, सुनते रहने से, और जितना इसके साथ जुड़े रहो इन गानों के साथ, वो समझ आ गई मुझे। तो मुझे लगा कि ये म्यूजिक के फॉर्मेट में बच्चे सुनेंगे गाने, कश्मीरी गाने चलते रहेंगे, जिसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल मेरा बेटा है, वो भी बचपन से मेरे साथ करता रहा है, सीखता रहा है, सुनता रहा है, और मेरे ये एल्बम्स पे काम उसने भी किया जब वो बड़ा हो रहा था
0: जी।
1: सिंस उसका म्यूजिक ही उसने अडॉप्ट किया है, म्यूजिक में ही है वो। बट उसको ये बात, उन दोनों बच्चों को, मेरी डॉटर भी है, ये गाने सुनते सुनते उनको कश्मीरी भाषा मैक्सिमम आ गई, जबकि हम घर में भाषा बोलते हैं कश्मीरी, बट म्यूजिक के थ्रू उनको ज्यादा हेल्प हो गई
0: जी।
1: तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा माध्यम है हमारा संगीत, अगर हम कश्मीरी गाने गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे रेडियो पे, उसको एडॉप्ट करेंगे, तो हमारी भाषा जल्दी पकड़ सकते हैं बच्चे।
0: निजा जी, आपने बहुत सारी भाषाओं में गाया है और अलग अलग संगीतकारों के साथ आपने काम किया है, पर अभी मैं इसी बात पर रहना चाहूंगा, कश्मीरी भाषा है वो हमारे लिए, हमारे संस्कृति के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम उस कश्मीरी भाषा को समझ पा रहे हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लल दिद की बात करूंगा, क्योंकि उनके जितने भी वाक है वो कश्मीरी में ही है
1: जी।
0: तो मैं चाहूंगा कि उसके बारे में आप बताएं।
1: जी, हमारे कश्मीर में तो काफी वरिष्ठ सूफी सेंट्स रहे हैं और बहुत जबरदस्त लेवल के ऊंची अवस्था में रहने वाले सेंट्स रहे हैं, पीरवर रेशवर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ काफी सारे गुप्त संत भी थे जो एकदम हाई लेवल के, उसमें से ललेश्वरी भी थी वन ऑफ देम, और वो शिव योगिनी थी, उनको कहा जाता था ललेश्वरी माता। तो मैं उसी जगह को बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से उनका वो सब सुना है, मैंने देखा तो नहीं है बट सुनते हुए, फिर उनके वाक सुनते हुए, सुने भी हैं सीखे भी हैं, तो काफ़ी सारे वहाँ के हैं सूफी पोइट्स हैं और संत परंपरा से जुड़े भी काफ़ी हमारे संत हैं, तो मैंने कई गाए भी हैं। और अभी आपने ललेश्वरी की बात की है तो मैं ललेश्वरी का वाक आपको सुनाते हुए फिर एक सूफी गाना ही सुनाऊंगी। सूफी मतलब फिलोसोफिकल पोइट्री है जो डोलवाल साहब का है। डोलवाल साहब बहुत बड़े शायर थे, कंपोजर थे, सिंगर थे उस जमाने के, तो उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है मेरे एक एल्बम में, उसका नाम है रिश्वर
0: जी।
1: तो उसमें सूफियों के ही गाने हैं उस एल्बम में, तो ये भी एक गाना है, मैं लालवाग से शुरू करूंगी।

0: मुझे भी उस बचपन के दौर में लिया और उस कश्मीर की वादियों में, उन गलियों में आपने मुझे पहुंचाए इस गीत के जरिए जो आपने अभी गाया मेरी और आपकी माँ बोली में। श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि माँ बोली हमारी पहचान है, हमें अपनी माँ बोली को बचा के रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी भाषा हो, क्योंकि हमारी पहचान हमारी मातृबोली से ही होती है। जो हम अपनी माँ से सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा होती है, और चाहे हम दुनिया के सभी भाषाएं बोलें पर हमारी पहचान हमारी मातृभाषा होती है। इस चर्चा को आगे ले जाते हैं और बहुत से हमने बातें करनी है नीरजा पंडित जी के साथ। अभी हम बात कर रहे थे कि आपने अलग अलग भाषाओं में गीत गाए हैं
1: जी।
0: तो जो हमारा प्रांत है इसमें पंजाबी बहुत ज्यादा बोली जाती है और हरियाणवी के साथ साथ पंजाबी गीत गाए और सुने जाते हैं
1: जी।
0: तो मैं चाहूंगा कि इन प्रश्नों के उत्तर के बाद आप एक पंजाबी गीत, कोई सा भी आपके मन का हो, वो हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: जरूर।
0: नीरजा जी, आपसे अगला प्रश्न मैं ये करना चाहूंगा कि सूफी संगीत का महत्व हमारे जीवन में क्या है, आज के दौर में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: सूफी मतलब सूफी संगीत तो अभी काफी प्रचलित है। मैं तो ये कहूंगी कि संत परंपरा से हम जुड़े हुए रहे हैं हमेशा। हमारी जितनी भी पोएट्री है वो सब संतों की वाणी है, वो सब सूफियों की वाणी है। तो वही गागा के वही हम यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, उनको ही, उन्हीं कलामों को गागा के। तो वो हमारे जीन्स में ही है, सूफियाना म्यूजिक और सूफी म्यूजिक, जो भी म्यूजिक नहीं होता है लिरिकली, मतलब वो पोइट्री जो वहाँ की है
0: जी।
1: ये दुनिया में मुझे लगता है, मैं कई जगह जाती रही हूँ, बाहर इंटरनेशनल शोज के लिए गई हूँ, तो मैंने देखा कि हमारी कश्मीरी पोइट्री इतनी रिच है, हमारी हेरिटेज इतनी रिच है, जो हमारी वहाँ की परंपरा है रिचेस्ट मुझे लगती है हमारी जो भाषा है, और जितने भी हमारे कलाम हैं कश्मीरी, चाहे वो सूफियों के हैं चाहे वो संतों के हैं, तो मैं उस परंपरा को बिलोंग करती हूँ। ये मेरी भाग्य की बात है कि मैं कश्मीर से जुड़ी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, तो हमारे खून में ही दौड़ता है वो सब पोइट्री जो हमारी है। जैसे मैंने अभी ललेश्वरी जी की बात करी, एक मिस्टिक पोइट्री है वो, तो आम भाषा नहीं है। तो काफी इनको गाते गाते आपको एक अलग ही रूहानियत महसूस होती है, अंदर एक अलग ही पीस मिलता है आपको, लाइफ के बारे में समझ आती है, फिलोसफी समझ में आती है। और इसमें कोई दीन कोई धर्म की बात ही नहीं है, इसमें एक यूनिवर्सल बात है, एक लाइफ की बात है, एक लाइफ की फिलोसफी होती है इन पोइट्रीज में। तो ये बिल्कुल रिलीजन के परे होती है ये चीजें, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है ऐसी चीजें जो फिलोसफिकल चीजें हैं। उसमें रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे गुरुओं के संग में रह के और उनका आशीर्वाद पाते पाते मेरा ज्यादा झुकाव इन्हीं चीजों की तरफ रहा है, मैक्सिमम झुकाव तो मेरे गुरुजी है, मेरी गुरु माँ है, मेरे माता पिता, सबका आशीर्वाद उनका है, और मैं इस चीज को अलग लेवल पे महसूस करती हूँ इन चीजों को गाते गाते
0: जी। जी, तो जैसे आपने कहा तो आज के दौर में सूफी संगीत की प्रासंगिकता जो है वो आज भी है, पहले भी रही है और आगे भी रहती रहेगी,
1: रहना चाहिए। बिकॉज मैं अभी यही बोल रही थी कि ये फिलोसफी लाइफ की, ये पोइट्री जो है ये इतनी रिच है, ये असलियत सिखाती है हमको जिंदगी की, इसमें कैसे चलना है। तो हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा भविष्य हो सकता है अगर वो इस चीज को समझे और इस चीज को आगे, इस परंपरा को आगे चलाएं, ये पोइट्री को गाएं बजाएं और समझे।
0: और कोई यादगार मंच अनुभव आपका?
1: वो तो बहुत सारे हैं, जैसे इवेंट्स में मैं शोज करती रही हूँ काफी सारे, तो पंजाबी भी गाया है, तेलुगु गाया, काफी लैंग्वेजेस में गाया है, गुजराती, मराठी, राजस्थानी फोक मैंने काफी गाए हैं, फिल्मों में गाया राजस्थानी, इवन काफी सारे मराठी में भी गाया है, तो संस्कृत में गाया है, तो वो सब श्लोक्स वगैरह और दुर्गा कवच वगैरह मैंने किया था, तो वो तो चलता रहा है, कमर्शियल काम तो चलते रहे हैं, बट ये है कि पंजाबी भी मैंने गाया है जी।
0: तो आप एक पंजाबी कुछ हमारे श्रोताओं के लिए करें?
1: जरूर, क्योंकि मैं आज हरियाणा में हूँ तो यहाँ के जो श्रोता है उनके लिए मैं एक छोटा सा, ये भी मेरा फेवरेट सूफी गाना है नुसरत फतेह अली जी का है
0: जी।
1: क्योंकि मैं इन सारे लेजेंड्स को सुनती हूँ, उनसे सीखती हूँ, जितने भी सारे हमारे मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं रोज ही सीखती हूँ कुछ ना कुछ, तो ये एक मेरा फेवरेट सूफी गाना है।
0: Please.

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। कार्यक्रम चल रहा है गुफ्तगू, और आज हम हमारे देश की और विश्व प्रसिद्ध गायिका से बात कर रहे हैं, और हमारे साथ है श्रीमती नीरजा पंडित जी, जो मुंबई से खासकर हमारे अंबाला के श्रोताओं के लिए इस समय स्टूडियो में है और बात कर रही है। नीरजा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के समय में संगीत में जो बदलाव आ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, संगीत ही नहीं, हमारी जिंदगियों में भी बदलाव तो आता ही है
0: जी।
1: और कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, तो हर चीज में बदलाव आता ही है। तो हमारी जिंदगियों में भी बदलाव आया है, तो जैसे हमारे संगीत को लेके मैं बात करूंगी, काफी कुछ चेंजेस आ गई। बिकॉज जो जनरेशन अभी बड़ी हो रही है, जो ग्रोइंग जनरेशन है, जो इस फील्ड में है, म्यूजिक के फील्ड में है या एक्टिंग के फील्ड, किसी भी फील्ड में है, तो बदलाव तो आना ही है। मगर वो बदलाव भी अच्छे ढंग से आए तो बहुत अच्छा है,
0: सकारात्मक होना चाहिए।
1: करेक्ट करेक्ट, हाँ जी हाँ जी। तो उस बदलाव को हमको देखना है, सुपरवाइज करना है। अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं, हमारा क्रिएटिव वर्क है कुछ, या जैसे मेरे म्यूजिक को लेके मैं बात करूंगी
0: जी,
1: कि जब कुछ नया गाना रिकॉर्ड होता है, जैसे अभी सलीम सुलेमान म्यूजिक डायरेक्टर्स है, म्यूजिक इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ संगीतकारों में से हैं
0: जी।
1: तो उनके साथ कश्मीरी फोक म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, अपने मर्चेंट रिकॉर्ड्स उनकी म्यूजिक कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग म्यूजिक कंपनीज, उसमें कश्मीरी म्यूजिक को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वो ओरिजिनल म्यूजिक भी रिकॉर्ड करते हैं, तो उनका भूमि एक एल्बम आता है हर साल
0: जी,
1: उसमें वो 10 गाने रखते हैं और वो अलग अलग रीजन्स को लेके
0: बनाते
1: हैं, अलग अलग भाषाओं में भी होता है, और फिर क्लासिकल बेस्ड, डिवोशनल, हर तरह का गाना वो रिकॉर्ड करते हैं और रिलीज करते हैं। तो कश्मीरी फोक म्यूजिक को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो मेरा कहना ये है कि वो मॉडर्न स्टाइल भी है, और आज की यूथ जो है, जो उसको लाइक करे, उसके हिसाब से भी बना है। बट एट द सेम टाइम कश्मीरी गाना उन्होंने लिया है, जो मैंने अभी गाया आपके लिए, नाज़नीन यार मैं ये मुलाकात, ये पॉपुलर गाना रहा है कश्मीर का, ये सब जानते हैं ये गाना, तो काफी पुराना ट्रेडिशनल गाना रहा है। तो इसको उन्होंने ले लिया और कश्मीर से सिंगर को बुला के, एंड देन एक यंग बडिंग आर्टिस्ट राज पंडित, उसको लिया उन्होंने, और दोनों का कॉम्बिनेशन में ये गाना बन गया। जब गाना बना तो शुरुआत भी वैसी हुई, और धीरे धीरे धीरे धीरे उसका ग्राफ ऐसा बन गया गाने का कि गाना एज इट इज है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा गाने में। पर वो बनाने का जो तरीका था, वो प्रेजेंट जनरेशन के हिसाब से, वो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के हिसाब से बना है पूरा
0: जी।
1: बिकॉज वो रीजनल लोगों के लिए ही नहीं था, वो ग्लोबल लेवल पे वो भूमि एल्बम आता है
0: जी।
1: तो पूरे यूनिवर्स तक पहुंचती है वो चीज, पूरे ग्लोब में पहुंचती है वो चीज, जो उनका वो प्लेटफॉर्म है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूज प्रोडक्शन है उसकी, तो वैल्यू उसकी। तो उसमें वो गाना उन्होंने जब बनाया, तो उसको इतना सुंदर तरीके से उसको एलोबरेट किया है म्यूजिकली, म्यूजिक ट्रीटमेंट जो उसमें है, आप सुनेंगे, आपने सुना भी होगा
0: जी।
1: तो वो लगता नहीं है कहीं दूर दूर से कि वो गाना खराब हुआ है या डिस्टॉर्ट हुआ है, हमारी भाषा को कुछ उधर उधर किया है, नहीं, बड़े प्यार से, बड़े सुंदर तरीके से उसको उन्होंने बनाया है, प्रेजेंट किया है। तो वैसे ही मैं चाहूंगी कि एक खूबसूरती के साथ अगर हम काम करें, आज की जनरेशन जो चेंजेस तो ला रहे हैं, लानी भी पड़ेगी, बिकॉज उनकी सोच अब डिफरेंट है
0: जी।
1: वो होनी लाजमी है, उसमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए या हमको कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम बैलेंस होके करें। और उसमें बेसिक जब आप रखते हो साथ में, बेस जो हमारी ट्रेडिशनल म्यूजिक है, क्लासिकल बेस म्यूजिक है, अगर वो साथ में चलता रहे और उसको उसी ढंग से पेश किया जाए और नयापन भी रहे, ताकि दोनों जनरेशन, चाहे वो पहली जनरेशन हो या आगे की जनरेशन, अभी की जनरेशन हो, सब कोई उसको पसंद करे, तो वो एक बहुत अच्छा चेंज है, उसमें कोई गलत बात नहीं है।
0: आपने अभी भूमि एल्बम की बात की और आपने राज पंडित जी की बात की, आपके सुपुत्र हैं वो, संगीत के साथ जुड़े। एक माँ जब अपने बेटे को इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे देखती है तो वो क्या सोचती है?
1: मैं तो वो, हमारा तो यही रहा है कि बस उसने अडॉप्ट किया म्यूजिक को, बचपन से वो सीखता रहा, पहले वो तबले से शुरू किया, बाद में की पियानो से शुरू किया, बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे वो सिंगिंग तो कर ही रहा था, सीख ही रहा था, तो गुरुओं से सीखना शुरू किया, एंड देन इनके साथ संपर्क किया, संगीत सलीम सुलेमान जी, पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी, तो वो इसी माहौल में बढ़ता रहा और मुझे कभी भी वो ऐसा नहीं लगता है कि भाई वो कहीं पहुंचा है हाई लेवल पे, या मुझे तो ऐसा लगता है बस अभी शुरुआत है, आगे बढ़ता रहे और यही कोशिश रहती है कि अच्छा काम करे, आगे बढ़ते रहे, आशीर्वाद रहे सब बड़ों का, गुरुओं का आशीर्वाद रहे। मेरी तो यही रहती है थिंकिंग, मैं कभी भी वो सोचती नहीं हूँ कि मैं कहीं पहुंची हूँ, मेरा बेटा कहीं पहुंचा है, बस ये है कि यू फील प्राउड। प्राउड तो होता है, प्राउड इन नॉट इन दैट सेंस कि अब इसने फतेह पा लिया है तो फिर अब बस खत्म, इतना ही है। शुरुआत अच्छी है, वो बस ब्लेसिंग है और उसकी मेहनत है, हार्ड वर्क है, बिकॉज जब आप संगीत के इसमें जगत में जाते हैं, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए जीना पड़ता है, उसी रंग में जीना पड़ता है, आपको काफी सारी चीजों का कंप्रोमाइज करके आपको उसी लय में रहना पड़ता है, तब जाके वो चीज अचीव होती है।
0: यानी
1: तो बस कोशिश जारी है,
0: यानी कि त्याग, समर्पण और निरंतर काम करना बहुत जरूरी है।
1: एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आज के युवाओं को
1: जी
0: आप क्या कहना चाहेंगे जो खास करके संगीत और गायन क्षेत्र में है?
1: बस यही है जो मैंने कहा कि अगर किसी को करना है, म्यूजिक में ही जाना है, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, एंड देन मेहनत, हार्ड वर्क और सीखना। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है जो एक अच्छे गुरु से आपको मिल सकती है
0: जी।
1: अच्छे गुरुओं के साथ उठना बैठना सीखना, तब आप इसको अचीव कुछ कर सकते हैं। देन उसके बाद जो गुरु ने सिखाया उस पे चलना, उस पे अमल करना, उसके साथ टच में रहना। मैंने अभी कहा कि जीना पड़ता है, तो संगीत को एक जीने की बात है, तो आपको बहुत उसमें समर्पण भाव से करना पड़ेगा, तब आप जाके आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत जरूरी है।
0: एक कलाकार के लिए विनम्र होना कितना जरूरी है, चाहे वो किसी भी कला का हो?
1: बहुत जरूरी है, वही तो चीज है, ऊपर वाला ही देता है ना जो हमको देता है
0: जी।
1: हमको कहीं, हम खुद से नहीं क्रिएट कर रहे हैं कुछ, जो भी हमारे, जैसे मैं गा रही हूँ तो मुझे अगर गला कुछ चल रहा है तो वो ऊपर वाला ही चला रहा है ना, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। जब वो चाहेगा तो वो गवाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं गवाएगा, कुछ भी मैं करूँ। तो जब तक आप उसके शरण में नहीं हो, समर्पण नहीं हो भगवान के, आप जिसको मानते हो उनके इसमें सरेंडर भाव में नहीं हो, तो तब तक नहीं होता है कुछ, तो बहुत जरूरी है।
0: अब हम बात करते हैं बेटियों की। हमारे समाज की नींव है बेटी, जब वो बाबुल का घर छोड़ अपने पिया के घर जाती है। इसके संदर्भ में आपने अपनी एक सीरीज साजे कश्मीर में एक गीत गाया है
1: जी,
0: तो मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए आप वो सुनाएं और फिर हम इस कार्यक्रम का अगले सेक्शन में समापन करेंगे।
1: जी जी, ये एक बहुत ही सुंदर रचना है, नजीर दास जी कश्मीर के बहुत वरिष्ठ पोएट्स में से रहे हैं, उन्होंने लिखा है। तो जब मैंने इसके लिरिक्स सुने, किसी से मैंने सुने थे और मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया और वो अवेलेबल है यूट्यूब पे, और इसके कंपोजिशन पंडित भजन सुपुरी जी की है। फोक बेस्ड कंपोजिशन है, बहुत पॉपुलर कंपोजिशन है पंडित भजन सोपुरी जी की है।

0: निर्जा जी, हम भी नहीं चाहते हैं कि आप आज यहाँ से जाएं, और आप जाने की जिद ना करें, पर समय जो है वो हमें इजाजत नहीं देता है। और आपसे अंत में ये जानना चाहूंगा कि आज आप पहली बार FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में आए, आपको यहाँ आके कैसा लगा?
1: मुझे तो फखर महसूस हो रहा है, मैं सच्ची बोलती हूँ, बिकॉज कश्मीर से निकल के जिस जद्दोजहद से गुजर के आपने ये सेटअप बनाया है और अपना नाम कमाया है आपके काम में भी, और आपने इस क्रिएटिव फील्ड को यहाँ पे इस जगह पे अननोन जगह जो थी आपके लिए, बट ऑब्वियसली आपको बहुत सहायता भी मिली होगी जो यहाँ पे आपके लोकल्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, और गुरुओं का भी आपको संग मिला होगा, आशीर्वाद मिला होगा, तब जाके आपने ये सेटअप यहाँ पे डाला है और आपने शुरू किया है और बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे तो बम्बई में बैठ के बहुत खुशी महसूस होती है कि वितस्ता रेडियो, वितस्ता नाम जो रखा है आपने, हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ वितस्ता, बहुत ही एक प्रेशियस और बहुत ही एक ऐसा नाम है जो हमारे खून में बहता है, तो वो नाम से आपने ये रेडियो का शुरुआत की और चल रहा है इतने अच्छे लेवल पे, सक्सेसफुल लेवल पे, मैं मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ आके जो यहाँ की वाइब्रेशन है, लिटरली मुझे लगा मैं किसी मंदिर में अंदर आ गई हूँ, और आपका वो जो ऑरा है इस स्टूडियो का, वाइब्रेशन जबरदस्त पावरफुल, और क्योंकि आप खुद प्योर हो, आप खुद सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो, डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर आर्ट, आप खुद एक आर्टिस्ट हो, तो आपको पता है ये आर्ट क्या चीज है, आपका पैशन और आपका डेडिकेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका जो आशीर्वाद है, जो आपके शब्द है, इनको हम संजो के रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस सफर पर हम चले हैं आखिरी सांस तक इस सफर को जारी रखेंगे। और अम्बाला के जनता के लिए हम पिछले 36 वर्षों से जुड़े हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहेगा। निर्जा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा और मैं यहाँ बैठ के आपसे कुछ बातें कर पाई। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
0: थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुप्तगु एपिसोड 5। आज के आमंत्रित मेहमान थे कश्मीरी फोक, सूफी, गजल एवं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर श्रीमती निर्जा पंडित जी। सहयोग दिया किरणी दास ने, रिकॉर्ड, एडिट, निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम करें योग रहे निरोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विशेष। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी एवं भारत सपोरी।

0: योग, योग क्या है? योग संस्कृत शब्द युजह से आया है, जिसका अर्थ है जोड़ना या संयोग। ये शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड की चेतना को जोड़ने की प्रक्रिया है। ये एक प्राचीन भारतीय साधना प्रणाली है, जिसमें योग आसनों, शारीरिक मुद्राएं, प्राणायाम, श्वास अभ्यास, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षाएं सम्मिलित होती है। आधुनिक संदर्भ में योग समान रूप से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए एक अभ्यास माना जाता है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मैं हूं आपके रेडियो दोस्त किरणी।
1: मेरा भी आप सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। और आज हम दोनों आपके लिए लाए हैं एक खास कार्यक्रम जो विश्व योग दिवस पर आधारित है, और आज के इस शो का शीर्षक रहेगा करें योग रहे निरोग। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधि नहीं है, बल्कि ये आत्मा, मन और शरीर के बीच संतुलन बनाने का एक अद्भुत विज्ञान भी है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव भरी दिनचर्या में योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसी महत्व को समझाते हुए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पूरी दुनिया में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक खास विषय होता है। आप सभी को विश्व योग दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का रेडियो कार्यक्रम करें योग रहे निरोग की शुरुआत करते हैं। योग हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में हम आपसे बहुत सारी जानकारी देंगे इस बारे में, और आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह।

0: आज के इस विशेष अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये दिन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणादायक पर्व बन चुका है। योग जो कभी हिमालय की गुफाओं में तपस्वियों की साधना का हिस्सा हुआ करता था, आज वैश्विक मंच पर आधुनिक जीवन की आवश्यकता बन गई है। ये भारत की एक ऐसी अमूल्य देन है जो अब सीमाओं से परे जाकर विश्व के कोने कोने में अपनाई जा रही है।
1: हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले ये समझ लिया था कि शरीर, मन और आत्मा तीनों के बीच सामंजस्य से ही पूर्ण स्वास्थ्य और सच्चे सुख की कुंजी है। योग केवल शरीर को मोड़ने या सांसों को नियंत्रित करने की क्रिया नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक दर्शन है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की यात्रा है। आज जब हम ये वैश्विक योग दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमें याद दिलाता है कि भारत का ज्ञान सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है।
2: जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। जो सुलझा दे जीवन को।
0: आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीक, प्रतियोगिता, उपभोक्तावाद और तनाव ने हमारे जीवन को इतना प्रभावित कर दिया है कि हम खुद से कटते जा रहे हैं। ऐसे समय में योग वह माध्यम है जो हमें हमारे भीतर दोबारा जोड़ता है। ये आत्मनिरीक्षण की कला है जहां हम बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। आप सुबह का योग अभ्यास करें या शाम का ध्यान, ये अभ्यास सिर्फ शरीर को स्वस्थ नहीं करता बल्कि मानसिक

0: सच में अपने जीवन से जुड़े हुए हैं? क्या हम अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की जरूरतों को समझते हैं? क्या हम इस भागदौड़ में खुद से संवाद करना भूल चुके हैं? योग इन सभी सवालों का उत्तर है। ये हमें रुकने, सोचने और जीवन को फिर से महसूस करने का अवसर देता है।
1: हमारे प्राचीन ग्रंथों पतंजलि के योग सूत्र, भगवद गीता और उपनिषदों में योग का विस्तृत वर्णन है। योगाश्चित्रावृत निरोध, अर्थात योग वो अवस्था है जहाँ मन की सारी चंचलताओं पर नियंत्रण होता है। जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा की सच्ची अनुभूति संभव होती है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, स्थिरता, संतुलन और सच्चा आनंद। आज हमें गर्व होना चाहिए कि भारत की इस अमूल्य परंपरा को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। विश्व के 190 से अधिक देशों में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक, केन्या से लेकर अर्जेंटीना तक, हर जगह लोग योग मैट पर बैठकर भारत की इस ज्ञान परंपरा को नमन कर रहे हैं। ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि मानवता की विजय है।

0: निर्माता हैं। आपके पास ऊर्जा है, उत्साह है और दिशा चुनने की स्वतंत्रता भी। यदि आप योग को अपनाते हैं तो आपके जीवन में स्पष्टता, निर्णय क्षमता और आत्मबल में अद्भुत परिवर्तन आएगा। योग सिर्फ बुजुर्गों या रोगियों के लिए नहीं है, ये युवा पीढ़ी का पथ प्रदर्शक है। यदि आज की युवा शक्ति योग को अपनाए तो वो न केवल अपनी समस्याओं से निपटेगी बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी एक सशक्त भूमिका निभाएगी। हम सभी को ये भी समझना चाहिए कि योग कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक पद्धति है। ये किसी भी जाति, भाषा, धर्म या संप्रदाय से बंधा नहीं है। ये एक सार्वभौमिक विज्ञान है जिसे हर व्यक्ति, हर उम्र, हर देश के नागरिक अपना सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।
1: आज जब हम इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं, तो आइए हम केवल एक दिन योग करने की रस्म ना निभाएं। आइए हम इसे अपनी दिनचर्या में स्थान दें। सुबह उठकर केवल 15 या 20 मिनट का योग अभ्यास भी हमारे जीवन को दिशा दे सकता है। बच्चों को शुरू से ही योग सिखाएं ताकि वे शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से स्थिर बने। ऑफिसों में, स्कूलों में, कॉलोनियों में योग को अपनाने की मुहिम चलाएं।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात, योग का अर्थ केवल आसन नहीं, यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, ये सब योग के अंग है। योग सत्य, अहिंसा, अनुशासन, संतोष और आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। यदि हम केवल शरीर को साधे लेकिन मन को ना समझे तो योग अधूरा रह जाएगा। इसलिए योग को पूर्ण रूप से अपनाइए, जीवन शैली के रूप में, सोच के रूप में और व्यवहार के रूप में।
1: अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि इस योग दिवस को केवल उत्सव की तरह ना लें, इसे एक नए जीवन की शुरुआत बनाएं। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ, शांत और जागरूक समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़ा हो, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो और जीवन को एक साधना के रूप में देखे। योग भारत की आत्मा है और यह आत्मा अब दुनिया की धड़कन बन चुकी है। अम्बाला में कई जगहों पर योग दिवस मनाने का कार्यक्रम है। सबसे बड़ा कार्यक्रम SD कॉलेज अम्बाला कैंट में होगा। आप सुभाष पार्क में भी आ सकते हैं, वहां भी एक योग कार्यक्रम का आयोजन होगा और आप भी योग को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं। इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: तो साथियों, आज के इस योगमय सफर का यही समाप्त करते हैं। योग सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक जीवन शैली है जो हमें खुद से, प्रकृति से और इस सृष्टि से जोड़ती है। जिस तरह श्वास भीतर जाती है और फिर बाहर आती है, वैसे ही योग हमें भीतर की शांति देकर बाहर की दुनिया को सुंदर बनाना सिखाता है। चलिए आज से प्रण ले कि हर दिन के कुछ क्षण योग को दे, अपने लिए, अपनों के लिए और इस धरती के लिए। इस योग यात्रा में साथ निभाने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मिलेंगे फिर किसी नए भाव, किसी नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, सुखी रहे और योगमय रहे। नमस्कार।

आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम करें योग रहे निरोग, प्रस्तुत किया आरजे किरणी और भारत सपूरी ने, एडिट किया राहुल अलियान ने, निर्देशन भारत सपूरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 6, वरिष्ठ नागरिक कल्याणकारी योजनाएं। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आयोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट और निर्देशित किया भारत सोपोरी ने।

0: अरे बेटा लक्ष्मी, आज तू किधर रह गई है?
1: बस आई दद्दू, क्या बात है? आप अपने श्रोताओं से मिलने के लिए बड़े उत्साहित हैं?
0: हाँ बेटा, उत्साहित तो हूँ, क्योंकि वो सब हमारे परिवारजन हैं, और अपने दोस्तों से मिलके किसको खुशी नहीं होती है भला।
1: बात तो ठीक कहते हो दद्दू, चलिए मैं भी रेडी हो गई हूँ, आइए चलते हैं।
2: बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे देश भर के 200 सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में।
1: हमारे साथ है हमारी आन बान और शान, हमारे अभिमान, हमारे भारत दद्दू,
0: और ये है मेरी प्यारी खूब ख्याल रखने वाली पोती लक्ष्मी, और हम दोनों मिलकर एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका
1: इस विशेष कार्यक्रम
0: हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं, और इससे लाभान्वित होने के तरीकों पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं।
1: ये विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच लेकर हाजिर हुए हैं।
0: इतना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है, जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नीतियां बनाकर और नए कार्यक्रम को चला करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है।
2: कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीत काल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा?
3: हेलो,
4: हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन, मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 1-4-5-6-7। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा।
2: एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है, साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें, कौन सुनेगा बुजुर्गों की? अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 1-4-5-6-7 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 1-4-5-6-7 को सेव करें, कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी।
0: लक्ष्मी, एक दिन अपने वकील साहब है ना, अरे वो अपने दीपक बाबू।
1: हाँ क्या कहा उन्होंने?
0: अरे वो एकत्रित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के बारे में कुछ कह रहे थे। वो क्या होता है बेटी?
1: एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम IPSC भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुधारने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। IPSC का प्रबंधन भारत सरकार के वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
0: अच्छा बेटा, लेकिन ये तो बताओ लक्ष्मी कि इसमें होता क्या है?
1: अरे दद्दू बताती हूँ, परेशान क्यों होते हैं, आपको सब कुछ बताती हूँ। इस एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के तहत कई सारे लाभ वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाते हैं, जिसमें मासिक पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, आवासीय अनुदान, शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा जैसी कई सारी चीजें हैं।
0: देखो लक्ष्मी, ये मजाक का वक्त है क्या, या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ?
1: क्या हुआ दद्दू, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप?
0: वृद्धों को पेंशन कब से मिलने लगी और वो भी बिना कुछ किए?
1: ओहो दादू, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है ना, मगर मैं सच कह रही हूँ। भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने वृद्ध नागरिकों के लिए पेंशन योजनाएं शुरू कर रखी है। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप इनकी बात सुन लो दादू।
0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 6। इस विषय में हम आए हैं अग्रवाल कॉम्प्लेक्स और हम बात करेंगे श्री कमल भूषण शर्मा जी के साथ। आइए सुनते हैं वो पेंशन योजनाओं के बारे में और पेंशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं।
3: पेंशन एक गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की भी अच्छी स्कीम है जो कि बुजुर्गों को खाने के लिए या रोटी के लिए गुजारे के लिए मदद करती है, उससे प्रभाव चलता है, सारा कुछ उसी के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर बच्चों की स्पोर्ट ना भी हो तो आदमी अपनी रोटी खा सकता है, नशों में पड़ने के बजाय अपने घर में बैठे आराम से खाना खा सकता है और रोटी से गुजारा कर सकता है। बाकी यह है कि थोड़ी सी महंगाई को देखते हुए गवर्नमेंट को इसमें वृद्धि करनी चाहिए, जो कि हर बुजुर्ग का हक भी है और एक नागरिक, अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि हम गवर्नमेंट की सपोर्ट करें।
0: शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हम अपनी युवा अवस्था में होते हैं और हम घर परिवार को चलाते हैं, जब हम सीनियर सिटीजन या वृद्ध हो जाते हैं, भारत सरकार की जिम्मेदारी जो हर एक वृद्ध जन के लिए है, वो और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए जो उन वृद्ध जनों के लिए फायदे की बात हो सकती है, जो बुजुर्ग है वो भी सम्मान से जी सके?
3: एक तो यह है कि महंगाई के जमाने में सरकार को कुछ और सोचना चाहिए ताकि जो बुजुर्ग मियां बीवी है वो अपना अच्छे से गुजारा कर सके और अच्छे से अपना देखभाल कर सके, ताकि उनका घर चलता रहे, रोटी चलती रहे। और सरकार ने ये बड़ी अच्छी स्कीम बनाई हुई है जिससे कि आम बुजुर्ग लोगों को काफ़ी मदद मिलती है और उससे उनका परिवार चलता है। आगे थोड़ी सी पहले इनको सहूलत थी कि रेल में वो सफ़र करते थे तो उनको सीनियर सिटीजन की थोड़ी कंसेशन मिलती थी, जो आजकल नहीं मिलती।
0: हाँ, जो अब नहीं है
3: वो मिलनी चाहिए ताकि बुजुर्ग आदमी भी कोई सफर कर सके तो आराम से उसको कम रेट में वो सफर कर सके, अच्छी तरह जी सके।
0: इसके साथ जुड़ा प्रश्न मैं एक और करना चाहता हूँ कि जो हमारे वृद्ध जन है उनके लिए खाना जरूरी है या इज्जत और सम्मान और समाज में उनका रुतबा ज्यादा होना चाहिए?
3: रुतबा तो ये है कि जीने के लिए खाना तो जरूरी है, रुतबा सरकार अगर पैसा देती है तो उनको इज्जत देती है, तो प्यार देती है, तो हम भी, हमारा वर्ड भी बनता है कि हम सरकार को पूरी इज्जत दें।
0: अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जो पेंशन योजना के अंतर्गत आपको पेंशन मिल रही है, आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं?
3: पेंशन मिल रही है, अच्छी बात है, 3,000 पेंशन मिल रही है, उससे गुजारा हो रहा है थोड़ा बहुत, और उसमें थोड़ी सी वृद्धि भी सरकार को करनी चाहिए महंगाई को देखते हुए।
0: हम आए हैं यहाँ पर शर्मा जी के पास, और जो उनके सुझाव है, और ये सरकार के लिए शुक्रगुजार भी हैं, और इनका ये कहना है कि जितना भी पेंशन वृद्ध जनों को मिलती है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि और अच्छे से और सम्मान के साथ वो अपनी जिंदगी जी सके। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत शुक्रिया, गवर्नमेंट का भी और आपका भी
0: बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
1: अब तो विश्वास हुआ ना दादू मेरी बात का?
0: हाँ बेटा, लेकिन लेकिन
1: ओहो दादू, अब बोली भी लेकिन क्या?
0: बेटा, ये पेंशन योजना तो वरदान है बुजुर्गों के लिए। कब शुरू हुई है ये योजना, इसका नाम तो बताओ तुम।
1: दादू, वृद्ध अवस्था में पेंशन के लिए एक नहीं कई योजनाएं हैं, जिनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना है, जो 1995 में शुरू की गई थी। वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना सहित अनेक योजनाएं शामिल हैं।
0: अच्छा, तो दीपक बाबू इसी की बात कर रहे थे क्या? इसका लाभ क्या है बेटी, ये तो बता।
1: दादू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना के तहत वृद्धों को मासिक पेंशन दी जाती है।
0: अरे वाह, लेकिन ये योजना काम कैसे करती है?
1: ये योजना मुख्य रूप से 60 साल और उसके ऊपर के वृद्ध लोगों के लिए है, जिनके पास कोई मजबूत आर्थिक साधन नहीं होते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार उन्हें एक नियमित पेंशन प्रदान करती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना का उद्देश्य वृद्ध अवस्था में जब व्यक्ति का जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है और उनके पास कोई स्रोत नहीं होते, उन्हें एक नियमित पेंशन राशि देना है। ये राशि उन्हें उनकी जिंदगी की अंतिम अवस्था तक मिलती रहती है। योजना के तहत वृद्ध लोगों को हर महीने एक निश्चित राशि की पेंशन दी जाती है, और ये राशि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और छवि के अनुसार तय की जाती है। योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर है और जिनके पास कोई मजबूत आय का स्रोत नहीं है।
0: मतलब इस योजना में आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए, जैसे कि कोई नियमित आय का स्रोत ना हो, बस इतना ही ना?
1: इतना ही नहीं दादू, कुछ मामलों में तो यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है।
0: अब बिटिया हमारे साथी और इंतजार नहीं कर सकते, फटाफट बता दे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी।
1: बहुत आसान है दादू, आयु का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या गरीबी रेखा से संबंधित कोई दस्तावेज, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट की कॉपी, बैंक खाता है, क्योंकि पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, इसलिए आपके बैंक खाते का विवरण, बस यही मामूली कागजातों की जरूरत है दादू।
0: अरे पगली, वो सब तो ठीक है, मगर ये बता इसके लिए कुछ फार्म वारम भी भरना पड़ेगा कि नहीं? कहाँ भरेंगे वो फार्म, कैसे भरेंगे, कुछ तो बताएगी?
1: आसान है दादू, इसके लिए हमारे बुजुर्ग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और कार्यालय जाकर भी। ऑनलाइन आवेदन में आप अपनी नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन में आप अपने गांव या शहर के नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय या पंचायत कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको अपने दस्तावेज जमा करने होंगे और उसके सत्यापन के बाद बस हो गया काम, है ना आसान दादू?
0: अरे वाह, बहुत खूब बेटा, इतना आसानी से और सरल तरीके से समझा दिया तूने कि सबको समझ में आया होगा। वैसे ये योजना तो कमाल की है।
5: अरे भारत भाई, कैसे हो आप? भारत भाई, मैंने अपनी कुछ जमीन बेची थी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आपकी पोती तो बाहर रह के पढ़ती है। अरे भाया, पूछ के बताओ ना कुछ, जिससे मुझे कुछ मासिक आय भी मिलती रहे।
0: ठीक है भाई, जरूर पूछ के बताता हूँ। तब तक आप सुनते रहिए अटल वयो अभ्युदय योजना पर प्रसारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान।
5: ठीक है भाया।

0: अरे वाह, लक्ष्मी तो अब सेलिब्रिटी बन गई है। शाबाश बेटा,
1: सब आपके आशीर्वाद का कमाल है दद्दू।
0: अच्छा ये बता लक्ष्मी कि उनके पास जो पैसे हैं, वो कहाँ निवेश करें?
1: सबसे सुरक्षित है इसके लिए तो प्रधानमंत्री वाई वंदन योजना।
0: अब ये क्या है बेटी, ये नई कौन सी योजना आसमान से टपक पड़ी?
1: प्रधानमंत्री वाई वंदन योजना भारत सरकार द्वारा वृद्ध नागरिकों के लिए बनाई गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिससे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित पेंशन प्रदान करना है, ताकि उन्हें वृद्ध अवस्था में वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को निवेश पर एक सुनिश्चित ब्याज दर के साथ पेंशन मिलती है, जो उन्हें बाजार में ब्याज दरों से उतार चढ़ाव के बावजूद एक स्थिर आय प्रदान करती है।
0: अच्छा, यानी तू ये कहना चाहती है कि इसमें पैसे जो जमा किए हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे और पेंशन भी मिलेगी। आम तो आम, गुठलियों के भी दाम।
1: बिल्कुल ठीक समझे दद्दू। ये योजना विशेष रूप से 60 वर्ष और उसके अधिक आयु के नागरिकों के लिए बनाई गई है और इसका कार्यकाल 10 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री वाई वंदन योजना में पेंशन की राशि निवेश की गई राशि पर निर्भर करती है और पेंशन को मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर लिया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वे नियमित आय का स्रोत प्रदान करना है।
0: कितनी ब्याज दर है इसमें बेटा, और कितने समय के लिए है ये योजना?
1: इस योजना का कार्यकाल 10 वर्षों का होता है, यानी एक बार निवेश करने पर आपको 10 वर्षों तक पेंशन प्राप्त होती है। ये योजना एक सुनिश्चित ब्याज दर प्रदान करती है, जो सरकार द्वारा तय की जाती है। ब्याज दर सालाना होती है और ये योजना अवधि के लिए निश्चित रहती है।
0: वो सब तो ठीक है, लेकिन योजना का लाभ कैसे लेंगे?
1: योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। इसके साथ ही प्रक्रिया भी बता देती हूँ आपको, वरना मन में संकोच करोगे। इस योजना में निवेश करना बहुत सरल है। स्टेप वन में सबसे पहले किसी भी नजदीकी LIC शाखा कार्यालय में जाकर योजना के आवेदन पत्र प्राप्त करें या LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। स्टेप टू, आवेदन पत्र को भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें। इनमें पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक चेक शामिल है। स्टेप तीन, आपके द्वारा जमा की गई जानकारी के आधार पर LIC आवेदन की समीक्षा करेगा। स्वीकृत के बाद आप अपनी पसंद के अनुसार भुगतान मोड का चयन कर सकते हैं। स्टेप चार, योजना में प्रवेश होने के बाद आपको पॉलिसी बॉन्ड प्रदान किया जाएगा और पेंशन भुगतान आपके द्वारा चुने गए विकल्प मासिक, तिमाही आदि के अनुसार शुरू हो जाएगा।
0: अच्छा, मगर बेटा मान लो किसी को कोई गंभीर समस्या आई तो?
1: इस योजना के तहत पॉलिसी धारक की गंभीर बीमारी की स्थिति में समय से पहले निकासी की सुविधा भी है। इस स्थिति में जमा राशि का 98% वापस कर दिया जाता है। साथ ही 3 वर्षों के बाद इस योजना पर लोन लिया जा सकता है। अधिकतम लोन राशि योजना में जमा की गई राशि का 75% होती है।
0: अब फटाफट बता दे, जरूरी कागजात कौन कौन से होंगे?
1: आधार कार्ड पहचान के लिए, पैन कार्ड टैक्स संबंधी जानकारी के लिए, बैंक खाता विवरण पेंशन राशि बैंक खाते में जमा करने के लिए और पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र के साथ जमा करना होता है।
2: हमारे बुजुर्ग ना हो निराश, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने मिलकर जगाई है उनके लिए नई आश। जी हाँ, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई योजनाएं चला रही हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक समावेशन के लिए नीतियां और कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। वृद्धाश्रम और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। बुजुर्गों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उनकी गरिमा और आत्मनिर्भरता को बनाया जा रहा है और भी सुविधा युक्त। साथ ही राज्य कार्य योजना की मुख्य घटके हैं स्वास्थ्य सेवाएं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है और फ्री हेल्थ चेकअप और नियमित मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए गैर संचारी रोगों का उपचार आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष से अधिक हर तरह के बुजुर्गों को मिल रहा है आयुष्मान कार्ड का लाभ। वित्तीय सहायता और पेंशन के लिए कमजोर आय वर्ग के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। आवास और आश्रय के लिए हर जिले में वृद्ध आश्रम की स्थापना, बेघर बुजुर्गों को आश्रय प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही भोजन और पोषण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए सस्ते दरों पर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराए जाने का कार्य भी किया जा रहा है। तो आप बुजुर्गों, बस आप हो जाइए तैयार, क्योंकि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार कर रही है अपने बुजुर्गों का सत्कार। जी हाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित
1: ये था हमारा आज का हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का अंक, जिसमें आपने जाना अटल वियो अभ्युदय योजना और वृद्ध जनों के लिए पेंशन योजनाओं के बारे में, जिसे आप सुन रहे थे अपने रेडियो FM 90.0 MHz पर। इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से और सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में।
0: दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है, जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1-4-5-6-7 लगा सकते हैं।
1: तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है।
0: इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है और
3: हमारा भारत देश महान,
0: हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान।
1: तो अब हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से, और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।
0: नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एपिसोड 6 वरिष्ठ नागरिक कल्याणकारी योजना, प्रस्तुत किया किरणी दास ने लक्ष्मी के किरदार में और भारत सोपोरी ने दद्दू के किरदार में। इस एपिसोड में कॉल करने वाले वृद्ध की आवाज दी राहुल अल्यान ने। इस कार्यक्रम के लिए वॉइस बाइट दी थी वरिष्ठ नागरिक श्री कमल भूषण शर्मा जी ने और हमारा साथ हमारे मेंटर श्री प्रवीण पुंज जी का। इन दोनों का विशेष धन्यवाद। रिकॉर्डिंग, एडिटिंग व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन व सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आरडी सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति। पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: नमस्कार, 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त, रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। आज आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर दोबारा हाजिर हुआ हूं, और आज के प्रोग्राम का शीर्षक है कसक एहसासों की। बहुत सी बातें जिंदगी के बीच में बीतती हैं, वक्त बीत जाता है, लेकिन वो चुभन, वो कसक, वो कभी खत्म नहीं होती। और आज

बोझ पानी का उठाते हुए थक जाता हूं। पांव रखते हैं मेरे जज्बातों पे जो, वो क्या जाने मैं निशानात मिटाते हुए थक जाता हूं। भाई सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ और आनंद बख्शी का लिखा हुआ बॉबी फिल्म का ये गीत।

अब अखियों को पास में रहने दिया या नहीं रहने दिया, ये तो ये दोनों लव बर्ड्स ही जाने। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप हमारे से रेडियो वितस्ता से प्यार करेंगे ना, तो हम जिंदगी भर निभाने का वादा करते हैं आपसे। क्योंकि नाम की दोस्ती, काम की यारी, दूसरों की तरह ये आदत नहीं हमारी।

अगर आप भरोसा करेंगे तो हम भी आप ही के सहारे का भरोसा करेंगे। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो लता मंगेशकर जी ने सफर फिल्म के बीच में और कल्याण जी हंस जी के संगीत

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। आपके दिल के जज्बातों को पेश कर रहा हूं आप ही के कार्यक्रम कसक एहसासों की खिल। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। बाहर सावन बरसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बदरा नैनों में छाता है ना, तो दिल पर भी फर्क पड़ता है और जहन पर भी फर्क पड़ता है। फिल्म मेरा साया में लता मंगेशकर को सुनिए, मदन मोहन के संगीत में, जिसके बोल लिखे हैं राजा मेहदी अली खान ने।

हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। क्यों तलाश रही है तेरी बेताब निगाहें हमको, क्यों तलाश रही है तेरी बेताब निगाहें हमको, खुद में झांक तेरी आंखों में दिखाई देंगे, खुद में झांक तेरी आंखों में दिखाई देंगे। और महबूब जब आसपास कुछ वक्त तक नहीं दिखाई देता ना, तो फिर दिल ये कहता है, दिल जो इज्जत फिल्म के बीच में लता मंगेशकर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में साहिर लुधियानवी की कलम से कहा था, आइए हम सब भी सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि 4 बजे से हम सुचारू रूप से अपने प्रसारण आपके लिए लाएंगे फ्रीक्वेंसी FM 90.0 पर और साथ में हमारे वेब प्लेयर पर भी। अब सुचारू रूप से हमारे प्रसारण आपके लिए शुरू हो गए हैं। हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि कल सुबह 11 बजे से लेकर अब तक आप हमारे प्रसारण फ्रीक्वेंसी पर नहीं सुन पाए। हम उसके लिए एक बार फिर आपसे क्षमा चाहते हैं। अब हमारी मशीन और हमारी जो टीम है वो पूरी तरह से रेडी है आपके साथ संवाद करने के लिए। एक बार फिर सुचारू रूप से हमने अपने प्रसारण को शुरू कर दिया है और एज यूजुअल जो हमने डिटेल्स आपको दी है अपने सोशल मीडिया पर, कौन सा प्रोग्राम कितने बजे चलेगा, सुचारू रूप से उसी हिसाब से कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 7 बजे आप जरूर सुनिएगा कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गाँव की कहानी, रेडियो की जुबानी। ये कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आप सभी की जानकारी के लिए है और हम उम्मीद करेंगे कि जब आप ये कार्यक्रम सुने, अगर हो सके तो आप अपनी फोटोग्राफ खींच के हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार के लिए, स्नेह के लिए, जब मुश्किल की घड़ी आती है आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हम भी आप सभी से वादा करते हैं हम हमेशा आपके साथ इस आवाज के माध्यम से आपसे बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। टीम रेडियो वितस्ता की ओर से आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए हमारे प्रसारण FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर, यानी फ्रीक्वेंसी FM 90 पर, और साथ में हमारे webplay.radiovitasta.com पर भी।

पूरे विश्व में आप सुन सकते हैं। और हम बात करते हैं अम्बाला की और चाहते हैं अम्बाला को विश्व पटल पर रखा जाए आप सभी के सहयोग के साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर आज के प्रसारण।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: गजल पेश है।
1: शार, शार, शार,
0: दुनिया कहे बुरी है, दुनिया कहे बुरी है, ये बोतल शराब की।

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
1: सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: रेडियो विदस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर विदस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ 90.0 FM ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ, ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ, ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ।
1: सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ, 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: चमहल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

0: अच्छे एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: कच्छ महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए।

0: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
0: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
0: गणपति बप्पा मोरिया।

0: एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: अजमेर। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

जिंदगी के अनजाने सफर से बेहद प्यार करने वाले हिंदी सिनेमा जगत के महान असाधारण और मधुर आवाज वाले कलाकार पर आधारित है आज का प्रोग्राम सुनहरे पल। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। किशोर कुमार का रुझान बचपन से ही संगीत की ओर था। महान अभिनेता एवं गायक केएल सहगल के गानों से प्रभावित किशोर कुमार की तरह ही गायक बनना चाहते थे। सहगल से मिलने की चाह लिए किशोर कुमार 18 वर्ष की उम्र में मुंबई पहुंचे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी न हो पाई। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार बतौर अभिनेता अपनी पहचान बना चुके थे और वो चाहते थे किशोर कुमार भी अभिनेता बने, मगर किशोर कुमार को अदाकारी के बजाय प्लेबैक गायक बनने की चाह थी।

0: बतौर गायक उन्होंने वर्ष 1948 में देवानंद की फिल्म जिद्दी में सहगल की अंदाज में गाने का मौका मिला। फिल्म लड़की बतौर अभिनेता उनके कैरियर की पहली हिट फिल्म थी। उन्होंने कई फिल्मों दूर गगन की छाओ में, दूर का राही, चलती का नाम जिंदगी जैसे फिल्मों का निर्देशन भी किया।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबाए। आहा,

0: पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।

0: सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया।
2: किशोर कुमार ने कई हिट फिल्में देकर अपने अभिनय की अलग छाप छोड़ी। 1957 में आशा, 1958 में चलती का नाम गाड़ी, 1968 में पड़ोसन जैसे फिल्में दे दी। किशोर कुमार को 8 बार बतौर गायक फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले किशोर कुमार को आराधना फिल्म के गीत रूप तेरा मस्ताना के लिए वर्ष 1969 में बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था।

किशोर कुमार को अपने आप को लोगों के सामने दर्शाने का अलग ही तरीका था। किशोर कुमार जब भी लोगों के सामने जाते थे तब वह अपने आप को किशोर कुमार खंडवा वाले कहते थे। किशोर कुमार जब इंदौर के कॉलेज में पढ़ते थे तब वह अपने कॉलेज की कैंटीन में उधार सामान लिया करते थे और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। एक बार जब कैंटीन मालिक ने उससे अपने 5 रुपए और 12 आना मांगे तो वह कैंटीन में बैठकर 5 रुपए और 12 आना गीत गाते और कैंटीन वालों की बात ही न सुनते थे। लेकिन बाद में ये गाना 5 रुपए और 12 आना काफी हिट हुआ था।

बम बम कर बम बम कर बम बम कर तेरी गजरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गजरी में लागा

बताया जाता है कि किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा था बिवियर ऑफ किशोर। इससे जुड़ा एक किस्सा भी चर्चित है कि जब निर्माता निर्देशक H.S. रवेल उनके घर में उनसे मिलकर बाहर निकल रहे थे तभी किशोर कुमार ने उसके हाथ पर काट लिया।

0: yanne yanne pyar ho gaya.
1: बताया जाता है कि किशोर कुमार बहुत ही मूडी किस्म के इंसान थे। जब उनका मन होता वो एक बार में गाना रिकॉर्ड कर लिया करते थे, लेकिन मन न होने पर कितने भी पैसे दिए जाए वो नहीं गाया करते थे। एक दिलचस्प किस्सा बताया जाता है कि उन्होंने एक बार दोस्त से कहा कि देख, जब हम मरने वाले होंगे तब सारा पैसा अपनी छाती पर बांध लेंगे, तब मरेंगे।

0: किशोर कुमार की कल्पना की उड़ान भी बेहद अलग थी। अपने घर को लेकर उनका एक अलग सपना था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर पर एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि मेरे लिए ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी ही पानी हो। वह ये भी चाहते थे कि उनके पलंग के पास एक नाव हो जिस पर बैठकर वो डाइनिंग हॉल तक जा सके। हालांकि उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया।
1: रुक जाना।

किशोर कुमार ने कई अभिनेताओं को अपनी आवाज दी, लेकिन कुछ मौकों पर मोहम्मद रफी ने उनके लिए गीत गाए। इन गीतों में हमें चले हो कहां करके जी बेकरार, बागम बाग, मन बावरा, निस दिन जाए, रागनी है दास्तान तेरी ये जिंदगी, शरारत और आदत है, सबको सलाम करना और प्यार दीवाना शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार के लिए गीत गाने के वास्ते महज 1 रुपया परिश्रमिक लिया करते थे।

किशोर कुमार को अपने करियर में वो दौर भी देखना पड़ा जब उन्हें फिल्मों में काम ही नहीं मिलता था, तब वे स्टेज पर कार्यक्रम पेश करके अपना जीवन यापन करने को मजबूर थे। मुंबई में आयोजित एक ऐसे ही स्टेज कार्यक्रम के दौरान संगीतकार ओपी नायर ने जब उनका गाना सुना तो उनसे प्रभावित होकर कहा, महान प्रतिभाएं तो अक्सर जन्म लेती रहती है, लेकिन किशोर कुमार जैसा पार्श्व गायक हजार वर्ष में केवल एक ही बार जन्म लेता है। उनके इस कथन का उनके साथ बैठी पार्श्व गायिका आशा भोसले ने भी समर्थन किया।

वर्ष 1987 में किशोर कुमार ने निर्णय लिया कि वो फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वापस अपने गांव खंडवा लौट जाएंगे। वे अक्सर कहा करते थे कि दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे, लेकिन उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। उन्हें 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। किशोर कुमार ने राजेश खन्ना जी के लिए बहुत गाने गाए। इनकी मृत्यु पर राजेश खन्ना ने कहा था कि मेरी आवाज़ चली गई।

किशोर कुमार जैसे सदाबहार कलाकार कभी विदाई नहीं लेते, कभी अलविदा नहीं कहते। वे अपने निस्वार्थ योगदान के कारण हमारे दिलों में जीवित हैं। वे चिरस्थायी और कालजयी है और उनके गीत थके हुए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करना कभी नहीं छोड़ते।

0: है।
1: इसके साथ ही इस कार्यक्रम का ये अंक समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ और अगले अंक में किसी और हस्ती के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल। आज का कार्यक्रम पार्श्व गायक किशोर कुमार पर आधारित था। कार्यक्रम को पेश किया आरजे किरने ने। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोफोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। प्रस्तुत है कार्यक्रम पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, एपिसोड 2, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक। दोस्तों, लीजिए फिर आ गया वही दिन, वही वार जिसका हम बेसब्री से करते रहे थे इंतजार।
1: आप सभी को स्वच्छ का और सुजल का सादर नमस्कार।
0: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ, हर कोना, हर गांव, शहर में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
1: दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही हम सबका अधिकार।
0: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय इस बार, धोएंगे साबुन से हाथ खाने से पहले और शौच के बाद,
1: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे सबसे स्वच्छता की गुहार।
0: केवल मनोरंजन नहीं, उद्देश्य है हमारा,
1: बैठ जाए हर मस्तिष्क में ये संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
0: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार।
1: प्रण करे आज ही के स्वच्छ सुजल करना है हमें पूरा देश।
0: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
1: दुष्का भी भाग जाएगा अगर होगी आपके आसपास ऐसी बियार।
0: यही है सुजल स्वच्छ गांव अभियान की पुकार। साथियों, इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की कहानियां सुनेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि ODF भारत बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है।
0: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनाने का संकल्प लिया था और स्वच्छ का तुमको याद है ना? देश के सभी गांवों ने स्वयं को ही ODF घोषित किया है। अब ये ना कह देना कि ODF गाँव क्या होता है।
1: अरे ऐसे कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है। ODF का पूरा नाम खुले में शौच मुक्त गांव ओपन डेफिकेशन फ्री है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन समुदायों या क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते हैं बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। ये हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सुनिश्चित करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार लाने के साथ साथ महिलाओं की निजता की रक्षा में मदद करती है। सही बताया ना?
0: बिल्कुल, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में हमारे गांव ODF प्लस मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। एक ODF प्लस मॉडल गांव वो होता है जो खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, ठोस एवं तरल कचरे का समुचित प्रबंधन कर रहा है तथा जहां स्वच्छता का स्तर उच्च हो और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा एवं जल का जमाव ना हो।
1: इसमें ये सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो।
0: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ना, रेडियो के माध्यम से, और आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूटा नहीं।
1: अच्छा, लेकिन मुझे ये पता है कि अब तक 5.01 लाख से ज्यादा गांव स्वयं को ODF प्लस मॉडल घोषित कर चुके हैं। इसके साथ 5.50 लाख से अधिक गांवों में गंदला जल प्रबंधन और 5.32 लाख से अधिक गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कर चुके हैं।
0: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास जारी है। हर गांव को साफ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना और हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई है और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुके हैं। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
2: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना। ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या वेस्ट भी सही तरीके से निपटान किया जा सके। इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में आज हमारे 4,85,000 से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है। ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे। हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। ना हम कचरा फैलाएंगे, ना दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
0: हमारी विशेषज्ञ ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने कितने अच्छे से ये सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई। याद रखना है आपको और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
1: एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद में स्वच्छ का और तुम सुजल साथ में दुष्का भी बहुत फेमस हो गए हैं।
0: अच्छा, कैसे?
1: अलग अलग गांवों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
0: अच्छा, कहाँ?
1: चलो तुमको रामपुर गांव की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वो सुनवाती हूँ। वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दुष्का की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत। दुष्का की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत।

0: कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी होती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता की गंदगी ने खुली चुनौती दी, जहां प्रदूषिका कुमार ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छता ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत। आइए सुनते हैं दूषिका की हार स्वच्छ भारत की जीत।
1: आ गया मैं दूषिका कुमार, गांव की नालियों से निकलकर शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। जहां लोग खुले में शौच करते हैं, जहां शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग न करने से खराब और टूट फूट जाते हैं, वही तो बसता हूं मैं। जो कहते हैं कल करेंगे साफ, उनको जल्द से जल्द कर देता हूं मैं बीमार। खुला शौच मेरी जीत, टूटी टंकी मेरा ठिकाना, गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना।
2: घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है। बिमला के बेटे को तो खुजली हो गई, ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक लगता है।
3: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए, जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
2: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है।
1: बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द, उल्टी सब मेरी सौगात है। तुम सबको तो मुझसे रहम की पुकार करनी चाहिए।
0: एक दिन गांव की सीमा पर आता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव में रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था। सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है।
4: राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा क्यों है? सब इतने दुखी क्यों है और इतनी गंदगी क्यों है भाई?
2: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं तो सच कह रही हो बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं।
4: सब समझ गया चाची, सब समझ गया हूँ मैं। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये अस्वच्छता है।
1: मैं हूँ इन सब का कारण, मैं ही हूँ। बोलो क्या करोगे तुम, बोलो बोलो। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ दिन में तो मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगा, समझे?
4: अच्छा तो तुम हो दूषिका कुमार और ये सब तुम्हारा किया धरा है। अब मैं सब समझ गया, देखो मैं कुछ दिनों में तुम्हारा कैसे इलाज करता हूँ।
0: सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है।
4: शौचालय सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। खुले में शौच से मिट्टी, पानी, हवा सब जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बन जाओ होशियार, तो शौचालय का सही उपयोग करो और उससे साफ भी रखो, खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक करो।
0: धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होते हैं, शौचालय की सफाई शुरू करते हैं और दूषिका कुमार बेचैन होता है, गांव की गली में छिप कर देखता है।
1: ये क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां कैसे ढक दी? क्या ये शौचालय पर दरवाजा कब लग गया? दुर्गंध कहाँ गई? मच्छर कहाँ गए? अरे अरे, ये गांव में सब क्या हो रहा है?
0: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छता।
2: गांव वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रख रखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है, वहीं रहती हूँ मैं स्वच्छता।
0: अब गांव में हर गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, शौचालय प्यारा लागे रे मारा शौचालय, शौचालय प्यारा लागे रे मारा शौचालय, साफ रखो हर रोज रे अपनो शौचालय, बीमारी दूर भगाए रे स्वच्छ शौचालय, घर में हो साफ सफाई रोज रे, बीमारी रखो कहीं कोस रे मारो स्वच्छ शौचालय।
1: अरे नहीं, स्वच्छता की चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण साया तो खत्म होता जा रहा है, सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरा ठिकाना कहाँ होगा? शौचालय में ढक्कन लग गया, नाली साफ कर दी, खुले में शौच के लिए अब कोई नहीं आता।
0: स्वच्छता, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं, सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दुशिका कुमार थक कर गांव की सीमा पर बैठ कर रो रहा है।
1: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो, तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदला, अब मुझे तो जाना ही होगा।
0: गांव की महिलाएं स्वच्छता को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
2: तुम सबकी मेहनत ने दुष्टता को हराया, लेकिन याद रखो, अगर सफाई की आदत छूटी तो वो लौट सकती है, इसलिए सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं।
1: अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है? गंदा तो होना ही है, एक दिन छोड़ दो तो क्या ही फर्क पड़ेगा?
4: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका कुमार, गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगे।
2: ये दुष्का फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है, देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है, गांव वालों अब से सफाई को अपनाओ।
1: ओढ़ते ही तो करती है ये साफ सफाई, क्रूस क्यों हाथ लगाए, अब नहीं बोलोगी?
2: सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, अगर सब मिलकर साफ करे तो किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। और सुनो सब लोग, शौचालय के प्रयोग के साथ जरूरी है हाथ धोना, शौच के बाद हाथ न धोना बीमारी को न्योता देना है, हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना।
5: हम सब समझ गए हैं दुष्का कुमार, अब तुमसे नहीं डरेंगे, शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे और तुम्हें दूर भगाएंगे।
1: ओह, ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो?
2: नहीं दुष्का कुमार, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, सूखा और गीला कचरा को सही तरीके से निपटान करें, गंदला जल के लिए सोखता गड़ा और सही तरीके से नालियों का निर्माण, साथ ही रखरखाव किया जाए, प्लास्टिक की थैली का उपयोग ना करें, मलई कचरा प्रबंधन के लिए गांवों के आसपास FSTP बनाए या पास के शहरी FSTP या STP में जुड़े।
0: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा। हर घर में शौचालय है और उसका रखरखाव भी। बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका कुमार हार चुका है। यह है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर।
5: स्वच्छ भारत का सपना है, हर गली में स्वच्छता है, शौचालय की जिम्मेदारी हर दिल की अब तैयारी।
6: सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही है नए भारत की पहचान।
2: मजा आ गया ना हमारे कैरेक्टर स्वच्छ का सुजल कुमार को लेकर रामपुर गांव में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में हुई कमी को लेकर इस तरह का नाटक खेला जा रहा है। इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा और लोग कम्युनिटी एंगेजमेंट के जरिए बता भी रहे होंगे। इस संदर्भ में चलो गाँव के एक स्वच्छता चैंपियन की बातचीत सुन लेते हैं।
4: स्वच्छता चैंपियन ये कौन होते हैं?
2: स्वच्छता चैंपियन वे व्यक्ति होते हैं जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने और समुदाय में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए काम करते हैं। वे लोगों की स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं और उन्हें स्वच्छता के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समुदाय में सक्रिय स्वच्छता चैंपियन समुदाय में सक्रिय रूप से काम करते हैं और स्वच्छता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करते हैं। ऐसी ही एक स्वच्छता चैंपियन अब हमारे साथ है।
4: निदस्ता रेडियो आपके जीवन का प्रवाह। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आए हैं गांव तेजा मोड़ी में और हमारे साथ यहां पर कई सारे गांव के रहने वाले हैं और वो बैठे हैं और हमारे साथ सरपंच जी भी है। तो सबसे पहले हम यहां के सरपंच जी से बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें ताकि लोग ये जाने कि हम किन से रूबरू हैं।
7: पार्थ जी, पहले तो मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं सरपंच गांव मौड़ी जी और हमारी पंचायत दो गाँव की पंचायत है, गोविंदगढ़ है जी, एक मौड़ी, वहां से मैं सरपंच हूं
4: जी।
7: और आप जो भी हमको गांव के बारे में पूछेंगे वो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं।
4: सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है कि जब भी हम किसी गांव में जाते हैं तो हम सरपंच जी से इसलिए सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि उनको गांव के बारे में सारी जानकारी रहती है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आप अपने गांव के बारे में और आसपास के जो आपके गांव है, अपने लोग हैं, उनके बारे में आप हमें बताएं।
7: मेरे गांव में जी बहुत पुराना गांव है जी मेरा
4: जी,
7: और बहुत ही अच्छे तरीके से लोग रहते हैं, आपस में मिलवर्तन बहुत अच्छा है और यहाँ पर ऐतिहासिक गांव होने के कारण सभी जातियों के लोग रहते हैं और जिनका आपस में बहुत ही अच्छा मिलवर्तन है और सभी एकता से और बिल्कुल किसी भी पक्षपात के बगैर रहते हैं और अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है।
4: तो आपकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि गांव की उन्नति होनी चाहिए। उन्नति में हम कई सारी चीजें देखते हैं जैसे गांव में सड़कें, गांव में पानी की सुविधा। तो क्या आपके गांव में जो सड़कें हैं उनकी रखरखाव और जो जरूरतें हैं वो सरकार पूरी करती है या अगर उसमें कोई कमी है आप वो भी हमें बता सकते हैं ताकि हम आपकी बात को और आपके गांव वालों की बात को सरकार तक पहुंचा सकें।
7: मेरे गांव में जी कम से कम भी 4 चौपेरे गांव से 7-8 सड़कें लगती हैं
4: जी,
7: सबकी हालत ठीक है तकरीबन
4: जी,
7: लेकिन एक थोड़ा उन्नति की बात ऐसी है जी, गांव में जो गोहर रास्ते हैं वो रास्ते कच्चे हैं और उनको पक्का करवाने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी और जितने भी अधिकारी हैं उनको सबके पास अपना जो भी लिखित रूप में रेजुलेशन पंचायत का डाल का सबको पहुंचा दिया है कि उनको पक्का किया जाए क्योंकि वहां पर कुछ लोग जैसे डेरे हैं वो लोग रहते हैं उनको आने जाने में बड़ी परेशानी होती है।
4: आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ गाँव के बारे में, जो साफ सफाई है इसका क्या साधन है यहाँ पे, पहला। दूसरा, क्या नल से जल हर घर में आता है या अभी भी वो पुरानी प्रथा है, हमारी जो औरतें हैं, जो लेडीज हैं, वो बहुत दूर से पानी अपने घरों में लाते हैं, उसके बारे में आप बताइए।
7: हमारे गांव में जी दो बोर हैं जी,
4: जी,
7: और सबके घर में पानी पहुंच रहा है
4: जी, नल से जल,
7: नल से जल
4: जी।
7: और एक बोर का और रेजुलेशन पे का दिया हुआ जी, उसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है जी, गांव के बीच में से थोड़ी ऊंचाई है और साइड में नीचा है, तो साइड में पानी जाए, यहाँ गांव के बीच में पानी जाने में थोड़ी दिक्कत हुआ, इसलिए एक बोर
4: उस इलाके के लिए करा जाए।
7: हाँ जी, उस इलाके के लिए एक बोर और लगवाया जाए, एक नलकूप यानी पानी पहुंचाने के लिए, उसका मैंने रेजुलेशन डाल के दे रखा है।
4: साफ सफाई के साथ हमारा जो व्यक्तित्व को साफ सुथरा रखना, जिसको हम अंग्रेजी में हाइजीन कहते हैं, पर्सनल हाइजीन कहते हैं, उसके बारे में लोग कितने जागरूक है। जैसे हमने खाना खाना है तो खाना खाने से पहले हमने हाथ धोने हैं, इसके बारे में कितनी जागरूकता है गाँव में, और खास करके जो हमारी महिलाएं हैं उनका पर्सनल हाइजीन, उसके बारे में आप अगर कुछ बता सकते हैं तो।
7: भारत जी, पहले तो लोग अनपढ़ होते थे
4: जी,
7: लेकिन आज गांव में लोग बहुत जागरूक हैं
4: जी,
7: और बहुत पढ़े लिखे हैं, और आप तो साबुन से कह रहे हैं जी, तो शैम्पू आगे हाथ तो
4: जी,
7: तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जो गाँव में सबके घर हैं जी, और कोई ऐसी बात नहीं है जी, बड़ी साफ सफाई है और हरेक बंदा बड़ी साफ सफाई के साथ रह गया जी। मैं तो अपने गांव के बारे में यही कहना चाहूंगा जी, बहुत अच्छे लोग हैं
4: जी,
7: और आपसे मिलकर रहा जी सारे, और सारे नु यही मेरा तो संदेश है जी, भी अगे वास्ता भी सब पार्टियां नु साइड में रखता, पार्टियां पूर्टियां ने कुछ नहीं करना जी, सब ने आपसे मिल बरतना, बढ़िया रखो और अच्छे तरीके के रहो, भाईचारा वरतो, कोई जाति धर्म एरा वगैरह कुछ ना वरतो, ये चीजा जो
4: इंसानियत को सबसे आगे रखो,
7: इंसानियत को आगे
4: जी,
7: यही कहना चाहूंगा जी। मैं तो गुरबाणी का फरमान है जी, अवर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, तो उस गुरबाणी के अनुसार मैं तो कहूंगा भी जीवन जियो और बढ़िया तरीके करो।
4: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और आपकी बात हमारे श्रोताओं तक आपने पहुँचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
8: वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
9: स्वच्छग्रही सचमुच समुदाय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने में बहुत मदद करते हैं। एक स्वच्छग्रही बनकर आप अपने समुदाय में स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
2: मुझे ऐसा लगता है सुजल, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया है, और आगे भी सारे गांवों को ODF प्लस मॉडल बनाकर ये जन आंदोलन भारत को आगे ले जाएगा।
9: सही कह रही हो स्वच्छ का, मैं जब छोटा था गांव के

0: और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: एक बात और, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की ये योजना हर सत्र राज्य, जिला और ग्रामीण पर स्वच्छता समितियों का गठन कर स्वच्छता का कार्य सुनिश्चित किया जाता है तथा ग्राम सत्र की जल एवं स्वच्छता समिति स्वच्छता संबंधी काम जैसे शौचालय निर्माण, व्यवहार परिवर्तन अभियान और ODF प्लस मॉडल सत्यापन की तैयारी जैसे कई दायित्वों का निर्वहन करती है।
0: बस बस देवी बस, मैं सब समझ गया। तुमको बताऊं, वो किरण दीदी जो अभी आई थी ना हमारे नुक्कड़ नाटक में, वो भी ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता समिति की सदस्य है।
1: हाँ हाँ हाँ, मैं सब समझ गई, तभी है तुम्हें इतनी जानकारी।
2: हेलो फ्रेंड्स, कम ऑन, सब सुन लो मेरी बात, उठा लो अपने हाथ, अंकल हो या आंटी, सब आ जाओ अब साथ।
3: बचाना है पानी, ये सबको रखना याद, खत्म हुआ एक बार न मिलेगा उसके बाद।
2: सब जानते हैं पानी कितना जरूरी है, इसको बचाना भी तो अपनी मजबूरी है, अपनी मजबूरी है। छोटे बनकर
3: पानी गिराना थोड़ा कम कर, पहले पेड़ लगाओ फिर नदी बचाओ, बारिश के पानी को सब जमा कराओ। सबसे पूछो अंकल,
2: रेन वाटर हार्वेस्ट करा क्या?
3: नहीं करा है तो फिर क्यों खड़ा है?
2: आने वाला कल होगा अपना ब्राइट, बोलेंगे सब बात है मेरी राइट, फिर पानी पे ना होगी कभी फाइट, पानी होगा हर टाइम दिन हो या नाइट।
3: हाँ हाँ छोटे, दिन हो या नाइट,
2: सब सुनो मेरी बात।
4: रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बारिश के पानी को बचा कर उसे पौधों के लिए, सफाई के लिए और बाकी सब कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जन शक्ति नहीं जल शक्ति, जय हिंद।
0: अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की ओर जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड नंबर 1 में हमने स्वच्छ गांवों के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन हमने भेजने को कहा था श्रोता साथियों से, और साथ ही ये भी कहा था कि अच्छे स्लोगनों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
1: तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
0: बिल्कुल आए हैं स्वच्छ का, और उनमें से हमने 3 स्लोगन छांट भी लिए हैं, उन श्रोता साथियों को पुरस्कृत भी करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल सुनते हैं उन श्रोता साथियों के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन।
1: पहला स्लोगन भेजा है बंशीलाल ने, गांव गांव में हो सफाई तभी दूर होगी हर बीमारी। अगला स्लोगन भेजा है हरजीत सिंह ने, स्वच्छ गांवों से बनता है स्वस्थ देश, यही है भारत का नया संदेश।
5: really
1: और अगला स्लोगन है टीम रेडियो विदस्ता की ओर से, हर नागरिक जब हाथ बटाएगा तभी स्वच्छ भारत बन पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, ये तो बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लिखकर भेजे हमारे श्रोता साथियों ने, और अब हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे हमारे केंद्र में आकर अपने इनाम लेकर जाएं। आप सभी को बधाई और धन्यवाद।
0: और अब इस अंक का सवाल, गीला कचरा और सूखा कचरा की श्रेणी में किन किन चीजों को रखा जाता है और उन्हें रखने के लिए किस रंग के कूड़ेदान होते हैं?
1: तो भेजिए जल्दी से जवाब, सही जवाब भेजने वाले के नाम शामिल होंगे अगले अंक में। FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता के स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010।
0: चलने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी बताएंगे, और वो आप जानते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे। आज आप सुन रहे हैं स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की है कि हम अपने शौचालय का रखरखाव और उसकी साफ सफाई कैसे रखेंगे, स्वच्छता क्यों जरूरी है, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक।
1: और अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
0: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल अर्पण दिवस क्या होता है?

0: इस जानकारी के साथ ही जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में नल जल कनेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।
1: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए। अपने गांव में शौचालय के रखरखाव पर के प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए, खुश रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत।
0: आप हमारे सवालों के जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर भेज सकते हैं। नंबर आपको एक बार फिर बता देते हैं, 7056413010। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक सुनते रहिए अपने पसंदीदा कार्यक्रम अपने पसंदीदा रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता से। फिलहाल स्वच्छ का और सुजल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: चमन उजाड़ा है अपना, चमन उजाड़ा है पल पल हर पल।
1: आप सुन रहे थे स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी एपिसोड 2 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अब तक हुई प्रगति की झलक। इस एपिसोड में स्वच्छता के पात्र को आवाज दी आरजे किरणी ने, दुष्का कुमार को आवाज दी राहुल अलियान ने, सुजल कुमार के पात्र को आवाज दी भारत सोपोरी ने, नाटक में सूत्रधार को निभाया मुकेश गुप्ता ने, रिकॉर्ड एडिट और निर्देशित किया भारत सोपोरी ने। ये एपिसोड पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम था। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता की पेशकश।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, रूह मेरी तू मेरी हो, रूह मेरी तू मुझ में खो, रूह मैं तेरा आशिक हूँ, रूह मैं तेरा शायर हूँ, तेरे लिए मैं लिखता हूँ, तेरे लिए मैं सोता हूँ और तेरे लिए मैं जगता हूँ, रूह तू मुझ में बहती है, फिर क्यों नहीं कुछ कहती है, खामोशी को अब तू छोड़, दुनिया से अब नाता तोड़, रूह मेरी तू अब कुछ कहे, बहुत हुआ अब मत चुप रह, मत रह अब तू बिल्कुल गुमसुम, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, ये जो मेरी सांसें हैं तेरे लिए ये चलती हैं, दिल में जो ये धक धक है कुछ नहीं तेरी आहट है, रूह मेरे जीवन की डोर तुझसे बंधी है और से छोर, रूह तू मेरी ही रहना, रूह तू मुझ में ही बहना, मेरे लिए सब कुछ सहना, रखना मुझको खुद में तुम, रूह तू मेरी ही रहना, रूह तू मुझ में ही बहना, मेरे लिए सब कुछ सहना, रखना मुझको खुद में तुम, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, ये जो मेरी जीवा है तेरे लिए ये कातर है, रूह रूह ये करती है, खामोश नहीं ये रहती है, सचमुच बिल्कुल पगली है, रूह रूह की इसकी रट बिल्कुल भी नहीं बदली है, रूह तू इसकी रट को सुन, कुछ मत सोच इसे बस चुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, ये जो तेरी चाहत है ये दिल में मेरे बसती है, यादों के ये दीपक बनकर आंखों में मेरे जलती है, श्रवणों में तेरा नाम है रूह, नथनों में तेरी खुशबू है, होंठों पर तेरी प्यास है रूह, पौरों पर तेरी हस्ती है, इस दीवाने की दुनिया में तेरी ही है बस रुंझुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन।

ये जो मेरी आंखें हैं हर दम गीली रहती हैं, खामोशी के साए में चुपचाप बहुत कुछ कहती है। तू इनका जिंदा सपना है, तू इनका बिल्कुल अपना है, पलकों पर इनके तू ही है, पानी के घर में तू ही है, पानी के घर में तू ही है, ये तेरी राह ही तकती हैं, ये तेरे लिए ही सजती हैं, ये तेरी याद में रहती हैं और तेरे प्यार में बहती हैं। इनको बस है तेरी धुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, रूह मुझे तू अपना ले, रूह मुझे तू छुप डाले, दीपक ये जल जाएगा, हाथ नहीं फिर आएगा, खामोश मोहब्बत सिसकेगी, छाती में तेरे धड़केगी, तू चैन बिल्कुल पाएगी, रोते रोते मर जाएगी, बातें मेरी याद आएंगी, बेचैन तुझे कर जाएंगी, रोता मेरा बेबस चेहरा, रोता मेरा बेबस चेहरा, घाव तुझे देगा गहरा, तड़पेगी तब तू जीवन भर, आहट ना मिलेगी मेरी पल भर, तड़पेगी तब तू जीवन भर, आहट ना मिलेगी मेरी पल भर, चला छोड़ जाऊंगा मैं, चला छोड़ जाऊंगा मैं, नहीं के भी आऊंगा मैं, मत होने दे ऐसी बात, रूह तेरे है सब कुछ।

रूह में तेरा बच्चा हूँ, रूह में बिल्कुल सच्चा हूँ, रूह रची है मुझ में तू, रूह बसी है मुझ में तू, पोरों पर तू ही लिपटी है, रोमों में तू ही पसरी है, बिन तेरे में जल बिन मीन, बिन तेरे में जल बिन मीन, ना मुझसे मेरा जीवन छीन, मुझ जातक की तू है प्यास, तू मेरा जीवन तू मेरी आस, सांस के लिए हवा है जो, मेरे लिए तू है वो, सांस के लिए हवा है जो, मेरे लिए तू है वो, रूह मुझे तू अपना ले, रूह मुझे तू चपटा ले, कर ले मुझको खुद में गुम, हो जा मुझ में खुद भी गुम, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन।

रूह मुझे तू अपना ले, रूह मुझे तू छपटा ले, कर ले मुझको खुद में गुम, हो जा मुझ में खुद भी गुम। रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन।

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं, अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम बात करें वो जो रखे आपसे सरोकार। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये प्रसारण पसंद आया होगा। आप सभी श्रोताओं से हम क्षमा चाहते हैं कि कल यानी 16 सितंबर 2026 को 11 बजे से आप हमारे प्रसारण फ्रीक्वेंसी 90.0 पर नहीं सुन पाए। तकनीकी खराबी के कारण हमने कोशिश की कि आज 4 बजे तक हम उस खामी को दूर करें, और 4 बजे से हमने अपने प्रसारण फिर शुरू कर दिए। हालांकि हमारे फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण ना होने के बावजूद हमारे ऐप पर आपने जो हमारे प्रसारण है वो बदस्तूर सुनते आप रहे। एक बार फिर क्षमा, और तकनीकी खराबियों के सामने हम भी नतमस्तक हो जाते हैं, और जल्दी से जल्दी हमने अपनी जो समस्या थी उसका समाधान किया और हमने प्रसारण आप तक फिर ले आए आज 4 बजे से। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी सुचारू रूप से यह कार्यक्रम और प्रसारण जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 40 सेकंड। आज का यह प्रसारण अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। आशा करते हैं कि वितस्ता की धारा की तरह ही ये प्रसारण भी आपके मन को सुकून दे पाया होगा और आपके दिन को सुहावना बनाया होगा। दोस्तों, आज 17 सितंबर का दिन एक और वजह से भी खास है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पूरी टीम की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी के साथ हम उनके स्वस्थ दीर्घ आयु जीवन की कामना करते हैं। इसी अवसर पर दोस्तों आज बात करते हैं एक प्रेरणादायक विषय पर। सादगी और विनम्रता में ही असली शक्ति छिपी होती है। अक्सर हम मानते हैं कि शक्ति और सम्मान बड़े पद, धन या दिखावे से मिलते हैं, लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। जो व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, यदि वो अपना और अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, सादगी से जीता है और विनम्रता को नहीं छोड़ता है, वही सच्चे अर्थ में लोगों के दिलों पर राज करते हैं। सादगी कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास और आत्मबल की सबसे बड़ी निशानी है। विनम्र व्यक्ति ही दूसरों की बात सुनता है, उनसे सीखता है और आगे बढ़ते हुए भी अपने साथ पूरे समाज को लेकर चलता है। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने सादगी और विनम्रता को अपना जीवन का आधार बनाया वो पीढ़ियों तक याद किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, चाहे जीवन में जितनी भी सफलता मिले, अपनी जड़ों को, अपने संस्कारों को और अपनी सादगी को कभी मत भूलिए। यही असली मेहनताना, माफ कीजिएगा, यही असली महानता की पहचान है। यह था आज का विषय, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का विषय भी पसंद आया होगा। आखिर में कुछ पंक्तियां आप सभी के नाम। आज की पंक्तियां यूं है, वितस्ता कभी थमती नहीं बस बहती चली जाती है। वितस्ता कभी थमती नहीं बस बहती चली जाती है, हर पत्थर हर मोड़ को पार कर मुस्कुराती है। जिंदगी को भी यही सबक सीखना चाहिए हमेशा, जिंदगी को भी यही सबक सीखना चाहिए हमेशा कि रुकावटें आए तो राह और भी निखर जाती है, कि रुकावटें आए तो राह और भी निखर जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है, ये टीम रेडियो वितस्ता के कैजुअल अनाउंसर अनु ने तैयार की। और जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 18 सितंबर 2026 शुक्रवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर। वंदे मातरम से हम करते हैं शुरुआत, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत आप सुनेंगे और कल शुक्रवार है, कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर होगा कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 4, शीर्षक होगा विश्वास, पेश करेंगे आरजे किरणी। 8:30 आप सुनते हैं रंगमंच की ओर एपिसोड 6, साहिब बीबी और गुलाम फिल्म के ऊपर ये तैयार किया गया है हमारे दोस्त मानव मेहरा ने, जरूर सुनेगा ये कार्यक्रम और उम्मीद करते हैं कि कलाकारों को इससे बहुत बड़ी सीख मिलेगी। 9:30 बॉलीवुड की सुनहरी यादें, कल का कार्यक्रम मोहम्मद रफी पर तैयार किया गया है। 10:20 पर होगा कार्यक्रम फिल्मी किसे एपिसोड 1, आन मिलो सजना फिल्म पर यह तैयार किया गया, पेश करेंगे दीपक कश्यप। संगीत की सभा जारी रहेगी, 2 बजे आप सुनेंगे आपकी फरमाइश कार्यक्रम जो आप शुक्रवार को सुनते हैं, आपकी फरमाइशों पर आधारित। कल 2 बजे आप जरूर सुनिएगा ये कार्यक्रम और अपना फीडबैक भी भेजिएगा। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल और 7 बजे होगा कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी एपिसोड 3। ये कार्यक्रम हमने तैयार किया है जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार भारत सरकार की ओर से। कल का शीर्षक होगा घर हर घर जल नल से। 8:30 होगा कार्यक्रम सुहाना सफर हर दिन की तरह और पेश करेंगे रमेश मराठा, कल की कड़ी है बोलते मुजस्सम। ये थी कल की जानकारी कल के कार्यक्रमों के बारे में, उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रसारण पसंद आया होगा और इसने आपके दिन को और सुहावना और खुशनुमा बनाया होगा। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। कल सुबह तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।